ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद पद की मास की पहली तिथि तदनुसार 23 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण।

0: 6:02 पर सुनिए का कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 7:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 9:02 पर आपका फेवरेट कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार। 10:02 पर लेकर आएंगे मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को भारत की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। खुदाई कार्य के कारण आज से अगले 15 दिन तक सर्विस रोड बंद रहेगी। इनमें फायर स्टेशन रोड से DCP ऑफिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस जनकपुरी की ओर जाने वाली सर्विस रोड शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण तेज वर्षा होने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

भाई मानो तो एक रूह का रिश्ता है हम सभी का, और ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। बात अच्छी है और बहुत बहुत सच्ची है। दिल से दिल का कनेक्शन बना रहेगा हमारा और आपका, क्योंकि हर प्यार की जो नींव होती है ना, वो समर्पण सेवा भाव होती है। और इसी समर्पण के साथ, इसी भाव के साथ, प्रेम के साथ रोजाना हमारा और आपका रिश्ता गहराता है। बहुत सारे कार्यक्रम, बेहतरीन कार्यक्रम हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आपका हर दिन बने बेहतरीन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ख्वाब छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, उसे अगर पूरा करना है तो बहुत मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। ये सोचकर आगे बढ़ना है कि कितनी भी चुनौतियां आएं, कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी परेशानियां आएं, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाना है। बनना है तो जिंदगी की परेशानियों को झेलना सीखिए अगर बाजीगर बनना है, क्योंकि सितारे हमेशा हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी की बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्तों, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो बस चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़, जो है आपका स्टेशन ऑफ द नेशन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

बस यही होता है, यही गलती हो जाती है कि कुछ काम नहीं बनता तो बस टूट जाते हैं, मन लगना नहीं लगता, बिखर जाते हैं और फिर कोशिश कभी नहीं करते, बस सोच लेते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हमारे बस की बात नहीं है। ये सोच बदलने की ज़रूरत है भाई। पराजय तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, पराजय तब होती है जब हम उठने से इनकार करते हैं। तो जागिए, उठिए, चल पड़िए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। लेकिन जहां भी जाइए, बस सुनते रहिए एफएम रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन, आपका हमदम, आपका दोस्त, आपका साथी हर पल। फिलहाल सुप्रभात का ये आखिरी गीत, सुंदर गीत आपके लिए।

0: और लीजिए प्रस्तुत है अब प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद और इसमें सातवें अध्याय के एक और श्लोक पर चर्चा करेंगे हम, श्लोक संख्या 46, जहां पर ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देव मायाम स्त्री शूद्र हूण शबरा अविपाप जीवा यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्रियक जना अपि किमु शुद्ध धारणा ये। अर्थात जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे चाहे स्त्री हो, हूण हो, भील हो या पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले ही क्यों ना हो, वे सब भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। तो फिर जो लोग सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। तो देखिए, भगवान की भक्ति मुश्किल नहीं है। यहां यही कहा गया कि भगवान की भक्ति तो कोई भी कर सकता है ना। वो किसी भी चीज से बाधित नहीं है, भक्ति निरपेक्ष है, निरपेक्ष। एक स्त्री भी भक्ति कर सकती है, एक पुरुष भी भक्ति कर सकता है। किस कुल में जन्मा है इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो भक्ति करता है उसे भगवान मिल जाते हैं। यहाँ तो यही हिसाब है। भगवान ना धन देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना जाति देखते हैं, कुछ नहीं देखते। वो तो सिर्फ भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग भगवान की तरफ जल्दी से नहीं मुड़ पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम भगवान को मापना चाहते हैं, हम अपने नजरिए से जानना चाहते हैं। अपना नजरिया अगर जीव बीच में ले आएगा तो उसका परिमाण है ही क्या। वो खुद अणु माप का है, यानी उसका साइज बस एक परमाणु जितना ही है। तो उसका नजरिया क्या है फिर? परमाणु भरा असीम को क्या जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो अपनी शक्ति से तो यूं भी भगवान के गुण लीला को कोई नहीं जान सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही अपने जन्म, अपनी लीला, अपने नामों की संख्या नहीं गणना कर सकता हूं, क्योंकि सब कुछ ही अनंत है। मेरी महिमा अनंत है, मैं अनंत हूँ, मेरे नाम अनंत हैं, मेरी लीलाएं अनंत हैं, मेरे अवतार अनंत हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई काय मन वाणी से उनके चरणों की शरणागति ले, यानी अपनी काया को भी भगवान को समर्पित कर दे, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दे, अपनी वाणी भगवान को समर्पित कर दे, भगवान का गुणगान ही वाणी करे, तो फिर वो अति क्षुद्र क्यों ना हो। अति क्षुद्र यानी एक चिड़िया या वानर या वृक्ष या ऐसी जगह पर पैदा हुआ कोई व्यक्ति जहां कोई सदाचार ही नहीं है, कोई सदाचार ना है, ना ही उसकी जानकारी है। देखने में मनुष्य जैसा है लेकिन रहता पशुवत है, परंतु वो भी भगवान की भक्ति करने की योग्यता रखता है, यानी वो भी भक्त बन सकता है, वो भी भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है, वो भी भगवान का नाम गान कर सकता है, नाम ले सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है और भक्त बन सकता है। वो भक्त हो जाता है।

और वो प्रेमिक भी हो सकता है भगवान के भक्तों की कृपा से, महत कृपा से। तो यदि कोई भगवान के चरणों की शरणागति ले तो वो चाहे कितना भी क्षुद्र क्यों ना हो, मगर वो भगवान की कृपा से उनकी माया विभूति के पार पहुंच सकता है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस शरणापत्ति के अभाव में, यानी इस शरणागति के अभाव में मैं ही भगवान की माया विभूति को नहीं जान पाया हूं, तो फिर बाकी लोग जो जान पाए हैं, जैसे श्री रुद्र जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, हनुमान जी, अर्जुन जी, विदुर जी, प्रहलाद जी दैत्यवंश में जन्मे थे, है ना, विभीषण जी दैत्यवंश में थे, हनुमान जी को कपि कहा जाता है, कपि शिरोमणि, विदुर जी दासी पुत्र थे, मगर ये सब भक्त चूड़ामणि हुए, परमहंस हो गए, भगवान की कृपा से ही तो हुए, ये सब माया विभूति के पार जा पाए, है ना। तो हमने सुना था कि जो जीव की जो देह है वो श्रृगाल, कुकुर आदि के द्वारा खाई जाने वाली वस्तु है और अति तुच्छ है, तुच्छ अति तुच्छ। तो भगवान का जो स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है, वो तो समुद्र की तरह असीम है। भगवान का जो स्वरूप है और उस स्वरूप का जो ज्ञान है, वो समुद्र की तरह असीम है, अनंत अनंत समुद्र की तरह। समुद्र भी ससीम हो सकता है, लेकिन भगवान का स्वरूप ज्ञान असीम है, और उस असीम समुद्र से सिर्फ बिंदु ही पा सकता है एक जीव अपनी पूरी शक्ति से, है ना, और वो भी शक्ति भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, है ना। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने देह के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा या ज्ञान से सब जान सकता हूं, सब कुछ, सब कुछ वो जानने का कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, इस अभिमान में क्यों ना मुग्ध हो जाए, लेकिन तो भी वो किसी भी तरीके से श्री भगवान की माया के पार नहीं जा सकता। लेकिन हमने सुना था कि जो लोग भगवान गोविंद के चरणों की शरणागति लेते हैं, जिनका अपनी देह, अपने घर आदि किसी भी वस्तु में कोई ममता बुद्धि नहीं है, वे लोग अपने समस्त अभिमान को भगवान श्री गोविंद के चरणारविंद के दास्य में नियोजित करके सर्वशक्ति वरिष्य यानी गोविंद उनकी कृपा शक्ति का आश्रय पाते हैं, और उसी आश्रय से वो माया विभूति के पार भी चले जाते हैं। तो भगवान की लीला आदि में जो घटनाएं हुआ करती हैं, कई बार वो देखने में बड़ी ही माइक लगती हैं, है ना। तो जो माया हद जीव है वो भगवान की लीला को अगर माइक कह दे कि अरे देखो तो भगवान को भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा, ऐसे कह दे, तो वो माया के कुएं में जाकर गिर जाएगा, क्योंकि वो भगवान की लीला के रहस्य को समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, भगवान को नहीं जानता है, और अपनी एक तुच्छ बुद्धि उसने वहां लगा दी, है ना। तो देखिए, भगवान की जो माया है वैसे तो दो प्रकार की है, एक अंतरंग और दूसरी बहिरंग। अंतरंग माया है स्वरूप शक्ति भगवान की, और बहिरंग माया है जड़ शक्ति। बहिरंग माया से जगत और अंतरंग माया से भगवान की अनंत लीलाएं संपन्न होती हैं। तटस्था जीव ना तो अंतरंग माया के वशीभूत है, यानी अंतरंग माया और बहिर्मुख माया, ये जो जड़ माया है, ये जो दुनिया है, ये संसार जिसे हम देखते हैं, इसके वशीभूत भी नहीं है, यहां भी वो स्वतंत्र ही है, यानी वो तट पर खड़ा है, भगवान की तटस्था शक्ति है, ना वो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है, ना वो भगवान की माइक शक्ति के अंतर्गत है। लेकिन अगर वो भगवान की बहिरंगा माया के वशीभूत हो जाता है अपनी इच्छा से, तो फिर वो भगवान की अंतरंगा माया को खोज नहीं पाता है, भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा नहीं पा सकता है, है ना। जीव का जो ज्ञान है, जो सामर्थ्य है, सब कुछ तो भगवान की बहिरंगा माया का ही कार्य है। उस बहिरंगा माया को

देखते हैं संसार के रूप में, और इसमें जब अभिमान पैदा हो जाता है तो अंतरंग जगत का अनुसंधान नहीं पाया जा सकता है। पर हाँ, जो इस बहिरंगा माया के अभिमान को त्याग करता है और श्री गोविंद के चरणों की शरण लेता है, भगवान की कृपा से वो इस बहिरंग माया समुद्र से पार हो जाता है और भगवान की जो अंतरंगा माया है, स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति का कार्य है भगवान की लीला संपादित करना, उस लीला सिंधु में फिर वो बहने लगता है और आनंदमय के माधुर्य अनुभव से कृतार्थ हो जाता है ना। तो भगवान के चरणों में अगर कोई शरणागति ले ले, कोई भी शरणागति ले ले और उनके आदेश और शिक्षा के अनुसार वो भक्ति के पथ पर अग्रसर हो, तो कोई भी क्यों ना हो, स्त्री हो, मलिच हो, चंडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, ये जड़ जीव सब के सब माया वैभव को अतिक्रम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई आत्मशक्ति के अभिमान में ही पड़ा रहे तो कभी भी इस दुस्तर सिंधु को पार नहीं कर सकता है। तो बात बिल्कुल सीधी सी है, बहुत ही सीधी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है, बहुत महत्वपूर्ण। यानी प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है, और अगर प्रेम ना हो भगवान से तो उनको पाया नहीं जा सकता है, कृपा भी नहीं मिल पाती है ना, कृपा भी नहीं मिल पाती। तो अगर कोई कहे कि नहीं, महत व्यक्ति ही भगवान की कृपा के पात्र हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने अभी सुना ही, जो अतिशय दीन है, हीन है, वो सब भी भगवान की कृपा पा सकते हैं अगर वो प्रेमिक भक्त हो जाए तो। उनकी कृपा से वो माया को समझ जाते हैं, और जब हम वस्तु को जान लेते हैं, ये जो दिख रहा है वो वस्तुतः है नहीं, यानी ये बहुत ही अनित्य है, समाप्त हो जाएगा, न साथ आया था न साथ जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, मुझे अकेला ही चलना है, जब ये बात समझ आ जाती है तो फिर माया से उत्तीर्ण होना संभव है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा का गान किया है कि भगवान की भक्ति इतनी आसान है, इतनी आसान कि यदि कोई भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करे और उनके आदेश अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार वो भक्ति करे, भक्तों का आनुगत्य स्वीकार करते हुए उनके द्वारा आचरित भक्ति धर्म का पालन करे, तो चाहे वो तिर्यक योनि में ही क्यों ना जन्मा हो, जैसे हंस, गज, शुक, शारिका, ये तक भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, ये तक। फिर कहा किमु शुत धारणा, यानी अरे अगर किसी ने श्री गुरुदेव के श्रीमुख से श्री भगवान का नाम रूप आदि श्रवण किया हो, तब तो वो मनुष्य उनकी कृपा से भगवान की माया को जान सकता है और अतिक्रम कर सकता है भक्ति करके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी भगवान का जो चरित्र है बड़ा ही आश्चर्य से भरा पड़ा है, परंतु भगवान के इस आश्चर्य चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी होती है महाभागवतों से, उनके श्रीमुख से भगवान के नाम रूप गुण लीलात्मक भगवत स्वरूप से अवगत होना होता है, जानना होता है। अपने आप कोई जान नहीं सकता, अपने आप तो यूं ही उम्र कट जाती है, आस पड़ोस ने जो सिखाया, माँ बाप जो करते चले आए हैं, अगर उन्होंने भजन नहीं किया है तो हमारे अंदर कहाँ से भजन भाव आएगा, हमारे घर में ही कोई भजन नहीं करता है तो हम भी ऐसे ही रह जाएंगे अज्ञानी, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना ये पता चलेगा हम कौन और ना ये पता चलेगा भगवान कौन, और ये भी नहीं पता चलेगा ये माया ही क्या है। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई यही जो जीवन है इसमें तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सुख मिलता है तो थोड़ा दुख मिलता है, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, इससे बना है ये जीवन। अगर पशु पक्षी योनि लाभ करके भी अमानव लोग तो, और ऐसी जाति जहां संस्कार ही नहीं है, वो भी अगर श्री गुरु के मुख से भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान

0: की कथा का श्रवण करते हैं और भगवान के भक्तों के आचरण से सीखते हैं और वैसा ही आचरण करने का प्रयास करते हैं जो भक्ति के अनुकूल हो, तो फिर वो भगवान की ही कृपा से भगवान की ही माया को जान करके अतिक्रम कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो जो सच में ही महत कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, महत सेवा परायण है, वो तो अवश्य ही उसे प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ब्रह्मा जी भगवान की महिमा बता रहे हैं नारद जी को, और ये महिमा सच में बड़ी विचित्र है। भगवान की कथा को सुनकर के, भगवान का नाम लेकर के कोई भगवान की दुस्तर माया को पार कर सकता है, ये तो सच में ही बहुत ही विचित्र है। तो ये जो भगवान हैं, ये इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अगर कोई मनुष्य शरीर धारण करके इन्हीं का भजन नहीं करता तो वो अपने आप को ही ठग लेता है, ठग लेता है। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की कृपा सब पर बरसती है, और धन्य है वो लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं और प्रेम से उनका नाम लेते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनके माधुर्य का आस्वादन करने की लालसा को रखते हैं, भगवान को पाने, उनकी सेवा को प्राप्त करने के अनुकूल हर वस्तु को ग्रहण करते हैं और प्रतिकूल वस्तु को त्याग देते हैं, वो धन्य अति धन्य है। तो बेशक हम अभी भगवान की शरण ना भी लें तो भी हम कम से कम ऐसे भक्तों की कथाओं को तो सुन ही सकते हैं, ऐसी भक्तों के व्यवहार से सीख ही सकते हैं, जहां भक्त कहते हैं कबे अहा गौरांग बोलिया भोजने शयने देहेर जतन छाड़ी वो विरक्त होइया, कि हे प्रभु ऐसा कब होगा, हे गौर ऐसा कब होगा कि मैं आपका नाम लेके हा गौरांग कह के भोजन शयन इन सब में अपने देह के यत्न को छोड़ दूंगा और विरक्त हो जाऊंगा। नवद्वीप धामे नगरे नगरे अभिमान परिहरी धामवासी घरे मधुकरी लोबो खाई वो उदर भरी, के प्रभु आपके धाम में, गौरहरी तो नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं ना, तो नवद्वीप धाम में जहाँ आपका इतना कृपामय अवतार प्रकट हुआ है, प्रेम प्रदाता अवतार, आपने अपने प्राकट्य से कलयुग को ही पावन कर दिया, आप कली पावन अवतार हैं, प्रेम पुरुषोत्तम हैं, आपकी प्राकट्य स्थली आपके धाम में जाकर, नवद्वीप धाम में जाकर, नगर नगर में अपने अभिमान को छोड़कर धाम वासियों के घर से मधुकरी लूंगा, भिक्षा लूंगा और वही खाकर अपना पेट भरूंगा। नदी तटे गिया अंजलि अंजलि पीबो प्रभु पद जल, तरु तले पड़ी आलस्य त्यजिबो पाइबो शरीर बल। तो अगर कोई कहे अच्छा आप अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पिएंगे तो कैसे सेहत बनेगी, कैसे रख पाएंगे अपने शरीर को, कमजोर हो जाएंगे, तब कैसे भजन होगा, तो उसका उपाय बता रहे हैं कि जिस सुरधनि में गंगा जी में महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की हैं, स्नान लीला की है।

है ना, महाप्रभु तो रोज गंगा जी में ही स्नान करते हैं, लीला तो नित्य है, लीला हुई थी और अब नहीं है ऐसा तो नहीं है। आंखों से ही तो छिप गई है मगर लीला तो अभी भी चल रही है। तो उस गंगा नदी सुरध्वनि तीर पर जाकर अंजलि अंजलि प्रभु का चरण जल मैं पीऊंगा। और तरु तले वहाँ जो वृक्ष हैं, तो धाम के वृक्ष तो आम वृक्ष नहीं है, वो तो कल्प तरु हैं, डिजायर ट्री, तो उन वृक्षों के नीचे मैं पड़ा रहूँगा, आलस को त्याग करके अवश्य ही मुझे शरीर का बल प्राप्त हो जाएगा गौर कृपा से। काकुति कोरिया गौर गदाधर श्री राधा माधव नाम, कांदिया कांदिया डाकी उच्च रवे भ्रमिबो सकल धाम। वहां मैं अतिशय कातरता के साथ गौर गदाधर श्री राधा माधव नाम पुकारूंगा, रोते रोते हुए उच्च स्वर में हे प्रभु आपको पुकारूंगा और आपके धाम का भ्रमण करूंगा। जैसे ही किसी वैष्णव को देखूंगा तो क्या करूंगा, वैष्णव देखिया पड़िबो चरणे हृदय बंधु जानी। जैसे ही वैष्णव को देखूंगा प्रभु, मैं तो उसके चरणों में ही पड़ जाऊंगा क्योंकि वही तो मेरे हृदय का बंधु है। क्योंकि आचार्य लोगों ने कहा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। भाई वैष्णव तो वो है जिसे भगवत सुख मिल गया, जिसे भगवत ज्ञान मिल गया, जिसे भगवत कृपा मिल गई, और जब वो जीवों को देखता है तो वो जीव की पीर समझ पाता है, कष्ट समझ पाता है कि आय हाय ये बेचारा जीव अनंत योनियों में घूमता रहता है, हाय ये बेचारा जीव ये कैसे उद्धार को पाएगा। जीव पर उसे दया आ जाती है, नाम में रुचि रहती है, भगवत नाम में खूब रुचि रहती है और जीवों पर खूब दया करता है। तो वैष्णव को देख करके मैं उनके चरणों में गिर पड़ूंगा, सोचूंगा ये तो मेरे हृदय के बंधु हैं, यानी यही मेरे दर्द को जानते हैं। भाई कोई भगवान का भजन करता है तो वो अपने भजन की बात, भगवान की महिमा की बात, भगवान की लीला की बात किसी अभक्त से तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अभक्त भला क्या समझेगा भगवान को, भगवान के बारे में किसी बात को। वो तो अपने तर्क कुतर्क को उठाएगा और लड़ने चला आएगा, वो तो लड़ने लगेगा, अरे तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। तो एक भक्त दूसरे भक्त का संग ही चाहता है कि ऐसा भक्त मिले जिससे जी खोल कर भगवत कथा कह सकूं, जिसका अनुराग हो भगवान में पूर्ण रूपेण, ऐसा मुझे भक्त संग मिले। भक्त को भक्त संग ही चाहिए। भक्त कहता नहीं है कि भगवान मुझे तुरंत आप मिल जाए, वो कहते हैं कि भगवान आपके भक्त मुझे मिल जाए, क्योंकि जहां भक्त हैं वहां आपकी कथा है और जहां आपकी कथाएं हैं वहां आप होंगे ही। ये तो आपने कहा ही है कि जहां मेरे भक्त गान करते हैं मेरी कथाओं का, मेरे नाम का, वहां मैं रहता हूं। तो इसलिए जैसे ही वैष्णव को देखूंगा तो मेरा हृदय एकदम शीतल हो जाएगा कि ये मेरा हृदय का बंधु है, इसके हृदय में भी भगवान रहते हैं, इनके हृदय में भी भगवान रहते हैं, इन वैष्णव की दृष्टि मुझ पर पड़े, इन वैष्णव का वचनामृत मैं पाऊं, इनका चरणामृत पाऊं, इनका अधरामृत उच्छिष्ट के रूप में पाऊं। तो वैष्णव देखिया पड़ी बो चरणे हृदय बंधु जाने, वैष्णव ठाकुर प्रभुर कीर्तन दिखाई बेदास माने। वैष्णव ठाकुर हैं, भगवान के भक्त हैं, वो मुझे इतना शुद्ध कर देंगे, मेरी भक्ति उनके संग से इतनी बढ़ जाएगी, वो देखेंगे कि अरे ये तो मेरा दास है, वो भगवान का संकीर्तन, महाप्रभु संकीर्तन करते हैं भक्तों के साथ मिलकर, शिवास जी के आंगन में, नवद्वीप धाम में, और भी जहां जहां महाप्रभु गए सब जगह उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया है। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए कैसे भावोन्मत्त हो जाते हैं, कैसे समस्त भक्तों के बीच में

वो नृत्य करते हैं, समस्त भक्त उनका साथ देते हैं, उनके पीछे पीछे गान करते हैं। और उस समय प्रभु का क्या माधुर्य, कितना सौंदर्य होता है वो कीर्तन। वैष्णव ठाकुर मुझे अपना दास समझ करके अवश्य ही दिखाएंगे, तभी कहीं जाकर मेरा तप्त हृदय शीतल होगा। तो ये प्रेम भक्ति बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान उन लोगों के लिए है जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो उनकी कथाओं में विश्वास करते हैं, जो उनके अवतारों में विश्वास करते हैं, जो उन्हें ये नहीं कह देते कि अरे ये तो निराकार हैं भगवान तो, लेकिन अब जो इन्होंने शरीर धारण किया है ये तो माया द्वारा प्रदत्त है, ऐसा कह के भगवान की सत्ता पर अविश्वास करना ये एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। तो इसलिए हमारे शास्त्र श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं कि जो प्रेमिक भक्त है वही भगवान की शरणागति ले सकते हैं, अन्यों के द्वारा ये असंभव है। तो जो भगवान की शरणागति लेते हैं वही भगवान के प्यारे होते हैं, और उन पर भगवान अतिशय करुणा करते हैं, और भगवान की करुणा से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। भगवान के सेवक के रूप में पार्षद देह प्राप्त करके वो उनकी सेवा प्राप्त करते हैं, उनका धाम प्राप्त करते हैं, और सेवा आनंद को पाकर, माधुर्य आनंद को पाकर विभोर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की भक्ति करके कोई भी माया को जान सकता है, और जान ही नहीं सकता, माया से पार भी हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। कोई भी, कोई नियम नहीं है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं जा सकता, वो भगवान के बारे में नहीं सुन सकता, ऐसा नहीं है। सबका अधिकार है, सबका अधिकार। तो कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात बताई है नारद जी को, और जिसका आस्वादन हमने लिया है, और आगे भी इसी तरह हमारी चर्चा जारी रहेगी। और इसके साथ ही अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक के बाद सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से रूस के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को भारत की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त व्यक्तित्व अपनाया। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में भाग लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल है। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहेती कमेटी के नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार आतंकवाद करार दिया है। खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्य दल को मंजूरी दी है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेनबो स्टेशन एट 102.6 यानी कि 102.6 पर आप सभी का स्वागत है. प्रोग्राम शुरू हो गया है. गुड मॉर्निंग दिल्ली विद योर आरजे खुशी. कभी सोचा है कैलेंडर पर लिखी एक तारीख अपने अंदर कितनी सारी कहानियां समेटे होती है. आज है 23 अगस्त, एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास के कई रंग देखे हैं. आज ही के दिन साल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली. और वहीं अगर हम आसमान की तरफ देखें तो 23 अगस्त की ही तारीख को यह हमें याद दिलाती है कि उस पल की जब भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था. सोचिए, एक ही डेट, जिम्मेदारियों की कहानी भी और सपनों की उड़ान भी. शायद इसलिए कहा जाता है कि हर दिन नया होता है लेकिन हर तारीख अपने साथ इतिहास लेकर आती है. तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये खूबसूरत ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए सिर्फ रेनबो स्टेशन पर.

0: यही तो इतिहास होता है, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा रह जाता है, फॉर एवर मेक इट स्टे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ही की तारीख को भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा था वहां पर, जहां की मैंने आपको बताई ही थी बात, उसके बारे में मैं और डिटेल बता देती हूँ। इसीलिए आज के दिन को यानी कि 23 अगस्त के दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस दिन 2023 चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं। लेकिन ये नहीं बताया था कि भाई इस वजह से आज नेशनल स्पेस डे भी मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना और भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया था। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर्स से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पर, और ये ट्रैक था फ्रॉम द मूवी चांदनी चौक टू चाइना। आज है 23 अगस्त, टाइम बाय स्टूडियो क्लॉक इज 19 मिनट्स पास्ट 7।

और आज के दिन जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें है आरती साहा, जो कि भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक थी। साथ ही विनायक राव पटवर्धन, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में कामयाबी का हिसाब कैसे करते हैं आप? पद से, पहचान से, पैसे से या पुरस्कार से? किसने कितना कमाया उससे, या किसने कौन सा मुकाम हासिल किया उससे, या फिर किसने कितनों को सपने देखने की वजह दी, कितनों को खुद पर यकीन करना सिखाया, कितनों को अपने देश पर गर्व करने का मौका दिया। कुछ हफ्ते पहले चोट से जूझती ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की बैडमिंटन जोड़ी को शायद ये लगने लगा होगा कि 2026 उनके करियर का सबसे नाकाम साल है। इंजरी के चलते ना एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके, ना प्रतिष्ठित उबर कप में, लेकिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में उम्मीदों के विपरीत भारत के लिए मेडल जीत उन्होंने इतिहास रच डाला। भारतीय फैंस ने बुधवार को लक्ष्य सेन की हार देखी, गुरुवार को देश की दुलारी पीवी सिंधु और युवा सितारे आयुष शेट्टी को टूर्नामेंट से बाहर होते देखा, शुक्रवार को अपना क्वार्टर फाइनल मैच हार गोल्डन बॉयज की जोड़ी यानी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। इसके बावजूद शनिवार को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आठ हजार से ज्यादा दर्शक ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की उस जोड़ी को देखने आए थे जिन्हें टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई उम्मीदवारों की गिनती में भी नहीं रख रहा था। आखिर शुक्रवार को इन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद वुमेन्स डबल्स में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। पिछली बार ये कारनामा 2011 में अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने किया था, जिनको ट्रीसा अपना रोल मॉडल मानती हैं।
1: They are one of the idols for us, the women's doubles that they made created histories in India.
0: BWF World Championships 2026 में ट्रीसा और गायत्री का खेल देख अश्विनी पुनप्पा भी प्रभावित हुई। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा,
2: Both Gayatri and Trisa can rotate well. Gayatri has smart smashes that she plays from the back of the court. Incredibly sharp at the net. Trisa, powerhouse from the back of the court. Moves into the net. Also can take the pace off from the net. Overall game, very solid from both Gayatri and Trisa.
0: शायद सफलता का एक पैमाना ये भी है, जब आपके आदर्श आपके गुणगान गाने लगे तो कामयाब हैं आप। हालांकि सेमीफाइनल में पहली वरीयता प्राप्त टान निंग और ल्यू शेंग शू की जोड़ी के सामने भारतीय जोड़ी अंडरडॉग थी। लेकिन शायद वो क्वार्टर फाइनल में अपने से कई ज्यादा मजबूत चीनी जोड़ी को हराने वाली ट्रीसा और गायत्री की परफॉर्मेंस थी जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदें परवान चढ़ा रखी थी। बार बार स्टेडियम पुलेला पुलेला जॉली गुड के नारों से गूंजता। और गड़गड़ाती तालियों के बीच इन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की, 7-2 से प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ा। लेकिन टान और लियू की चीनी जोड़ी जिसका लोहा दुनिया मानती है कहां पीछे रहने वाली थी। 9 पॉइंट लगातार हासिल कर उन्होंने मैच का रुख बदला और ऐसी चीख पुकार के साथ हर पॉइंट का जश्न मनाया जो छत से उतरती भारतीय फैंस की खामोशी को चीरती चली गई। दर्शकों ने फिर भी गायत्री और ट्रीसा का उत्साहवर्धन करना नहीं छोड़ा। और भारतीय जोड़ी ने वापसी भी की। 24 मिनट तक चला ये पहला सेट किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जैसा था, उतार चढ़ाव से लबरेज। अंततः गायत्री और ट्रीसा ने इसे 21-18 से जीत 1-0 की बढ़त हासिल की।
1: Playing with this Chinese players, I feel like we were a bit more confident in the first game. Even when we were leading in the first half, then they covered into 11-7, they just took the break. And again, we covered them. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them.
0: दूसरा सेट भी उसी तर्ज पर शुरू हुआ। मिड गेम ब्रेक तक गायत्री और ट्रीसा 11

0: 10 से आगे थी, पर फिर जैसे उफनती नदी अचानक सूखने लगी, रफ्तार भी थमती चली गई। अभी तक कुछ बेहतरीन क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट्स का मुजाहिरा कर पॉइंट्स जीतने वाली ट्रीसा से उन्हीं शॉट्स को खेलने में गलतियां होने लगी।
1: बट इन द सेकंड गेम वी डिडंट गेट द रिदम, आई फील लाइक इन द आफ्टर द सेकंड गेम सेकंड हाफ आई फील लाइक दैट टाइम द फ्यू मिस्टेक दैट मेड अस लिटिल बिट अनकॉन्फिडेंट, आई फील लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ डाउटफुल अबाउट एवरी स्ट्रोक्स व्हाट वी आर प्लेइंग, आई फील लाइक या।
0: गायत्री से भी कुछ मौकों पर चूक हुई,
2: वो लोग काफी पेशेंटली खेले, वी कुडंट मैच बोथ ऑफ दोस थिंग्स, थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे पर रिदम नहीं आया।
0: और चीनी जोड़ी ने भरपूर फायदा उठाते हुए 21-13 से दूसरी गेम जीत मैच में बराबरी हासिल की। तीसरी गेम में टान और ल्यू ने दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है और 21-8 से उसे जीत फाइनल का टिकट बुक कर लिया। कोच गोपीचंद पुलेला कोर्ट साइड पर मौजूद थे। मैच के बाद उन्होंने माना कि उनकी शिष्याओं से गलतियां हुई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि चीनी जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया।
3: Still the second game mid part they were quite there in the match and suddenly they didn't contact the shuttle as much and then they just lost it. But also credit to the Chinese girls because they were serving very well because there was a good amount of spin and tumble on the serve and then on the first return they were hitting very hard on the parallel. So I think Gayatri's and Teresa's chance of getting on the attack from the very beginning was not happening. But overall happy with the way they've played.
0: जब चीनी जोड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से तो वो इस मुकाबले के लिए तैयार थे ही, पर उसके साथ भारतीय फैंस की जन गर्जना का भी उन पर कुछ ज्यादा असर हुआ
4: नहीं।
5: Play with them. We had to make specific plans, strategies to play against them. They will get support from the home crowd. So it was a very normal thing for them.
0: Teresa और गायत्री को भले ही कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा हो, उनके इस एकमात्र पदक ने भारत के लिए एक कमाल का कीर्तिमान स्थापित किया है। 2011 से हर साल BWF World Championships में कम से कम एक पदक जीतने वाले सिर्फ दो देश हैं, चीन और भारत। और कितने युवाओं को सपने देखने की वजह दी है, कितनों के दिलों में उम्मीद जगाई है, ये हौसला दिया है कि वो भी विश्व स्तरीय मंच पर कुछ कर सकते हैं, उसका कोई माप नहीं। शायद इसलिए इस हफ्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भी भारतीय सरकार ने की है।
1: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
0: इस कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश पाया है। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में पहला सेट हारने के बाद फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मजबूत वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। लेकिन फाइनल से पहले जज्बातों में बह जाने और जश्न मनाने से एलेक्स ने साफ इनकार कर दिया।
6: I mean, I don't feel that emotional at the moment. I think I'm a little bit too tired, but I'm also proud of the way I managed that match. Also, mentally, I'm not really thinking how big it is. We haven't done the tournament yet, so definitely I'm still in the tournament, and I don't want to think about any kind of historical aspect or anything.
0: उनसे हारने वाले विक्टर लाई को कांस्य पदक मिला है, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दूसरा पदक है।
7: Of course, I'm really proud to have another world's medal. Not everyone can say that they have two, so I'm really proud. First of all, hopefully, we're inspiring some young kids from our countries.
0: Alex का सामना फाइनल में जापान के कोडाई नारोका के साथ होगा। महिलाओं के सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची और दक्षिण कोरिया से आने वाली मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग आमने सामने होंगी। पुरुषों के डबल्स में खिताबी भिड़ंत में होंगे मौजूदा ओलंपिक चैंपियन मलेशिया के एरन चिया और सो वुई यिक। उनसे भिड़ेंगे भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ देने वाले चीन के लियांग और वांग। मिक्स डबल्स में फ्रांस के गिक्वेल और डेलरू की जोड़ी चीन की फेंग और हुआंग की जोड़ी से भिड़ेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट लिए मैं दर्पण टिकिया।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आपकी आरजे खुशी के साथ, और आज है 23 अगस्त। आज के दिन जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें हैं HBR अयंगर जी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छठे गवर्नर थे, भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर, साथ ही बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही लव्ड एक गायक हैं जिन्होंने आज हमें अलविदा कह दिया, और वो हैं KK। तो KK की ही आवाज़ में ये गाना फिल्म अक्सर से आप सभी लिसनर्स के लिए, और अगर आज आपका जन्मदिन है तो इस गाने के बाद बताती हूँ कि आप अपना जन्मदिन किन के साथ शेयर कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: यही जो महान हस्तियां होती हैं ना, ये डीप इन आर हार्ट एक जगह बना ही लेती हैं। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं सबसे पहले तो रीता फारिया के साथ, जो कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली महिला बनी थी और ये एक फिजिशियन भी थी। साथ ही में बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्टर सायरा बानो और वाणी कपूर, इन्हें आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्म जैसे शुद्ध देसी रोमांस और वॉर में ऋतिक के साथ भी। तो इनको और आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो भाई बर्थडे गर्ल हैं तो फिर बर्थडे गर्ल से रिलेटेड ही कुछ गाना चला देते हैं, इसलिए वॉर मूवी से ये ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो

0: और बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

पूजा आ गई है स्टूडियो में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए. मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने में. तो स्टे ट्यून, एंजॉय कीजिए ट्रैक्स.

एफएम रेनबो पर लीजिए पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक के बाद सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को भारत की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर के केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया। और WTA बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी थ्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दी है। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

मन तब तक मगन है, मन तब तक मस्त है जब तक अपनों का साथ है, वरना सिर्फ इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार है। वैसे खुशी मस्ती हम भी हासिल कर सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि ज़िंदगी में हमेशा सबकी ज़रूरत रखें पर कभी किसी की कमी नहीं, क्योंकि ज़रूरतें और कोई भी पूरी कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए रोज़ सुबह जब उठें तो सबसे पहले अपनों को एहसास दिलाएं कि आपको उनकी ज़रूरत है। और जैसे ये काम हम बखूबी करते हैं, FM रेनबो दिल्ली के माध्यम से हमारे हर श्रोता को हम जोड़ते हैं और दिल से दिल का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

अब मौसम की दीवानगी भी देख लीजिए, बेशक उमस से हम बेहाल हैं, गर्मी भी हो रही है, लेकिन बीच बीच में जो हल्की हल्की बारिश हो जाती है ना, तो थोड़ी राहत मिल जाती है। कल शनिवार था, कल दिन भर उमस से लोग बेहाल रहे, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई तो लोगों को राहत भी मिली। और आज भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग का ये कहना है कि भाई आज और आने वाले एक दो दिनों में हल्की बारिश यूं ही होती रहेगी। दिन में कई जगह सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश ना के बराबर ही होगी। आज अधिक

अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो भाई मौसम चाहे जैसा हो, संडे है, वीकेंड्स हैं, मस्ती का दिन है, बाहर निकलिए, जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन कहीं भी जाइए बस सुनते रहिए एफएम रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरा नाम पूजा शुक्ला। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

हम सभी को बेहद प्यार है अपनी दिल्ली से, अपनी सुरक्षा से, अपने जीवन से। और यही वजह है कि जब हमारी दिल्ली सजती है, संवरती है, हमारा जीवन निखरता है, तो हमारा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बुलंद होता है। और भाई, हमारा जो मास्टर प्लान 2047 है, दिल्ली मास्टर प्लान, वो है ही ऐसा कमाल का। तो खबर यह है कि पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए अब जो पथ हैं वो सुरक्षित सुनिश्चित होंगे। जी हाँ, तो दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में पैदल राहगीर और साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित, सुलभ और एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खास जोर दिया गया है। तो गैर मोटर चालित परिवहन को लेकर ये बड़े बदलाव का खाका है, जो कि बेहद बेहद ज़रूरी है। मास्टर प्लान में जो पैदल राहगीर हैं, जो साइकिल सवार हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। तो यमुना बाड़ मैदान के साथ साथ 52 किलोमीटर लंबा खंड खासतौर से एक प्राकृतिक और एक ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब दिल्ली की सड़कों की दशा सुधरेगी तो हमारा जीवन और बेहतर और सरल और सुलभ होगा। बस यही सुनकर चेहरे पर आई मुस्कुराहट। और इस गीत के बाद आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, क्योंकि दिन भर यहाँ बेहतरीन कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे और आपकी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहेगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

जब कभी किसी अपने का साथ मिलता है तो वो ताकत आपकी दुनिया को बदल कर रख देती है निश्चित तौर पर। और ऐसे ही जब सुविधाओं की व्यवस्था होने लगती है तो लगता है दुनिया सिमट गई है। और ऐसा ही कुछ तो दिल्ली में होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब मधुबन चौक पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए बाहरी रिंग रोड पर एक स्काई वॉक तैयार किया जा रहा है। सोचिए कितना आसान हो जाएगा। ये स्काई वॉक रोहिणी कोट को वहां मौजूद दोनों मेट्रो लाइन से जोड़ेगा। तो आउटर रिंग रोड पर तैयार की जा रही इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और 30 नवंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये स्काई वॉक FOB पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला कोर्ट के बीच सुरक्षित पैदल संपर्क उपलब्ध कराएगा। निश्चित तौर पर इससे हम जो रोजाना मेट्रो यात्री हैं, अधिवक्ता हैं, न्यायालय कर्मचारी हैं, उनको कोर्ट आने वाले जो भी लोग हैं और जो स्थानीय निवासी हैं, इन स्थानों के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी। और ये सुविधा सड़क से लेकर अलग स्तर पर पैदल आवागमन के लिए बनाई जा रही है। इसके लिए पूरा होने के लिए पैदल यात्रियों को बाहरी रिंग रोड को पार करने के लिए सड़क पर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो सुरक्षित पैदल मार्ग उपलब्ध होने से जाहिर सी बात है जो यातायात है उसके प्रवाह में भी काफ़ी सुधार होगा। और ये परियोजना पूरी होने के बाद मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला कोर्ट के बीच आवागमन बेहद बेहद सुविधाजनक होगा। तो बस जब ऐसी खबरें हम सुनते हैं तो चेहरों पर आ जाती है मुस्कुराहट। बहुत सी ऐसी खबरें सुनते रहेंगे आप गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र

0: याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

ये बहार यूं ही बनी रहे, भाग दौड़ में कब तक उलझोगे, एक इस बार तो निकालो, खुद से मुलाकात कर लो, एक प्याली लो कड़क चाय की, थोड़ी खुद से खुद की बात कर लो, बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

और अगर आप भी सात समंदर पार जाने वाले हैं, यानी अगर आप विदेश जाने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, 1 सितंबर से कागजी बोर्डिंग पास पर मोहर की प्रक्रिया खत्म होगी। विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन मंजूरी के लिए अपने स्मार्टफोन पर ई बोर्डिंग पास दिखाना होगा। तो 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर मोहर लगाने की प्रक्रिया खत्म करने का फैसला लिया गया है। तो विदेश अगर आप जाने वाले हैं तो बोर्डिंग पास की कागजी प्रति साथ रखने की अब आपको जरूरत नहीं है। ई बोर्डिंग पास अपना मोबाइल पर दिखाइए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जाइए भाई, डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर ऐप और जुड़े रहिए एफएम रेनबो दिल्ली के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

हमारा शासन प्रशासन भी ये दावा करता है, ये वादा करता है कि हमारे सफर को आरामदायक बनाए, और खासतौर पर खास अवसरों पर। तो भाई सबसे खास त्यौहार रक्षाबंधन भी आने वाला है, और इसकी खास तैयारी रेलवे ने की है। रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं रेलवे ने। त्यौहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जाहिर सी बात है। तो 27 और 28 अगस्त को गाजियाबाद स्टेशन से अलीगढ़ अगर आप जा रहे हैं और अलीगढ़ से गाजियाबाद आ रहे हैं, तो इसके बीच राखी स्पेशल EMU ट्रेन का संचालन किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस संचालन से बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी। तो उत्सवों की मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर है ही, ये मुस्कान यूं ही कायम और कामयाब रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा FM रेनबो के लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

आपके दिल की दीवानगी यूं ही बरकरार रहे, कायम और कामयाब रहे, और रहेगी जाहिर सी बात है क्योंकि आप जुड़े रहेंगे एफएम रेनबो दिल्ली के साथ 10 से 11। सुनिए मास्टर्स म्यूजिक आर वंदना अरोड़ा आपके साथ रहेंगी 11 से 12 का समय, पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और कुछ ही पलों में आपके साथ होंगी दिल के तराने, गाने नए पुराने में खुशबू गई। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, पूजा शुक्ला का नमस्कार।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खुदाई कार्य के कारण आज से अगले 15 दिन तक सर्विस रोड बंद रहेगी। इसमें फायर स्टेशन रोड से डीसीपी ऑफिस, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली पुलिस, जनकपुरी की ओर जाने वाली सर्विस रोड शामिल है। ब्रिटेन के सांसदों को संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान

सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य। भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौहरी और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर अब वाणी चलेगी सिर्फ और सिर्फ रेडियो की, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है दिल के तराने गाने नए पुराने, जहां आप सुनने वाले हैं बॉलीवुड के ट्रैक्स, वो भी बैक टू बैक, यानी बिना किसी आवाज के और मेरी आवाज के आप सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही 9:15, 9:30 और 9:45 यानी कि 9:50, 9:30, 9:45 पर आपके लिए मैं लेकर आऊंगी रेनबो की ओल्ड डायरी से एक ब्यूटिफुल ट्रैक और ओल्ड इज गोल्ड वाले जो सॉन्ग्स होते हैं ना वो लेकर आऊंगी। तो एंजॉय कीजिए संडे इन बैक टू बैक ट्रैक्स के साथ। दिस इज योर आरजे खुशी।

स्टूडियो के घड़ी में समय हो रहा है 9:15 और रेनबो की ओल्ड डायरी से आज खुशी आप सभी लिसनर्स के लिए लेकर आई हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना किशोर दा की आवाज में।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सावधान है और निकिता गांधी की आवाज में दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी सूर्यवंशी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने आपके आज खुशी के साथ। टाइम पर स्टूडियो क्लॉक इज 30 मिनट्स पास्ट 9 और रेनबो की ओल्ड डायरी से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल अपना प्रीत पराई लता मंगेशकर की आवाज में।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल,
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: FM रेनबो पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। वंदना आएंगे स्टूडियो में अभी 10 से 11 प्रोग्राम करने, मैचलेस म्यूजिक आवर्स विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम, जो आप सुनेंगे 10 से 11 ही। 11 से 12 आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 राजेश के साथ, जिसमें आज का विषय रहेगा कैच द रेन, जल संरक्षण की सक्सेस स्टोरी पर केंद्रित है। 12 से 1 आपके साथ रहेंगी वंदना, प्रोग्राम रहेगा प्ले इट कूल अगेन अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम। 1 से 2 आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट पसंदीदा सॉन्ग्स, यानी मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 1 से 2 राजेश के साथ ये प्रोग्राम होगा। 2 से 3 आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना वीर दमन के साथ, और रेनबो पर यूं ही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा प्रोग्राम्स का और गानों का।

आरजे खुशी यानी मेरे जाने का टाइम आ गया, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखो। सुबह मैं आती हूँ ना, सुबह ही देखती हूँ भाई लोग चाय सिगरेट की दुकान है या फिर तला हुआ भुना हुआ सुबह सुबह 5 बजे खा रहे हैं। इसका मतलब वो रात को सोए ही नहीं, अब चाय पियेंगे और फिर रात सुबह आराम करेंगे। कोशिश करो यार, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान बनाता है। बचपन में सुना था ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्थ वेल्दी एंड वाइज। तो ये किसी ने ऐसे ही नहीं बोला है। सूर्य के साथ अपनी दिनचर्या करोगे ना, अमीर भी बनोगे, वाइज यानी कि बुद्धिमान भी बनोगे, और हेल्थ भी हमेशा ठीक रहेगी। इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, खुश रखिए, और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: Well, stay with us on Matchless Music Hour and we'll be back after this very, very short break.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को

डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: And here we are with the matchless music hour, of course, bringing you wonderful songs, classics. And here is a classic Bollywood song from 1975 from the film Khel Khel Mein. Well, yes, I'm sure you're going to love this song. And it was such a playful one. Yes, so keep on playing and enjoying this lovely number coming up for you.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार के रूप में आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दो भेंट वार्ताएं, जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, अमृत सरोवर और कैच द रेन। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब

0: कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल को सुरक्षित करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
4: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मंत्री शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान, ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले दो वर्षों में लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें, क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं कई बार गाद भर जाती है या थोड़ा जल स्तर कम हो जाता है, तो इनका संरक्षण किया जाना, लगातार इनमें जल भराव इसका मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब जल संचय जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का, हम कहें, संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाए, और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गाद निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब, जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही, जो हम अगर तालाबों की बात करें तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको, उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज, जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाए और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाए अपने जिले में।
2: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
5: देखिए, जहां तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर

0: सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी
1: जी
0: धारणा है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है, हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा, तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए, और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहाँ के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए। बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियाँ होती रही, लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है।
1: एक प्रशासक के तौर पे क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
0: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, वो भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा। लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास छह छह आठ आठ बोर हैं, वो असफल हुए। और लगभग 3 क्रॉप 4 क्रॉप का जिला है, तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ें, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभिष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि माननीय मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं, उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़ के सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। अमृत सरोवर और जल संरक्षण पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले हमारे अतिथियों की पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। रजनी मैम, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सावन का महीना है, तो मुझे लगता है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, बहुत गाना रहेगा, अच्छा मुझे पसंद भी है।
1: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज की हमारी बातचीत का विषय है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में किया था। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अभियान अमृत सरोवर और जल संरक्षण का आपने सफलतापूर्वक किया, इसमें अलग अलग व्यक्तियों का, विभागों का, समुदायों का किस प्रकार योगदान रहा है, कैसे ये समन्वय बनाया आपने?
1: नरसिंहपुर जिले में JSJB 2.0 और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आपको जानकारी है कि कृषि प्रधान जिला है और बहुत उपजाऊ जमीन है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में तो कि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन नरसिंहपुर जिले में है और बहुत लोग इसमें उसका उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स होते हैं, तो शासकीय जो भूमियां भी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनमें भी स्थानीय स्तर पर लोग संज्ञान में आए कि लोग कृषि कर रहे हैं, तो उससे जो और कृषि को लेकर इतना उत्साह है लोगों में, इतना लगाव है कि वो जरा सी भी भूमि, मतलब ऐसा है कि उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो और जैसा कि अभी सीईओ साहब ने आपको बताया कि नर्मदा नदी हमारे यहाँ बहुत मतलब लंबा एक उनका क्षेत्र है और सारे घाटों के आसपास ये खेती, लगातार खेती के कारण जो हमारा इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये सब समस्याएं हमारे सामने थी। तो हम जब ये अभियान आया तो हम लोगों ने एक इसको सबको एक होलिस्टिक प्लान इसको लेकर तैयार किया कि कैसे हम इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे अमृत सरोवर है वो कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्पेसिफिक टोपोग्राफी होनी चाहिए या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, वहीं बन सकते हैं और रिसोर्स की भी उसके लिए आवश्यकता होती है, तो जहां वो आवश्यक है वहां अमृत सरोवर, अन्य जगहों पर कुछ जगहों पर हमने जो कंट्रोल ट्रेंचेस होते हैं, जो कंटिन्यूस या स्टगर्ड कंट्रोल ट्रेंच होते हैं, वो बहुत सारे हमने लिए, क्योंकि ऐसी भूमियां जो बहुत समय से खेती के लिए उपयोग हो रही हैं उनको मुक्त करा के और वाटर कंजर्वेशन सुनिश्चित करना और दोबारा उसका उपयोग उस प्रकार से ना हो पाए, अतिक्रमण ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो जिले में हम लोगों ने हमारे सभी मतलब हमारे सीईओ साहब और हमारे सभी रेवेन्यू ऑफिसर जितने हैं, तहसीलदार और SDMs, उनको एक सूची प्रोवाइड की गई और सभी सरपंचों की हमने लगातार 2 महीने बैठक की, मतलब व्यक्तिगत बैठक की सरपंचों की, सचिवों की, और उनसे ये जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कितनी भूमि उपलब्ध है और वो किस प्रकार से उसमें उपयोग हो रहा है। और फिर सबके सहयोग से हमने प्रयास किया, लगभग 900 एकड़ भूमि जिले में हम लोगों ने मुक्त कराई और उसमें से लगभग 450 एकड़ पे हमने कंट्रोल ट्रेंचेस निर्माण कराए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि भविष्य में एक तो वो खेती के लिए दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगी, दूसरा अगर हम उसके जल संरक्षण की बात करें तो लगभग 2 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एक वर्ष में वो संरक्षित कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल ट्रेंचेस हैं। जिस समय ये काम चल रहे थे उसमें नए कार्य जो हमारे उसमें नरेगा इसकी मनरेगा चल रहा था और जीवी राम जी आ चुका था, तो नए कार्य हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसमें जितने भी समाज के अंग होते हैं, चाहे वो पंचायतें हों, सामाजिक संस्थाएं हों, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े किसान हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, उन सब से मीटिंग करके सबसे मतलब ये सहयोग लिया कि जिसके पास चाहे मानव संसाधन हो, चाहे हमारे पास मशीनरी हो या अन्य तरह के रिसोर्सेज हैं जो उपलब्ध करा पाए वो हम उसमें करें। तो उसमें इन सब के सहयोग से आप मतलब हम लगभग 70,000 ट्रेंचेस बनाए हैं जिसमें बिल्कुल भी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया। तो और इसके अलावा जैसे हमारे शासकीय स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उनमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए, नगर पालिकाओं में हमने स्ट्रक्चर बनवाए, हमने ये प्रयास किया कि समाज के सभी अंग, चाहे वो शासकीय हो, निजी हो, उद्योग हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, सब मिलके अगर जिस भी स्थान पे हैं अगर वो ये देखें कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और सब अपने अपना प्रयास करेंगे तो हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यही लगभग हमने 70,000 संरचनाएं जो JSJB बनाई हैं उसमें सभी प्रकार की संरचनाएं हैं और ये सबके मतलब हम कहें एक क्यूमुलेटिव सहयोग से ही हम ये अचीव कर पाए हैं जो भी स्थिति है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हम अगले सीजन में ही मतलब देख पाएंगे। हमने वाटर लेवल्स लिए हैं पंचायतों में, कुओं के, बोरवेल्स के लिए अभी कि अभी क्या है और संरचनाओं के बाद क्या स्थिति होती है, लेकिन निश्चित रूप से जितना जल हम, जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ घन मीटर हमने ट्रेंचेस में किए, ऐसे लगभग 2 लाख घन मीटर हमारा जो तालाब है उनके माध्यम से, तो इस तरह से बहुत मतलब एक हम कहें सफिशियंट नंबर हम कहें जो हमारे जल संरक्षण में हम लोग इस बार प्रयास कर पाए।
0: जी जी, गजेंद्र जी, जल संरक्षण संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
2: देखिए, निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉन्ड को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प

0: रूप में उपयोग किया, और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फॉर्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पर्ल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से। और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते थे, अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहां पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता था उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं, सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
1: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं, किसी में पानी नहीं निकल रहा है। उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो
0: जी
1: ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वहां उनको ही बोलें कि अपने अनुभव शेयर करें, जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहाँ उसका उपयोग करें।
2: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
0: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
2: जी जी जी
0: श्रोताओं को अगर सुना सकें तो बहुत अच्छा।
2: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज का हमारा विषय है अमृत सरोवर और जल संरक्षण, जिसकी चर्चा जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में अतिथि विशेषज्ञ हैं श्रीमती रजनी सिंह और श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी। आप दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए, और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है। एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेयी और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है। हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है। लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपने सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गांव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको, जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फेंस करके सुरक्षित करें। कम्युनिटी को, विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को, उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें दे के एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गांव में बनी जहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, खासकर अगर देहातों की बात करें, क्योंकि शहर में की तुलना में वहाँ कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा, वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में, डिस्पोजल के रूप में होता है, वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है। तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यान की पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है, और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रहीं, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गांवों में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
0: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा IAS अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है। और इससे हमको और प्रेरणा मिली है, जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जहां हम लोग निखाली कराई है हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं तो बहुत, एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पे कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं, तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसकी प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की, हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
1: बन सकता है।
2: तो हमारी योजना ये है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी की होती है, तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है सभी, मैं कहूँ स्तर है समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
2: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है, और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पे भी जल के संकट की स्थितियां आ गई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है उसमें उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेके कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन हमें

0: पंचायतों के माध्यम से है, तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक हम कहें जन आंदोलन जैसा विषय है जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी, लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में ये प्रयास है कि हम ऐसे ही मतलब लोगों को जब भी हम किसी जगह जहाँ भी लोग होते हैं जहाँ जन समुदाय होता है चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस बिंदु को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार सब मिलके जब काम करेंगे तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता, यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियाँ हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो
3: जी।
2: तो जो
3: जी।
2: स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहाँ जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, अमृत सरोवर, जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हम ये बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
4: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता, कैच द रेन। अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी। कार्यक्रम प्रमुख आकाश

0: आकाशवाणी अहमदाबाद।
1: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
2: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहां के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुआ कि मेरी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहां की जमीनों में भी है और वहां के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20 30 40 फीट पे पानी था, वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100 200 500 1000, कहीं कहीं जगह पे तो 2000 फीट पे गहराई पे चला गया। वहां के किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो इस विषय की एक प्रेरणा मिली कि समस्या का रोल बहुत समझा। तो हमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है, तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहां की धरती पथराड़ और डूंगराल है, बारिश गिरती है, लेकिन वहां जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाबे 80 से 90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आ रही और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू करा लोगों को जोड़कर, ये पानी हम कैसे बचा पाए।
1: दिलीप भाई आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984, 85, 86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी, तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
2: एक समय था, वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है। इस समय में क्या हालत थी कि वैसे कोई साधन भी नहीं थे, तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87, इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए, उसका एक रीजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय भी बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की, और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे, और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूती हुई, लोगों दो पैसा कामने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए, तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी, तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना, तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गिर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था, और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने एक काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया, 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
3: पहली बार गिर गंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से, मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिर गंगा परिवार जो काम कर रहे हैं इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वेरा कोई स्वार्थ, जन समुदाय का सबका भाग वाला इसे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिर गंगा परिवार के साथ में उसका सार्थी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है, और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी आपने प्रेरित किया है, तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है और जो गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
3: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसलिए इनमें से एक शोध बनाई, इनमें से ये पेड़ का पेड़ फर्स्ट सब्जेक्ट है। अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट रखाए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है, आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
2: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है, और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है, तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला, तो इसमें 2-3 चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहां की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में 2 चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना, तो वहां पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहां पे पथराड़ और डूंगराड़ है। तो पानी स्टोरेज की बात है, तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेकडैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूरल की बात हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है, लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है ना, वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए, उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है, वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गांव के आगेवानों को, 25 इंच बारिश, 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला, तो वहां के गांव के आगेवानों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझा कर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चैम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जुड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है, मैं बोलता हूं अगर पानी में कोई 1,00,000 रुपया लगाता है ना, तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
2: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा, तो क्या होगा, बार बार एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है, पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना, तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है, किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ने, तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा, तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी वो चेकडेम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने, उस गांव में खुशहाली आने देख, मैंने देखा। हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते, थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल, और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेकडेम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए, तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था वो पानी

0: 30-40-50 फीट पे आ गया और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा तो वो सबसे बड़ा फायदा होता है।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया जल संचय के काम के लिए, जो जहां पर बोरवेल के मशीन ही आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना, तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं लोगों को, एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं, और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं, और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं, वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरना की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है, वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया, जो जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी, क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी, और वो डुंगराल प्रदेश का गांव, अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासु पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। 30 साल हम गर्मी में गया था ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना, तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना, तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी, तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना, तो पानी बचाना है। वो हमने नजदीक से देखा है।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को, आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं?
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, हर आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े, ऐसी जो समझदारी की बात है। हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते, बचाने की कोशिश करने की समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है, तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
2: ज्योत से ज्योत जलाने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ। दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने क्या फायदा गैर फायदा होता है उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया, तो हमारी सोचा जब भी बात हो मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ, और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से आगे आगे बात काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्टबॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम जारी रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय की कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
0: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं, तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है, तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे, तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का गाप गवर्नमेंट में, तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की, तो हम तो लोग भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे, लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की, और ये मंत्रालय का काम कर रहे सी आर पाटिल साहब। सी आर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है, और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे, राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली, हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसके काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप्स के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए, ये चल रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है और हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताइए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
0: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है, हम देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतना आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो ये पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिर गंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम मेरे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए, जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूं कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के CSR एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाए जाए ना तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई मेरे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर स्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है। और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जल संचय में, कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआं रिचार्ज, डैम बढ़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जल संचय में लगाना है। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा। जिस गांव आपके जल संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा। और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राजकीय आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मैं का मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ना, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपया का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। विचार चला, मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील के एक सोरठा गांव में, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके, वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुत्व दिया है जल संचय से जनभागीदारी और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन। तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
3: कैच द रेन। बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे। लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो, हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Well, that was a fun beginning with Rima, isn't it? Yes, and just that, we are going to continue on our Sunday drive. But yes, we have a very, very short little break coming up right now.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
10: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
9: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
10: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: मम्मी,

0: Well, that was a lovely number, isn't it? Jack John would drink the water, and just like that on our drive, that special Sunday drive that we are on, although, you know, I want to add that it's quite imaginary. Well, the rain is now beginning to move away and little grey patch of sky is opening up. So somewhere ahead, the sun is waiting. And this is why Sunday drives are so, so good, friends. And that's because you don't need everything to go according to the plan. Sometimes the detour is the best part, isn't it? Well, we are going to continue our special Sunday drive. But yes, after this very, very short break.
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: And you are played cool with your friend Vandana on 102.6 megahertz. Akashwani Rainbow. And here we land very, very safe while we are on this wonderful Sunday drive. Although it's quite

0: So that was Elliot James Ray with this lovely track. Yes, friends, and we have already taken a trip to back home. Yes, and this Sunday drive, although imaginary, is still on. We still have some more time, and we still have some more time for this little short break.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती
6: आज की रात मजा
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
4: म्यूजिक मस्ती
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती
9: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक ये हैं भारत के सोल्जर्स इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ, और जो SMS आप भेजेंगे व्हाट्सएप पर जो आप भेजेंगे हमें, वो जो नंबर है हमारा सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, वो है 9868107070 9868107070। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार, और दोस्तों

इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद के गीत सुने और उन गीतों के साथ साथ जो आपकी जुड़ी हुई यादें हैं ना, वो भी हम तक पहुंचे। और अगर उन यादों के साथ साथ कुछ और भी बात आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आप प्रोग्राम के बीच में जब भी आपका मन करे कि हाँ अब ये बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या ये गीत आप सुनना चाहते हैं, तो वो बातें आपकी और वो गीत हम तक पहुंचे और हम आपका स्वागत करते हैं। मौसम जो है बहुत ही खुशनुमा है इस वक्त, बारिश हुई है थोड़ी दिल्ली में और अभी उम्मीद है कि और होगी और कई हिस्सों में भी और देश के हो रही है बारिश, तो बारिश का आप आनंद ले सकते हैं और इस गीत के साथ उस आनंद को और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। स्वागत है आपका इस गीत के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में।

रहे आप दिल से दिल तक। और इस गाने के साथ साथ ये जो पूरा मानसून का वाइब है ना, वो लगने लगता है कि हाँ बिल्कुल थिरक सकते हैं हम इस गाने पर। कुछ ऐसा ही गाना था, और भी कई गाने हैं जो आप तक पहुंचने वाले हैं, उन पर भी आपको मौका मिलेगा थिरकने का, क्योंकि आखिर आपकी ही पसंद के हैं तो आप उन पर तो थिरक सकते हैं। फिलहाल वापस इन्होंने तो क्या कह दिया वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ आपने क्या कहा है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और जैसे ही बजा एक आपके मैसेजेस धड़ाधड़ आने शुरू हो गए। तो चलिए पहले मैसेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं किसने ठीक एक बजे मैसेज किया हमें। ठीक एक बजे, जबकि हम आप तक पहुँचे भी नहीं थे, तब से ही मैसेज आपके आने शुरू हो गए। वाणी बापू का मैसेज आया है, इसके अलावा कविता का देवभूमि उत्तराखंड से मैसेज आया है, पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है, और कुछ गीत हैं उन्होंने सजेस्ट किए हैं कि ये गाने हैं जो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। और उन गानों के साथ अगर जुड़ी कोई आपकी याद होती, कोई आपकी बात होती, तो वो भी तो हमें अच्छा लगता ना। जैसे प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग, तो आपका वाला सॉन्ग तो है, लेकिन आपकी वाली बात भी अगर उस प्रोग्राम का हिस्सा बनती है तो बात कुछ और होती है ना। तो अगले जो मैसेज की तरफ अगर हम चलें, चलते ही हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी का मैसेज है, और बहुत ही सुंदर सा इन्होंने पोस्टर अपना बनाया है, ऊपर सारा बानो जी का फोटो लगाया और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और नीचे अपना भी फोटो लगाया है, और इन्होंने वो हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, और हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा जो दी गई शुभकामनाएं हैं अगर सायरा जी सुन रही हैं तो उन तक पहुंच रही हैं। और अगला जो मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश जी का है, और सौरभ अनेजा हमारे पुराने साथी हैं गाजियाबाद से लिखते हैं कि इनकी कोई सॉन्ग चॉइस होती नहीं है, बस ये शो को इन्जॉय करते, तो आप इन्जॉय करते रहिए, हम आपके लिए ही आते हैं ताकि आपका इन्जॉयमेंट जो है वो ज़रा भी कम ना हो। और अब अगले मैसेज की तरफ हम चलते हैं। अगला मैसेज किसका है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, नाम ढूंढने में कई बार थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि देर भली लेकिन जब काम हो जाए तो अच्छा लगता है। अगला मैसेज है अमरदीप कुमार का, कुप्पमपट्टी जलाकंडा पुरम बाजार सेलम जिला तमिलनाडु से। आपने इतना अच्छे से अपना जगह का नाम लिखा है कि मुझे धीरे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल तमिलनाडु के कुप्पमपट्टी में पहुंच गया, अच्छा लगा ये जानकर। और अगला जो मैसेज है ये किसका है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ, राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा जम्मू और कश्मीर से इन्होंने लिखा है, एक गाना सुनने की इनकी भी फरमाइश है। और फरमाइश करने वालों में हमारे और भी साथी हैं, परमार, अमित, कमलेश भाई, इन्होंने कहाँ से मैसेज किया, अमरेली से, इन्होंने कोई गाना सुनने के लिए कहा है कि कोई सुनवा दीजिए। गुड्डू धाकड़ जी उज्जैन ज़िले के बेडावन गांव से लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरा प्रोग्राम जो है सुनते हैं, गाने पसंद आते हैं, और इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। और भी कुछ फरमाइशें हम तक पहुँची हैं, कई नंबरों से हमारे कुछ दोस्त हैं एक ही तरह के मैसेज भेज रहे हैं, तो एक नंबर से भी आप करेंगे तो भी चलेगा, वो सारे मैसेजेस जो है आपके जब एक जैसे होंगे तो कैसे, हम एक ही मैसेज को रिपीट करने में थोड़ा सा तो मुश्किल होगी ना। तो अगर आप एक से भेज रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि धीरे धीरे हम उस तक पहुँचेंगे, और आपकी जो फरमाइश है, अगर फरमाइश आपकी किसी कारणवश ना भी हम आप तक पहुँचा पाए तो भी आपका नाम तो इस प्रोग्राम का हिस्सा हम ज़रूर बनाएंगे। और आज एक और गाना है ख़ास वो आपके लिए, चलिए सुनते हैं इसे भी आपकी फरमाइश पर।

केके की मैजिकल वॉइस में ये कमाल का गाना हमने सुना। और आज केके की बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो उन्हें हम नमन करते हैं इतने महान सिंगर को। और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें बहुत सारे हमारे श्रोता जो हैं याद भी कर रहे हैं, और आप लोगों की फरमाइश पर ये गीत हमने उनकी याद में आप सभी तक पहुंचाया। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं आपकी जो अब तक हम तक पहुँच गई हैं और उनको हमने आप तक ऑन एयर नहीं पहुँचाया। अगला नाम है, इनका नाम क्या है, बेगूसराय बिहार से हैं मोहम्मद कौनेन। इन्होंने लिखा है कि अच्छा, जब कोई ऐसा प्रोग्राम आता है जिसमें फरमाइश वाला गाना बजे तो दिल खुश हो जाता है, और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश कर दी है लगे हाथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आफशा खानम, धामपुर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से मैसेज किया है, एक गाना सुनने की फरमाइश की है, और फरमाइशें कई और लोगों की हम तक पहुँची हैं। नाम है इनका निर्भय सिंह, पटना से इन्होंने लिखा है कि एक गाना जो है इनको अपनी पसंद का सुनना है, और ये अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं उन्हें, सुधांशु सिंह, तेजस्वी सिंह, निर्भीक सिंह। और अच्छा, निर्भय और निर्भीक दोनों नाम है आपकी फैमिली में, वेरी गुड वेरी गुड। निशिता और साथ ही साथ सिंह फैमिली के सभी मेम्बर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्त, आपका ये मैसेज हम तक पहुँचाने के लिए। सत श्री अकाल राजेश पाजी, सत श्री अकाल तनु भी भाई, आपका नाम मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप प्रदीप सलूजा जी हैं। संगीता सलूजा जी भी साथ में ही हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, और आपने प्रोग्राम सुनने के दौरान अपनी बात हम तक पहुँचाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आपने फरमाइश भी की एक गाने की, तो हम उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ढूंढने की कोशिश जब करेंगे तो आप तक पहुँचाने की भी कोशिश हो ही जाएगी। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से इन्होंने मैसेज किया है, और एक गाना इन्होंने भी सुनने की फरमाइश की है। आकांक्षा का मैसेज है मुंबई से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की बात कही और कहा है कि आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है, तो आवाज़ कई बार मौसम के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अलग भी लगेगी तो भी जो मेन टेक्सचर है वो बना रहेगा। अगला जो मैसेज है वो है हनु आनंद मिश्रा का, ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने लिखा है कि रोज़ प्रोग्राम को सुनते हैं, और एक गाना इनका जो है थोड़ा पुराना गाना इन्होंने सुनने की फरमाइश की है, तो उसको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इम्तियाज़ का मैसेज आया है, अच्छा ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अच्छा कल का ही मैसेज उठाकर आज भेज दिया। ओफ हो, कम से कम नाम तो बदल देते थोड़ा सा, तो मुझे भी लगता है कि हाँ वाकई में आप मुझे सुन रहे हो, थोड़ा तो लगता है ना ऐसा कि आपने बताया कल वाले प्रोग्राम का आज भेज दिया। मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बातें नहीं भी हो सकती है। अगला जो मैसेज है, आपका नाम है इला और सौरभ जर्मनी से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है, और फरमाइशें जो है हम तक लगातार पहुँच रही हैं, और लगातार पहुँचनी भी चाहिए क्योंकि हम आपकी पसंद के गीत आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070, इस नंबर पर आप हम तक अपनी जो फरमाइश है वो पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ उस गीत के साथ आपकी कोई याद हो या फिर कुछ और भी बात हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे और आप हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर हम

बार फिर से आपको बता देते हैं, 9868107070 9868107070 इस नंबर पर आप तब तक पहुंचाइए अपनी बात और हम आप तक पहुंचाते हैं एक और आपकी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी जो फरमाइशें हम तक पहुंची हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं। आप बने रहिए FM रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद मोदी

0: नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश। और ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे ये चला था किनकी पसंद पर? ये चला था गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने इस गाने की फरमाइश की थी। हालांकि इनकी फरमाइश में कई और भी गीत थे। इन्होंने पूरा ऐसा लगता है पहले जब हम बहुत पहले जब कैसेट्स में सुना करते थे गाने तो लिस्ट बनाते थे उन गानों की और वो गाने हम उस कैसेट में भरवाते थे और फिर जब मन चाहता था तब सुनते थे। कुछ उसी तरह की लिस्ट बनाकर इन्होंने भेजी है। बहुत अच्छा लगा दोस्त आपकी जो फरमाइशें थी उनमें से एक को हमने आप तक और अपने सभी साथियों तक पहुंचा दिया है। अगला जो मैसेज है ये है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का। इसके साथ साथ अच्छा इन्होंने तो ओखला संगम विहार दिल्ली से लिखा, साथ ही साथ नीचे थोड़ा सा डॉट डॉट डॉट करके एक और जगह का नाम आता है। उस जगह का नाम है राजनगर गांधी चौक मधुबनी से। उसमें कुछ और नाम शामिल होते हैं और वो नाम है अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता का। इन सभी लोगों का मैसेज आया, इन्होंने कहा कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए। चलिए जी कोई भी गाना सुनवा देंगे आपको। मलकापुर से अशोक कुमार आहूजा का मैसेज आया, इन्होंने कहा है कि एक गाना सुनवाइए। गाने के साथ इन्होंने फिल्म का नाम भी लिखा है। और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इनका मैसेज आया एक बार फिर से, एक गाने की फरमाइश की है। और अब्बासी परिवार का भी मैसेज आया, इसमें मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का भी मैसेज आया है। इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। दोस्तों आप लोग गाने की फरमाइश कर रहे हैं और हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग हो रही है। मिसिंग ये हो रही है कि अगर आप कुछ अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते ना, कुछ अपने बारे में बताते या कोई इस गाने के साथ जुड़ी हुई कोई बात होती या फिर कभी खुद आपने गाने की कोशिश की हो या कोई गाना गाया हो या फिर कुछ गाना लिखा ही हो, यानी कि कुछ तो हो अलग जो आप उस गाने के साथ जोड़कर हम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी गाने के साथ आपकी यादें जुड़ती हैं, आपकी बातें जुड़ती हैं, तो वो गाना हो जाता है और भी ख़ास। और हम इस प्रोग्राम को ख़ास बनाते हैं आपके मैसेजेस के ज़रिए, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से चलते हैं मैसेजेस पर। अमर राज कुंवर और शाहरुख खान की फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं ये। इनका मैसेज आया, अभी भी कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लिखते रहिए, बहुत पहुँचाते रहिए हम तक। उमेश मंडल का आया है मधुबनी से, बिहार से मैसेज है। इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और फरमाइश करने वाले में हमारे कुछ और भी साथी हैं जिनकी अच्छा फरमाइशें हो भी चुकी है पूरी। उन्होंने भी मैसेज करके अपनी बात लिख कर पहुँचाई है। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और हमेशा से हमारी पसंद का सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन आज आप अपनी पसंद का सॉन्ग प्ले कीजिए। वाह वाह क्या बात है नीरज ध्यानी जी, आपने तो एक तरह से पूरी तरह से कहिए कि दिल जीत लिया कि आप मेरी पसंद के गाने। वैसे आपकी पसंद में ही मेरी पसंद है और जो जो गाने आप तक पहुंच रहे हैं ना उसमें भी ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ ये आपकी पसंद है बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये गाने तो मेरी भी पसंद के हैं जो आपके थ्रू पहुँच रहे हैं और उनको आप तक पहुँचा के मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है। प्रगति राज पटना से इन्होंने मैसेज किया, इन्होंने कहा है कि एक गाना सुनना चाहते हैं और गाने के जो हैं बोल भी लिखकर पहुंचाए हैं और कुछ और भी बातें लिखकर पहुंचाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, आपके द्वारा जो सजेस्ट किए गए गाने हैं हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगला जो मैसेज है असम अच्छा और नागालैंड दोनों जगह से आपने कैसे मैसेज किया है? अच्छा बिमल बासुमतुरी असम से हैं और साथ साथ सुनीता भी हैं इनके साथ बासुमतुरी, इन्होंने भी मैसेज किया है। इसके अलावा दीमापुर से भी मैसेज आया है। रुकोविले मेठा ये शायद नाम है, इन्होंने मैसेज करके भेजा है और गाना सुनने की फरमाइश की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका अपना ये अच्छा सा मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। और अब एक बार फिर से शुरू होता है कई लोगों के नाम का एक मैसेज में आने का सिलसिला, जिसमें है ज़िला मुरादाबाद के ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, इन्होंने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। तो जी बिल्कुल आपका इंतज़ार ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप सभी का नाम शामिल करते हैं इस गीत में।

थोड़ा इंतजार आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी कुछ और फरमाइशें, आपके कुछ और मैसेजेस इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश और मेरे साथ है आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो चलिए चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें आपकी हम तक पहुंची हैं। मोहम्मद याकूब अंसारी चंडीगढ़ से लिखते हैं कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, बारिश भी हो रही है और धीरे धीरे और प्रोग्राम का आनंद भी ले रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और इसी तरह से हम आपके सफर में, आपके घर में, आपके किचन में, आप जहां जहां जाते हैं हम आपके साथ अपनी एयरवेव्स के जरिए पहुंचते हैं आकाशवाणी FM रेनबो। और अच्छा लगता है जब आप अलग अलग कार्य में लगातार लगे होते हैं और हमारे साथ भी आप जुड़े होते हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। अगला जो मैसेज है ये है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा जी का। इन्होंने दतरिंगी भाटेपारा छत्तीसगढ़ से मैसेज किया है। और मैसेज भेजने वाले में कुछ और हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत सारी स्माइलीज किए। अब उन स्माइलीज को पीछे छोड़ते छोड़ते आपका नाम तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा दोस्त। तो अगर आप साथ साथ बाद में आपने अपना नाम भी लिख दिया होता तो थोड़ा और भी अच्छा लगता हमें। यश शिंदे जी, आपकी पसंद का गीत हमने चला दिया था लेकिन आपने कहा है कि आपका जो नाम है इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाया, तो दोस्त अब बन गया। देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। तो बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, फिर हम धीरे धीरे आपके मैसेज तक पहुँचेंगे। और अगर आपकी पसंद का गीत ना भी चले तो भी आपकी पसंद का गाना तो हम नहीं भी चला पा रहे तो भी आपका नाम तो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बना ही नहीं सकते हैं। वैसे आमतौर पर शिकायत लोगों की ये होती है कि उनका नाम तो लिया लेकिन उनका गाना नहीं चला। आपका आज दूसरा था, आपका गाना चला लेकिन आपका नाम नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं, कभी आगे पीछे होता है, लेकिन अच्छा ही बात यह है कि आपने उस चीज़ को समझा, दोबारा से अपनी बात हम तक पहुंचाई और गाना आपको पसंद आया उसके लिए आपने अपनी बात लिखकर भी हमें भेजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉली का मैसेज आया, इन्होंने कहा है कि KK का सॉन्ग जो है सोनिए वो अच्छा लगा इन्होंने और भी बातें लिखकर इन्होंने पहुंचाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय, इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है और अपनी बातें लिखकर पहुंचाई हैं इन्होंने। अच्छा, शिकायतें भी आप खूब करते हैं ऐसा लग रहा है आपके पुरानी बातों से। अगला जो मैसेज है, आपका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, आपका नाम तो मिल नहीं रहा। अहमद, हाँ अब मिला और आपने उसको सारे जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा, ये और अच्छा काम किया आपने ताकि हमारे लिए ढूंढना हो गया आसान। मोहम्मद सलीम और इन्होंने जसपुर उत्तराखंड से लिखा है और इन्होंने अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। इसके अलावा जो मैसेज भेजा है हमें, उनका नाम है, क्या नाम है, इनका नाम है मधु किरण कड़कड़डूमा दिल्ली से। इन्होंने बहुत अच्छी सी बात अपनी लिखकर पहुंचाई कि करीब 5 साल की लव स्टोरी के बाद इनका विवाह हुआ, बहुत सारी रुकावटें आई और उस समय रह रहकर एक गीत याद आता था फिल्म बॉडीगार्ड का। हालांकि दोस्त वो गीत तो हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे अभी, लेकिन आपने जिस खूबसूरती के साथ उस गीत का जिक्र किया है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, और बहुत शानदार गाना था और आपने जो अपने साथ उस गाने को जोड़ा है वो जानकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, तो धन्यवाद आपका भी। किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु कॉलोनी, ये रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इन्होंने मैसेज किया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक पहुंची हैं किसकी। कविता जी ने एक बार फिर से लिखा है, पूछा है कि 3 गाने भेजे हैं, एक भी प्ले नहीं किया है, क्यों क्यों क्यों क्यों। तो कविता जी, कई बार क्या होता है ना कि हम आपकी पसंद का गाना आप तक पहुँचाते हैं लेकिन कई और दोस्त होते हैं जिनके कई बार से लगातार हम तक वो गाने की पहुंचती हैं फरमाइशें और हम उन तक नहीं पहुंचा पाते, तो हम सोचते हैं कि चलिए एक हफ्ते आपका सुना देते हैं, अगले हफ्ते उनका सुना देंगे, उससे अगले उनका, फिर आपका नंबर आएगा ही, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं और नाराज़ भी मत होइए। आपका मैसेज हम बिल्कुल शामिल करते हैं और आपके गानों को भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। मोनू पाराशर अलीपुर दिल्ली से, इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है। और किसने की है फरमाइश, अच्छा नाम जिनका शामिल हो गया उन्होंने भी मैसेज दोबारा से करना शुरू कर दिया है कि कम से कम उनका जो नाम इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। विवान प्रजापति और इन्होंने मैसेज किया है, राधे राधे ललित राहुल गार्डन यूपी, इनका इनका एक मैसेज है, इन्होंने कहा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए हमें फिल्म राज से, तो फिल्म राज का गाना सुनना चाहते हैं आप, तो चलिए कोई राज है तो वो भी बता दीजिएगा हमें, लेकिन अब आपने कहा है तो चलिए सुनते हैं मिलकर हम और आप ये फिल्म राज का गाना।

दोस्तों आपके मैसेजेस लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और हम भी उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दी हैं। रेशम, प्रतिमा, नीलम, सुमन, समीर, सुजीत जिला छपरा बिहार से इन्होंने लिखा है, एक गाने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक जो पहुँची हैं उनके नाम आपके लगातार पहुँच रहे हैं हम तक। कंचन सोनिया बिहार दिल्ली से इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और नाम हम तक आया है एक और, इनका नाम है दक्ष भटनागर, मेरठ से इन्होंने मैसेज किया है और इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से इन्होंने मैसेज किया है और प्रोग्राम में एक गाना भी सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है। दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ। और पवन कसेरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैसेज लिखा है और मैसेज किसने लिखा है, इनका नाम है गीता धुरी, इनका भी मैसेज आया है और मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं। पंकज डोगरा पंजाब पुलिस चंडीगढ़ से इन्होंने मैसेज किया है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, लगातार सुनते हैं और जय हिंद का है, जय हिंद आपको भी, और अपनी बातें इन्होंने लिखकर और भी पहुंचाई हैं। और मैसेज किया है अनीता वर्मा ने दिल्ली से, इन्होंने कहा है कि मेरा संदेश है कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें, पानी बचाकर देश का सहयोग करें और इनकी कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बचाई जाए। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और अगला जो मैसेज है वो है किसका, इनका नाम है परमीना और इन्होंने पहलगाम कश्मीर से मैसेज भेजा है और वसीम जी ने भेजा है परमीना जी के नाम, वसीम डार ने, और अपनी बात लिखकर पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। और सलीम अख्तर साहब का मैसेज आया है, इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है, फरमाइशों में कुछ और नाम है, काफ़ी देर से एक नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जब जब मैं सोचता हूँ कि आपका नाम अब शामिल होगा एक और मैसेज आता है आपका और आपका नाम और ऊपर चला जाता है। नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपड़ ज़िला उत्तर गोवा से इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है और अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। मोहम्मद फुरकान साहब का भी मैसेज आ रहा है, काफ़ी देर से कई मैसेज लगातार दम पे दम किए जा रहे हैं और अपनी बातें हम तक पहुँचा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ और जो है मैसेज आए हैं, मनमोहन सिंह, सोनम, काव्य और दक्ष का। अच्छा, आपने पिछली बार भी ये गाना सुनना चाहा था और सुना भी था और आपने फिर से इसी गाने की फरमाइश किए, तो हफ्ते हफ्ते के हिसाब से आप फरमाइशें बदल भी तो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप बदलेंगे फरमाइशें तो हमारे पास भी थोड़ा चॉइस ज़्यादा होंगी। और अगला जो मैसेज है वो आपका नाम ढूंढ रहा हूँ, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और मैसेज कुछ और भी हैं, इनके नाम है रवि जोशी का मेरठ से और मैसेज किया है और भी कई साथियों ने। तो दोस्तों अब समय है कि एक गीत आप तक पहुंचा दिया जाए आपकी पसंद का और उसके बाद चलते चलते कुछ और दोस्तों के नाम शामिल करेंगे और एक और गीत शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल समय है उस गाने का जिसने एक समय एकदम सबको थिरकने पर कर दिया था मजबूर।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और दोस्तों समय थोड़ा सा कम है अब, लेकिन चलते चलते हमारी कोशिश ये जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा आपके नाम जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज आया है। और इसके साथ साथ मैसेज हमें भेजने वालों में कुछ और भी हमारे साथी हैं। और रवि जोशी मेरठ से हैं। इसके अलावा मैसेज किया है, किसने मैसेज किया है उनका नाम मैं ढूंढ रहा हूं, नाम आपके मिल भी रहे हैं और मैं उन नामों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बना भी रहा हूं। युवराज चौहान का मैसेज आया है और मैसेज भेजा है किसने, आपका नाम कहाँ गया, अच्छा नाम मिल गया और नाम हमने शामिल भी कर लिया है। ये है नाम आनंद बेरवा टोंक राजस्थान से। इन्होंने हमें लगातार अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं और भी बातें आपकी लगातार हम तक पहुंची, तो शुक्रिया दोस्त आप सभी लोगों का। कई बार क्या होता है कि आपके मैसेजेस पूरे पूरे, कई बार आप लोग इतना लेट हम तक पहुंचाते हैं कि सभी मैसेजेस को शामिल करना मुश्किल होता है और आपकी सभी फरमाइशों को भी कई बार नहीं कर पाते। लेकिन हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें, ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपकी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उसी कोशिश में हम आज भी लगे रहे। तो आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीर दमन सिंह जी इस समय स्टूडियो में आ चुके हैं, अगला प्रोग्राम आप तक वो लेकर पहुंचेंगे थोड़ी देर में। चलते चलते ये गीत आपके लिए, नमस्कार।

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ब्रिक्स युवा एलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिय स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधि मंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमरीकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहराया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत एबारकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में एक एक की बराबरी पर हैं रही। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। तो ये तो थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम आशियाना लेकर आपके साथ हूं मैं। और आज आशियाना में, आज रविवार है, रविवार में आज जो रविवार को खास प्रोग्राम होता है वो होता है छोटे उस्ताद। तो छोटे उस्ताद लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लवली लिसनर्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों आपके साथ मैं हूं आरजे वीरदमन और आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम छोटे उस्ताद। छोटे उस्ताद का हिंदी में अगर अर्थ हम जाने तो होता है छोटा गुरु, कम उम्र का उस्ताद होता है। ये शब्द आमतौर पर किसी ऐसे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत कम उम्र में किसी कला, संगीत या कौशल में अत्यधिक निपुण या एक्सपर्ट हो। बच्चों को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ने के लिए इन्हें केवल उपदेश नहीं देना चाहिए बल्कि उनके साथ त्योहारों में शामिल हों और प्रेरक कहानियां सुनाएं, घर पर उनको अच्छे संस्कार दें, मातृभाषा का प्रयोग करें, खुद बड़ों का आदर करके उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है। और छोटे उस्ताद तभी तो इन चीज़ों को सीखकर एक जिंदगी में सफल इंसान बनते हैं। और वो सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके पीछे कठिन परिश्रम होता है, डेडिकेशन होता है, डिसिप्लिन होता है। और आज हम एक ऐसे ही छोटे उस्ताद के साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, वो हैं जो कि यूनिसेफ की एडवोकेट रोल में भी हैं, कार्य करती हैं और ट्रैवलिंग भी करती हैं, स्कूलिंग भी करती हैं और साथ ही साथ उनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी मिला है और जिनका नाम है प्रसिद्धि सिंह। मात्र 13 साल उनकी उम्र है और इतने कार्यों में काम कर रही हैं इन्वायरमेंट के लिए। उनके साथ आज हम जुड़ेंगे और बातें करेंगे और कुछ इंस्पिरेशन और बच्चों को भी मिलेगा उनसे। तो रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम में, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और आज हमारे साथ एक छोटे उस्ताद हैं, हम कहेंगे, जो हमारे साथ हैं। और मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि कौन है हमारे साथ। हमारे साथ हैं प्रसिद्धि सिंह, जो कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में उनका जन्म हुआ और सामाजिक उद्यमी हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और अपने द्वारा स्थापित प्रसिद्ध फॉरेस्ट फाउंडेशन के माध्यम से पूरे भारत में 2,00,000 पेड़ और 125 जगहों पर ये जो जंगल हैं उनका वृक्षारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व कर चुकी हैं। और साथ में ही ये तमिलनाडु के पिछले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पुडुचेरी में प्रसिद्ध नियमित रूप से पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में लगी हैं और साथ ही साथ इनको सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यूनिसेफ की ये जो है एडवोकेट रोल में भी कार्य करती हैं। तो प्रसिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो पर।
7: हेलो। नमस्ते नमस्ते। हेलो
6: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सुना जा रहा है इस वक्त हमारे प्रोग्राम छोटे उस्ताद के माध्यम से आकाशवाणी FM रेनबो पर। तो मैं आपसे सबसे पहले, आपके बारे में इंट्रोडक्शन मैं आपका देख रहा था, इतना बड़ा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं।
7: जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वंडरफुल प्रोग्राम छोटे उस्ताद पर आपने मुझे इन्वाइट किया, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत के बल्कि पूरे विश्व के जो यंग लोग हैं, हम ही लोग साथ में मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं।
6: जी,
7: तो जो भी ऑडियंस है उनसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 13 साल की हूँ, तमिलनाडु में रहती हूँ और मैंने 2,00,000 पेड़ लगाए हैं 125 जगहों में। मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। मैंने प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन क्रिएट किया, जिसके द्वारा मैं ट्री प्लांटेशन करती हूँ, लेक रेस्टोरेशन करती हूँ, एग्रो फॉरेस्ट्री करती हूँ, ना केवल स्कूल के बच्चों के साथ बल्कि फार्मर्स के साथ, विलेजर्स के साथ, गांव में अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में काम, लोगों के साथ काम करती हूँ। और उसके अलावा मेरा काम अवेयरनेस पे भी फोकस्ड है, तो इंडिया के जो यूथ हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करना, चेंज नाउ जैसे पेरिस में जाकर यंगेस्ट कीनोट स्पीकर के रूप में एड्रेस करना वहां के ऑडियंस को, और यूनिसेफ

0: नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई वो एक अलग बात है, लेकिन हम मैंने धीरे धीरे सीखा कैसे मैं अलग अलग चीजों को साथ में मैनेज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अभी स्टडीज भी करती हूँ, 9th grade में हूँ, तो एकेडेमिकली भी फोकस करना बहुत जरूरी है और पढ़ाई मुझे करनी भी बहुत पसंद है, तो अब मैं इसके लिए समय निकालती हूँ। जैसे कि मैं अगर फ्लाइट में हूँ तो मैं तब पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर मुझे जब भी मौका मिलता है, क्योंकि मैं इतना कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करती हूँ। अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली, लेकिन उसके बीच में, उससे जस्ट पहले मैं अभी भूटान जा रही हूँ UNDP समिट के।
1: अभी भी आप ट्रैवल कर रही हैं, तो उसमें आपने समय निकाला है। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और पूछनी थी कि सबसे पहले आपको पर्यावरण के प्रति ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला सबसे पहले?
0: तो जैसे कि मैं बता रही थी, मुझे नेचर हमेशा से पसंद है, लेकिन 4 साल की एज में 2016 में, जैसे कि आप जानते होंगे तमिलनाडु कोस्ट पे है,
1: जी।
0: तो 2016 में जब वारदा साइक्लोन आया, एक ऐसा साइक्लोन जिसमें एक 4 साल की बच्ची जो कि पेड़ों को वृक्षों को अपना दोस्त मानती है,
1: जी।
0: जब उसने ऐसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर को मैंने देखा, महसूस किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि पेड़ गिर रहे थे, बर्ड, स्क्विरल, मंकी सब इधर उधर जा रहे थे, पूरे रोड्स फ्लडेड थे, ट्रीज गिरे हुए थे। तो ये देखकर मैंने, मेरे दिमाग में ये आया कि ये नहीं आया कि ये सही कौन करेगा या इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बल्कि ये आया कि मैं क्या कर सकती, भले ही मैं सिर्फ 4 साल की हूँ, मैं क्या बदलाव ला सकती हूँ। और यही सोच रख कर फिर मैंने ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अभी मैं अपने खुद के नहीं लगा रही थी, लेकिन मैं अलग अलग जगह जाके पार्टिसिपेट करना, पेड़ लगाना, कि चलो एक पेड़ नहीं, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, ऐसे धीरे धीरे 2 साल लगातार अलग अलग जगह जाना, पेड़ लगाना, लोगों से सीखना, एक्सपर्ट से सीखना, गांव वालों से सीखना, फार्मर से सीखना। और ये करने के बाद फिर 6 साल की उम्र में मैंने 2018 में ये एक संकल्प लिया, एक गोल लिया कि मैं 1,00,000 पेड़ लगाऊंगी। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब ये कहा था कि मैं 1,00,000 पेड़ लगाऊंगी, तो हाँ, एक 6 साल की बच्ची ने कहा था, और एक आए भी थे, उन्होंने कहा, प्रसिद्धि क्या आपको पता भी है कि 1,00,000 में जीरो कितने हैं कि आप इतने पेड़ लगाना चाहते हो
1: 6 साल की उम्र में?
0: और मजेदार बात यह कि मैं समझ गई, उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत छोटी हूँ और मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे पता है 100 में 2 जीरो होते हैं, 1,000 में 3 होते हैं, 10,000 में 4 होते हैं, और 1,00,000 पेड़ में 5 जीरो होते हैं। और जिस प्रकार एक छोटा सा कैंडल पूरे रूम को लाइट अप कर देता है, वैसे ही मैं जानती हूँ मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मैं भी इस विश्व में एक बदलाव ला सकती हूँ।
1: जी,
0: और वैसे ही जर्नी शुरू हुई, और धीरे धीरे अब 2,00,000 पेड़ लगाना और अलग अलग फोरम्स में जाना करना।
1: बहुत अच्छी बात है। और आप इसके अलावा, चलो पर्यावरण तो है, क्या इसके अलावा और हॉबीज क्या है आपकी? म्यूजिक सुनती हैं?
0: जी बिल्कुल, म्यूजिक मुझे सुनना बहुत ही पसंद है, डेफिनेटली, क्योंकि मेरा मानना है 2 प्रकार की म्यूजिक, एक तो हो गए मंत्र, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत फोकस मिलता है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही थी पढ़ाई तो वो भी इम्पोर्टेंट है, मैं सारे सब्जेक्ट में A+ लाती हूँ, फिर काम करना, स्पीचेस देना, तो ये सब साथ में संभालने के लिए मैंने फील किया कि मंत्र बहुत यूजफुल है, और उसके अलावा इंस्पायरिंग गाने।
1: तो गाने से आपसे मैं पूछता हूँ कि गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? बॉलीवुड की मूवीज देखती हैं, गाने भी सुनती होंगी, तो कौन सा गाना, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं म्यूजिकल, तो कौन सा गाना सुनना चाहिए?
0: बहुत ही इंस्पायरिंग गाना है परिंदा।
1: हाँ।
0: और मेरा मानना है कि ये भी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कैंडल वाला,
1: हाँ,
0: कि लोग हमेशा सोचते हैं कि यंग बहुत छोटे हैं, वो क्या बदलाव लाएंगे, लेकिन इसमें भी एक परिंदा के बारे में कि मैं परिंदा क्यों बनूं अगर मैं आसमान बन सकती हूँ।
1: चलिए, मैं
0: तो एक छोटा सा क्यों करें अगर बदलाव बड़ा ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, मैं आपका एक गाना सुनवाता हूँ और उसके बाद बातों का सिलसिला और हमारी ये चर्चा चलती रहेगी, आप सुनते रहिए। तो दोस्तों, छोटे उस्ताद, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जैसे प्रसिद्धि कर रही हैं, आप भी कर सकते हैं। कम उम्र में इतनी बड़ी इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है, जैसा नाम है इनका, और साथ ही साथ ये कार्य कर रही हैं पर्यावरण में, इतनी जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है, और बातें और चलती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम छोटे उस्ताद में। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: अरे रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों आज छोटे उस्ताद में हमारे साथ हैं प्रसिद्धि सिंह, और जो कि केवल 13 साल की हैं और यूनिसेफ की एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट का एक रोल अदा कर रही हैं। और मैं प्रसिद्धि एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। और प्रसिद्धि, आपसे बात हो रही थी कि मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमान बनना है। बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना और ये गीत इतना इंस्पायर करता है सभी को। और मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इंडिया AI सबमिट भी हुआ था भारत मंडपम में, वहां पर भी आपने गए थे, तो वहां पर कैसा अनुभव रहा आपका?
1: जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अवेयरनेस में भी बहुत फोकस्ड हूँ
0: जी,
1: तो 2 लाख पेड़ लगाने के अलावा मैंने 1 लाख लोगों की अपनी इको आर्मी भी बनाई है 20+ कंट्रीज में।
0: ओके।
1: ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में, और मैं खुद 20+ कंट्रीज जा चुकी हूँ। उसके अलावा बहुत सारी जगह अराउंड द ग्लोब यंग लोगों की। और एक बहुत ही प्रेसिंग इशू, मेरा मेजर फोकस तो एनवायरनमेंट ही है, लेकिन एक बहुत ही मेजर इशू हमेशा से रहा है AI, क्योंकि वो एक्सीलेंट है ना, वो बहुत अच्छा भी है यंग लोगों के लिए, लेकिन वो हानिकारक भी हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है और वो हमारे माइंड्स को कुछ तरीकों से, एस्पेक्ट से लेजी भी बनाता है, डिपेंडेंट भी बनाता है
0: जी।
1: तो यूनिसेफ इंडिया यूथ एडवोकेट होने के नाते, जिसमें मैं जेंडर लाइवलीहुड और क्लाइमेट की यूथ एडवोकेट हूँ इंडिया के लिए, उसके नाते मैंने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भारत मंडपम में ओपनिंग एड्रेस डिलीवर किया था,
0: ओपनिंग एड्रेस,
1: जिसमें कि मैंने चिल्ड्रन एंड यूथ फॉर अ सेफ एंड इंक्लूसिव AI फ्यूचर का मैंडेट प्रेजेंट किया था
0: जी।
1: उसके अंदर की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, दुनिया के गवर्नमेंट्स को, क्योंकि ग्लोबल समिट था और इंडिया होस्ट कर रही थी
0: जी।
1: दुनिया के गवर्नमेंट्स को प्रमोट करना चाहिए, और मोर इम्पोर्टेंटली ये बोलने की जगह की AI को पूरी तरीके से या तो लाया जाए या हटाया जाए, मोर इम्पोर्टेंटली यंग लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि हम AI का सही तरीके से उपयोग कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: और ना केवल अपने होमवर्क में बल्कि दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया होमवर्क में। नॉर्मली AI और इन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे होमवर्क करने में, या कोई क्वेश्चन है या कोई उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, बट उसको हम ये पॉजिटिव तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं जी। प्रसिद्धि, जैसे आप यूनिसेफ का एडवोकेट भी हैं, तो उसमें क्या रोल रहता है आपका?
1: तो उसमें मेनली मैंने आपको अभी जो बताया, जैसे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में रिप्रेजेंट करना, उसके अलावा मैं 3 चीजें जो है मेजर थीम्स हैं जिनके लिए मैं हूँ इंडिया यूनिसेफ इंडिया यूथ एडवोकेट। पहला है जेंडर के लिए, तो क्योंकि प्रीवियसली मैंने जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तमिलनाडु के लिए।
0: okay.
1: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अंडर जो कि जो बच्चियां हैं रूरल स्कूल्स में, अलग अलग रूरल स्कूल्स में, मैं ग्रीन तमिलनाडु मिशन की भी चाइल्ड एम्बेसडर हूँ अपने स्टेट के लिए
0: जी।
1: तो उसमें मैंने 200 से भी ज्यादा स्कूल्स में रूरली हर एक बच्चे को एक सैपलिंग दिया है, एक फ्रूट सैपलिंग दिया है जो कि वो अपने घर में जाके लगा सकते हैं। और मैंने 10-10-15 फीट टॉल बैनियन ट्री स्कूल में

0: लगाए हैं, वहाँ पे हर स्कूल में एक छोटा सा फॉरेस्ट भी क्रिएट किया है, और एक मेजर फोकस हमेशा गर्ल्स पे रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज करना। उसके अलावा दूसरा है लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड यानी कि जो फार्मर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको सपोर्ट करना, रूरल कम्युनिटी को। क्योंकि मैं ग्लोबल फोरम्स में बात की है, जैसे COP30 हुआ था ब्राजील में यूएन के हेड के साथ, लेकिन ऐसी जगह हम ग्राउंड को भूल जाते हैं, ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्राउंड पे जो लोगों की आवश्यकताएं हैं
1: जी,
0: उनके बारे में ऐसे अवसर जब मुझे मिलते हैं तो उनकी आवाजों को वहां तक पहुंचाना। और तीसरा है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट तो ऑब्वियसली मेरा मेजर फोकस है ऐसे प्लेटफॉर्म्स।
1: ओके, क्लाइमेट का आपने बात किया, और स्कूलिंग भी कर रही हैं, स्कूल भी साथ में है, ट्रैवलिंग भी कर रही हैं, और लोगों को एड्रेस भी कर रही हैं एज ए जैसे यूनिसेफ के माध्यम से। तो कभी कभार ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं आती कि मतलब एज ए सेलिब्रिटी की, या वैसे लगता हो कि जहाँ जाते हैं सब पहचानते हैं, कैसा लगता है, कैसा फील होता है इतनी कम उम्र में?
0: अनडाउटेबली मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला है, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स से। लेकिन हमेशा जब भी ऐसा होता है तो मैंने बहुत यूजफुल, मैं आपको पहले भी बता रही थी, पाया है मंत्रों को। क्योंकि जी, क्योंकि एक बहुत यंग एज से, 2 साल की उम्र से मैं, मेरे जो गुरु जी हैं परमहंस पद्म भूषण अवार्डेड स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, उनके यहाँ से मैं मंत्र दीक्षित हूँ, और 2 साल की एज से वहाँ जा रही हूँ। जब भी साल में एटलीस्ट 2 बार जाना होता है, 1-1.5 महीने के लिए मंत्र चैंटिंग करना, हवन करना, योगा करना, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है मुंगेर में, योगा करना, चैंटिंग करना, सीखना। क्योंकि, और उन्होंने भी हमेशा से कहा है सेवा कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी एक प्रकार का कर्म योग है, तो वहां से ये सारी एनर्जी मुझे बहुत हेल्प करती है। एंड आई थिंक स्पेशली ऐसे टाइम पर ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया है, जैसे मैं भी सोशल मीडिया पे एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, मेरे 200,000 लोगों की फॉलोइंग है, कम्युनिटी है इंस्टाग्राम पे, और इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बीच कभी कभी हम खुद की ही एनर्जी को भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये मुझे डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करता है और ग्राउंडेड रखता है
1: ग्राउंडेड
0: ऐसे सिचुएशन में।
1: और आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं, मैं अभी मुझे को पता लगा कि आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं, और उनके ऊपर आप कर रहे हैं, काम कर रही हैं
0: जी।
1: तो मैं ये जानना जी,
0: मैं अभी एक्चुअली, अब मैंने आपको बताया था कि मैंने 6 साल की उम्र में 1 लाख पेड़ लगाने का मिशन लिया था
1: जी।
0: तो पिछले साल 12 साल की उम्र में मैंने ये गोल लिया कि मैं 10 मिलियन ट्रीज लगाऊंगी, 1 करोड़ पेड़ लगाऊंगी, और ये एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही काफी एम्बिशियस मिशन है, ऐसे बेसिकली एक 13 साल की बच्ची के लिए भी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये अचीव करने के लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाले हैं, और उनमें से एक तरीका है मैंने जो बुक्स लिखी फंड रेज करने के लिए, क्योंकि आप सोचे 10 मिलियन पेड़ कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं,
1: बिल्कुल
0: इसे अचीव करना एक बहुत बड़ा कार्य है। तो उसके लिए मैंने अपनी पहली बुक लिखी जो कि है प्रसिद्धीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट एडवेंचर। ब्राजील में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, उस पर मैंने एक इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक लिखी है, पूरी इलस्ट्रेशन से भरी हुई है, एक जर्नी के थ्रू ले जाती है, क्योंकि नॉवेल्स तो और स्टोरीज तो सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति के बारे में पढ़ सके तो उससे अच्छी और क्या बात है,
1: बात हो सकती है।
0: और जो दूसरी बुक मैंने लिखी वो उसकी पार्ट 2 है, तो वो प्रसिद्धिस ग्रेट बैरियर रीफ एडवेंचर पे है, जो ओशन है, जो कोरल रीफ्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में, ताकि एटलीस्ट हमें इनके बारे में अवेयरनेस हो। और अब आप सोचोगे कि ये मिशन 10 मिलियन में कैसे मदद कर रहा है, तो जब भी कोई एक बुक खरीदता है तो हर एक बुक पर मैं एक पेड़ लगाती हूँ, और अगर वो हमें लिखे हैं तो हम उनके बच्चे के बिहाफ पर उन्हें ट्री सर्टिफिकेट भी भेजेंगे कि कहाँ पे पेड़ लगा है, वो कैसा है, वो कैसे एक बदलाव ला रहा है।
1: बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो प्रसिद्धि, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, हमारा एक आखिरी सवाल होगा कि कैसे और लोगों को आप प्रेरित कर सकती हैं, कैसे और लोग प्रेरित हो सकते हैं कि वो प्रसिद्धि जैसा ये काम करें। तो मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि जो हमारे छोटे उस्ताद हैं इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी और यंगस्टर के लिए, हमारे जो यंग
0: बिल्कुल
1: जेंजी हैं?
0: जेंजी हाँ, मैं तो खैर अब जेन अल्फा में आती हूँ, जेंजी के बाद वाली जो जेनरेशन है
1: जी,
0: बट हाँ जेंजी जेन अल्फा इन जनरल जो चिल्ड्रन एंड यूथ हैं, उनके लिए मेरा कहना होगा दैट सबसे पहले नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, क्योंकि जब हम लोग न्यूज खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि यू नो जैसे 2050 तक देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन द सी देन फिश, 2100 तक ऑल द रेन फॉरेस्ट विल बी गॉन. हम ऐसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है, क्लाइमेट एंग्जाइटी आती है, एक परेशानी आती है कि फ्यूचर होगा भी कि नहीं
1: जी.
0: तो इसके बीच में एक उम्मीद रखना मेरा मानना है बहुत ही आवश्यक है, उम्मीद रहना बहुत जरूरी है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी जैसे कि हमने रिसेंटली इंडिया का 80th ईयर सेलिब्रेट किया
1: इंडिपेंडेंस डे,
0: तो हम हमेशा हमारी राइट्स की बात करते हैं ना, राइट्स की, राइट्स के लिए हम लोग बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वॉइस आउट करते हैं. लेकिन हम इस बीच भूल जाते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज भी हैं.
1: एग्जैक्टली.
0: और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और हमें ये ड्यूटीज फॉलो करना बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब जाकर 1,00,000 पेड़ लगाएं, लेकिन कोई भी प्रकार से अपने
1: देश के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एनवायरमेंट
0: पेड़ लगाएं, दो पेड़ लगाएं, या फिर जो भी हम लोग अच्छे हैं करने में उसमें प्रकृति को जोड़ें, हमारे देश के लिए हम अच्छा करें. तो ये मेरा मैसेज होगा. और मोर इम्पोर्टेंटली
1: थैंक यू सो मच प्रसिद्धि,
0: रीच आउट करें.
1: थैंक यू सो मच. आपने प्रसिद्धि इतना कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया और देश का नाम रोशन कर रही हैं, और मैं यही चाहूँगा, हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं. और मैं सबको यही कहूँगा कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं. प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम है, और प्रसिद्धि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, 2,00,000 पेड़ लगा चुकी हैं 125 जगहों पर. और हम आपसे यही कहेंगे ऑल द बेस्ट प्रसिद्धि, आप यूं ही प्रसिद्धि हासिल करें और देश का नाम रोशन करते रहें, और आपके साथ लोग यूं ही जुड़ते रहें और आपसे इंस्पिरेशन लेते रहें. थैंक यू सो मच.
0: धन्यवाद.
1: थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्धि. और दोस्तों, अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. मैं आपसे मिलूंगा अल्फा जेन में 4 बजे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा. बाय.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जरा सोचिए, हमारी हर नई सोच, हर खूबसूरत याद, हर मुस्कान और हर उपलब्धि की शुरुआत एक स्वस्थ मस्तिष्क से होती है। नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं दिमाग सही तो हर मुश्किल आसान, दिमाग परेशान तो हर खुशी भी बेकार। ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, यानी हर व्यक्ति तक मस्तिष्क स्वास्थ्य सेवाओं की समान और सुलभ पहुंच। क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क ही हमें सोचने की शक्ति देता है, सीखने की क्षमता देता है और सही निर्णय लेने का आत्मविश्वास देता है और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक और न्यूरोसर्जन, जो बताएंगे कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुँच सकता है। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज के हमारे ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, तो इससे क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है?
4: जैसे मैं कुछ साल पहले ले जाना चाहूंगा आप लोगों को, हमको ऐसा देखा गया था कि पहले जो न्यूरो सर्जरी की जो सर्विसेज थी वो सिर्फ टर्शरी केयर सेंटर्स में होती थी, टायर वन सिटीज में होती थी। तो इस चक्कर में क्या होता था कि जो अंदर हमारे भाई लोग रहते हैं या जो बहुत टायर टू टायर थ्री सिटीज में रहते थे, उनको सर्विसेज नहीं पाती थी समय से, और जिसके चक्कर में कई बार उनकी मृत्यु हो जाती थी या कई बार वो समय पे पहुंच नहीं पाते थे, जिससे बहुत सारे विकार हो जाते थे उनके शरीर के अंदर। तो और दूसरी चीज कि ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल मतलब कि हर एक को उसका बीमारी का इलाज मिले, अमीर गरीब किसी भी रूप से उसमें भेदभाव ना हो, और हर मरीज को जो भी इलाज है उसका संपूर्ण रूप से उसका इलाज मिले, हर इंसान को किसी भी भेदभाव से परे।
2: मैम, आप क्या कहेंगी इस पे?
3: जो मस्तिष्क स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन का आधार है, और बहुत ही अच्छा है कि ब्रेन हेल्थ में हम एक्सेस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। तो मैं इससे दो चार बिंदुएं जोड़ दूं। एक तो डॉक्टर वार्ष्णेय सर ने बहुत अच्छा बताया, जो न्यूरोसर्जिकल बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चोट है, साथ साथ जो साइकेट्री की परेशानियां हैं, है ना, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, या नशे की प्रॉब्लम्स है, या न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, हंटिंगटन्स डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सब बीमारियां ऐसे हैं कि हमें पता है कि इनका इलाज संभव है, लेकिन मरीजों तक इनका इलाज नहीं पहुंच पाता। तो हर एक को इलाज मिले, है ना, उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, कि वो पा सके उस इलाज को, अफोर्डेबल हो, उसके हालात ऐसे हों कि उसको निशुल्क या कम शुल्क में उसको इलाज मिल पाए, और एक्सेप्टेबल हो कि वो इलाज ऐसा हो जो मरीज स्वेच्छा से ग्रहण करे, और इलाज की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, बंधन भी होते हैं, उसको भी माने। तो ये एक बहुत व्यापक विषय है, लेकिन ये हम सबसे जुड़ा है। और अच्छी बात है कि आज हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इलाज पे नहीं है, एक्सेसिबिलिटी पे भी आ गया है, कि इलाज है लेकिन अगर मरीज को नहीं मिल रहा तो वो इलाज उपलब्ध तो नहीं हुआ ना। तो सबके लिए, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबको इलाज मिले।
2: तो हेल्दी ब्रेन यानी स्वस्थ मस्तिष्क किसे कहा जाता है, डॉक्टर राहुल?
4: स्वस्थ मस्तिष्क देखिए, आज की डेट में तो मैं कहूंगा होना बहुत ही मुश्किल है, बस यस, हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहे। सबसे एक जो एक बहुत ही पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके मस्तिष्क को आघात लगे, आप कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपको, हम अगर देखेंगे तो एक बहुत ही विशेष साइकिल होती है, आपका BP बढ़ता है, ब्रेन में और विकार, स्ट्रोक होने का संभावना होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क मीन्स आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के

0: में मैडम भी बताएंगी, थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ कि आपको आपका मस्तिष्क में ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होना चाहिए, एंड यस ऑफ कोर्स डाइट, आपको डाइट अपना ऐसा रखना है कि आपका मस्तिष्क जो प्रमोट मतलब जो आपकी बॉडी प्रमोट करती है आपके ब्रेन को, उस सब चीज को आप खाइए तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा एंड सोचने का ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होनी चाहिए।
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हेल्दी ब्रेन किसे कहेंगे हम?
2: जब हमारा ब्रेन एंड माइंड है ना, जो मन और मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में है, वो हमें मदद दे रहा है और वो हमें जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो हमें मदद देता है, फैसिलिटेट करता है। जब वही ब्रेन और मस्तिष्क और माइंड मन विकार होता है तो वो हमें हमारी जो भी हम चाहते हैं करना दिन में जीवन में वो हम नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छी परिभाषा है फंक्शनल उस पर कि अगर मस्तिष्क हमें मदद देता है हमें जीवन चलाने के लिए तो हेल्दी है, और नहीं देता तो यानी वो हेल्दी नहीं है। इसके आगे बहुत सारी बीमारियां हैं, तो अगर बीमारी है तो फिर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है।
1: कैसे हम मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम है, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
3: नमस्कार, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं गाड़ी चला रही थी और मैंने बस ट्यून इन किया तो आपका प्रोग्राम सुना और मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकूँ?
1: जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, और हमारे इस कार्यक्रम का यही प्रयास है कि हम आपके सवालों के जवाब दें। जो जो श्रोता हमें कॉल करते हैं अपनी परेशानी लेकर आते हैं। जी बताइए।
3: मेरा 14 साल का एक बच्चा है और वो बहुत स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज और आफ्टर स्कूल करता है, पर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में यही चलता रहता, तो क्या मतलब यही अनबन रहती है? क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ उसकी स्लीप टाइम को लेके, भले ही टेस्ट हो या कुछ भी प्लान हो या कुछ भी करना हो, आई मेक श्योर कि वो 8:30 तक सो जाए ताकि उसकी स्लीप 10 आवर्स की मिनिमम या 9.5 आवर्स की मिनिमम तो हो। बट मेरे हस्बैंड कहते रहते नहीं, अब तो अब एज बढ़ रही है, पढ़ाई बढ़ेगी तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस एज में कितना अप्रोप्रिएट है स्लीप और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेन डेवलपमेंट पे, स्पेशली एट दिस कॉग्निटिव लेवल?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो स्लीप है, निद्रा है, वो उम्र के साथ कम भी होती है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो शायद पूरे दिन सोता है और सिर्फ दूध पीने के लिए उठता है। आपका बच्चा 14 साल का है तो उसको 8 घंटे की नींद उसके लिए काफी होनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो 9 घंटा सोता है तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट 7.5 घंटे भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि घड़ी देख के ही बच्चे को सुलाना है, लेकिन कम नींद नहीं होनी चाहिए, उससे मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहता, बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण मिलता है, और बच्चे क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में जो पढ़ते हैं जितनी भी याददाश्त है वो नींद के दौरान कंसोलिडेट होती है। तो अगर नींद नहीं अच्छी होगी, रात भर जगेंगे तो अगली सुबह पेपर में नहीं लिख पाएंगे, तो नींद की आवश्यकता है, लेकिन हम रिजिडली नहीं कह सकते कि 10 घंटे ही सोना है बच्चे को। आप बच्चे की रिक्वायरमेंट देखिए, और ये भी जरूरी है कि समय से सोए, सूर्य के साथ जगें और सूर्य के साथ सोए। बहुत सारे बच्चे रात भर जगते हैं और कहते हैं हम दिन में सो लेते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है।
3: ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द कॉल एंड द मैसेज।
2: शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
1: आज रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पर, बातचीत जारी रहेगी लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: हम बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल पर। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, मेरा पूछना है कि एक बीमारी है डिमेंशिया, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो मेरा पूछना है कि डिमेंशिया क्या कोई मस्तिष्क ब्रेन की कोई कमी की बीमारी है या याददाश्त कमजोर होना है? हमारे आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं जैसे मेधावटी, मुक्तावटी, ब्रह्मीवटी, क्या हमारे एलोपैथ में भी कोई ऐसी दवाई है जो ब्रेन याददाश्त बढ़ाती है, और याददाश्त बढ़ाने के लिए 4-5 उपाय बताएं। ओम शांति।
2: धन्यवाद आपके सवाल के लिए गौतम साहब। जो जिस बीमारी को आप डिमेंशिया कहते हैं, हम लोग डिमेंशियाज कहते हैं, क्योंकि बहुत तरीके के डिमेंशिया होते हैं। कुछ ऐसे डिमेंशिया होते हैं जिसमें जो दिमाग की नसें हैं उसे कुड़ती हैं, और न्यूरो डिजेनरेशन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की इकाई है, वो टूटना और बिखरना शुरू हो जाती है, जैसे हमारे अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। कुछ डिमेंशिया होते हैं जो बीपी अगर तेज हो और स्ट्रोक हो जाए, या डायबिटीज हो, या पोल्यूशन में रहें, तो इन सब के कारण भी वैस्कुलर डिमेंशिया हो जाते हैं, कि दिमाग में खून का जो दौरा है वो उतने अच्छे से नहीं चलता, या तो ब्लॉक हो जाता है या जो धमनी है वो फूट जाती है। फिर कुछ डिमेंशियाज होते हैं जो हम न्यूट्रिशनल डिमेंशियाज कहते हैं। बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, उनकी डाइट में कई बार B12, फोलेट ऐसे विटामिन कम हो जाते हैं, उसके कारण भी डिमेंशिया हो जाते हैं। थायराइड की परेशानी हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, तो भी डिमेंशिया हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे रिवर्सिबल डिमेंशिया है ना, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। डिमेंशिया किस कारण से है, उसका इलाज उसके अनुसार ही है। जहाँ तक बात की सर ने कि एलोपैथी में क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो याददाश्त को सुधार सके, तो हमारे यहाँ भी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे याददाश्त सुधारने में या उसको मेंटेन स्टेबल रखने में मदद मिलती है, और वो डॉक्टर की संरक्षण में, उनकी एडवाइस पे, सलाह पे ही लेनी चाहिए। क्या तरीके हो सकते हैं अपने याददाश्त को सही रखने के लिए? एक उम्र के बाद अगर जितना आप अपने दिमाग से काम लेंगे उतना आपका दिमाग सुचारू चलेगा, है ना, मशीन की तरह दिमाग होता है, तो यूज इट और लूज इट। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम उम्र के साथ साथ छोड़ते जाते हैं, फिर वो काम छूट ही जाते हैं, तो अब ब्रेन को पता चल जाता है कि हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अगर विकार आता है तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, मरीज को भी नहीं पता चलता। स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है। अगर किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे वो तंबाकू ही क्यों ना हो, शराब हो, या कोई भी नशीला पदार्थ हो, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो, क्योंकि इन सबका दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। डाइट अच्छी रखें, पौष्टिक आहार लें, और अगर विटामिन्स की कमी है तो वो विटामिन्स लें। एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है, इससे सिर्फ शरीर के वर्जिश ही नहीं होती, दिमाग में भी खून का दौरा ठीक चलता है, तो दिमाग को भी इसका लाभ मिलता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करके अपनी अच्छी उम्र में अच्छी याददाश्त को पा सकते हैं, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसके परिणाम उस समय कई बार नहीं नजर आते, लेकिन कालांतर में 10 साल 20 साल बाद हम वो देखते हैं। तो अगर हमें 60-65 में कुछ बीमारियां पता चलती हैं कि डिमेंशिया हो रहा है, तो उसकी जेनेसिस है, उसकी शुरुआत 40-45-50 साल में हो जाती है। तो ये थोड़ा सा लंबा हिसाब है, तो शुरुआत से अपना ख्याल रखेंगे तो अच्छी उम्र में अच्छी ब्रेन हेल्थ पाएंगे।
0: तो अब हम डॉक्टर राहुल से जानते हैं कि ऐसी कौन सी और बीमारियां हैं जिनका असर हमारी माइंड पे, ब्रेन पे, इस पे पड़ता है।
3: अच्छा, मैं मैडम ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला, मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो ब्रेन होता है वो अराउंड 4-5 ईयर्स तक 90% डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा सिर्फ ब्रेन का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, आई मीन डेवलपमेंट तो नहीं होता है आपका। तो जो भी आपका खान पान है, जो भी मैडम ने बोला पौष्टिक चीज आपको खानी है, ये सारी जैसे हमारे बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वह एक बहुत ही आइडियल, मतलब वह एक सही टाइम होता है जब बच्चे के खाने पीने के बारे में आप ध्यान रखें, उसको पौष्टिक खाना दें, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, हमारे अखरोट जिसको बोलते हैं अपन, अखरोट भी आपको देखेंगे आप दिमाग के शेप का ही होता है अगर आप उसको खोल के देखेंगे, एंड इट इज वेरी गुड, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है अखरोट। अखरोट हो गया, जीरा हो गया, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को, हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो खाना पीना आप बचपन से बच्चों को अच्छा रखेंगे तो आगे उसकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी।
0: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
4: हेलो,
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ, दिल्ली से।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
4: डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार जी,
4: मेरा पूछना है, मेरे दो सवाल हैं। पहला मेरा सवाल ये है कि ये साइकोसिस क्या है, और इसके लक्षण सिम्टम्स इसके बारे में बताएं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के ब्रेन ट्यूमर हो और नॉन कैंसर ट्यूमर हो तो क्या उसकी भी सर्जरी करनी पड़ती है?
2: धन्यवाद कासिम साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। आपके पहले सवाल का जवाब मैं दूंगी और डॉक्टर वाशन सर आपके दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आपने पहला सवाल पूछा था साइकोसिस के विषय में। साइकोसिस दिमाग की एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसमें कई लक्षण होते हैं, जैसे भ्रम होना, किसी व्यक्ति को लगता है कि शायद उसके कोई खिलाफ है या उसका कोई बुरा चाहता है या ब्रेन के विकार हो रहे हैं या वो समझता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो दूसरे लोगों के साथ अनुभव नहीं होते, या उसको कुछ कानों में आवाजें आ सकती हैं जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार अपना ख्याल नहीं रख पाता, वो खाने पीने का, नहाने धोने का ख्याल नहीं रख पाता, काम नहीं कर पाता। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती और ये एक सीवियर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जानकारी कम है तो लोग समझते हैं ये ऊपरी पर आया है, किसी ने कुछ कर दिया है, और डॉक्टर के पास समय रहते नहीं पहुंचते। समय के साथ पहुंचे तो बहुत अच्छा इलाज संभव है और इसके लिए एक

0: मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई मनोचिकित्सक नहीं है तो किसी भी डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर आपको सही राय देंगे, इलाज संभव है। दिल्ली के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क कंसल्टेशन है, परामर्श निशुल्क है, ज्यादातर दवाइयां भी निशुल्क मिलती हैं। तो समय रहते इलाज कराएं तो पूरी तरीके से मरीज ठीक हो सकता है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अगर पुराना केस भी हो गया है इलाज कराएं, नई दवाइयां हैं, नई टेक्नोलॉजी है तो सुधार संभव है।
1: देखिए, जहाँ तक आपने ब्रेन ट्यूमर की बात करी है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आज आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ अमूमन लोगों में धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया अब तो मैं बच नहीं सकता, ये पूर्णतः मैं गलत बोलूंगा इसको। आज की डेट में जो ट्यूमर्स होते हैं उनका ऑपरेशन संभव होता है और टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट आ गया है कि जैसे अभी हम लोग बोला कि ब्रेन हेल्थ, मतलब आपके डेट जब हम ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं या जिस भी पद्धति से ट्यूमर का इलाज करेंगे वो सिर्फ आपका ट्यूमर को ही असर करेगी और आपका आजू बाजू के ब्रेन में कुछ असर नहीं आता है। तो आप ऑपरेशन के बाद ट्यूमर जब आपका ठीक हो जाएगा आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि आप पहले जिया करते थे। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कुछ भी ब्रेन में ट्यूमर होता है तो प्लीज इसको भगवान का देन समझ के अपने ग्रहण ना करें, आप इसका इलाज कराएं, आप अपने नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि ट्यूमर की बात करी तो क्या इसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं?
1: जी, ट्यूमर्स के मैं मतलब पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है ट्यूमर का वो होता है हेडेक। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कृपया ये ना समझे कि हर हेडेक में ट्यूमर होता है। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर्स का डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर्स कौन सी लोकेशन पे है, किस हिस्से में है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो हिस्सा दिमाग का आपके हाथ को कंट्रोल करता है, पैर को कंट्रोल करता है, वहां पे अगर कुछ ट्यूमर होगा तो छोटा सा भी होगा तो आपको उसका असर पता चलेगा, उसमें तो आपको कमजोरी आएगी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बट कुछ हिस्से ऐसे होते हैं ब्रेन में कि जब तक ट्यूमर का साइज बड़ा नहीं हो जाता उसका असर आपको नहीं दिखता है, तो फिर आप जब बहुत ही लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आपको अगर बराबर से सर दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ हाथ पैरों में कहीं कुछ कमजोरी आ रही है, कुछ भी सिम्टम आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सही समय पर अगर आप कंसल्ट करेंगे, आपका अगर ट्यूमर निकल के आता है तो उसका इलाज संभव है।
0: इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो कोई डॉक्टर ये नहीं कह देगा भाई ब्रेन ट्यूमर ही है, लेकिन अगर आप परामर्श नहीं करेंगे और देरी कर देंगे तो अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो वो फैल जाएगा। यही बात साइकोसिस पे भी लागू है। अगर आपको शंका भी है तो डॉक्टर से मिलिए, संपर्क कीजिए, परामर्श लीजिए। जो परामर्श आपको मिलता है उस पे अमल भी करना है। अगर नहीं करेंगे ये वाली बात तो हमारी बात सिर्फ ये आपके जीवन में फर्क नहीं लाएगी, बदलाव नहीं लाएगी। आपने सुन तो ली, लेकिन बदलाव तो तभी आएगा जब आप अमल करें।
2: जी नहीं तो वो बात ही रह जाएगी,
0: वो बात ही रह जाएगी।
2: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन पहले दोपहर के बाद से लेफ्ट या राइट साइड की तरफ चक्कर आ रहे हैं, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसका इलाज बताएं। सतीश कुमार, उम्र 65 साल, रोहिणी दिल्ली से।
1: देखिए, चक्कर आने के अगर ऐसे तो बताना मुश्किल होगा कि चक्कर आने के आपके शरीर में बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आपका बीपी ज्यादा हो, बीपी कम हो, या फिर एक बोलते हैं बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो, आपके कान में छोटे छोटे पत्थर होते हैं कई बार वो हिल जाते हैं जिसके कारण चक्कर आते हैं। तो इलाज तो हर चक्कर का क्या कारण है पहले तो वो खोजना होगा, इलाज उसके हिसाब से होगा। मेरे आपको यही एक एडवाइस है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको सही तरीके से जांच करके आपको उसके बारे में ट्रीटमेंट बताएगा।
2: बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, हेल्दी ब्रेन कैसे रखें, उस पर हम और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम है, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं ग्राम नंगोल हापुड़ यूपी से बात कर रहा हूँ।
1: नमस्कार जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा सवाल ये है कि जब कोई इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है, और इसका उपाय भी हो तो आपके पास उपाय बताएं।
3: त्यागी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इससे मिलता जुलता सवाल पहले भी पूछा है। डिमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है जिसके कारण याददाश्त में असर पड़ता है, याददाश्त कम हो जाती है। इसके विभिन्न कारण हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें न्यूरॉन बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ कारण हैं कि बीपी, शुगर, इन बीमारियों के कारण भी दिमाग में खून का दौरा ठीक नहीं जाता। कुछ कारण हैं कि हम जो खान पान हमारा सही नहीं होता कभी, तो वाइटामिन डिफिशेंसीज हो जाती हैं, सिर में चोट लग जाए तो पोस्ट टीबीआई डिमेंशिया हो जाते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कारण हैं और कारण के अनुसार ही इलाज होता है। किसी भी साइकियाट्रिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें अगर इस तरह की परेशानी हो, पूरा आकलन कराएं और उसके बाद ही इलाज संभव है।
1: जैसे कि अभी मैम ने कहा सिर पे चोट लग जाती है, तो डॉक्टर राहुल आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, अगर इमीडिएटली गिर जाए या सिर पे चोट लग जाए तो इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करें?
4: देखिए, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आपको सर में चोट लगने के बाद, जैसे मान लीजिए बहुत हल्का फुल्का हेडेक, नहीं सीवियर हेडेक हो रहा है आपको, आपको वॉमिटिंग आ रही है बार बार, या आपको लग रहा है कि आपको कभी मिर्गी के झटके आ जाते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि मेरे हाथ पैरों में किसी साइड में थोड़ा कमजोरी आ रही है, मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, सारे नहीं। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको हेड इंजरी होती है

0: कुछ इंजरी जिसको हम बोलते हैं कनकशन इंजरीज होती है, उसमें थोड़ी देर के लिए आपकी याददाश्त भी चली जाती है, तो एक बार आप डॉक्टर से इवेल्युएट जरूर कराएं। एंड यस ऑफ कोर्स एक चीज में भूल गया कि अगर कान से नाक से कहीं से भी खून आता है तो भी एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बट आप किसी भी सर की चोट को, कि मैं छोटी सी हाइट से गिरा था या मुझे हल्की सी चोट लगी है, उसको आप नजरअंदाज ना करें, कभी भी वो सीरियस हो सकती है आपको। और डिमेंशिया पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं कि देखिए, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो जिंदगी भर चलेगी। आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे चलते चलते चलते चलते उसमें भी विकार आने लगते हैं। यही चीज हमारे दिमाग के साथ भी होता है, आपके न्यूरॉन, जब आपकी उम्र बढ़ती है आपके न्यूरोनल लॉस होता है, जिसको हम सीनाइल डिमेंशियाज बोलते हैं। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई भी चीज यहाँ पे अपने संजीवनी बूटी खा के नहीं आई है जो हमेशा चलेगी आपके पास।
1: डॉक्टर मीना, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई स्ट्रेस में है, बहुत तनाव रहता है। बच्चों को पढ़ाई का रहता है, जो जॉब करे उनको काम का रहता है, तो कैसे वो अपने आप माइंड रिलैक्स करे और इजिली अपना वर्कआउट कर ले, हेल्दी ब्रेन कैसे रखे?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें मानना है कि हमें स्ट्रेस है ना, और फिर समझना है कि हमें स्ट्रेस क्यों है। अगर हम आकलन करें, ज्यादातर जो शहर की बिजी जिंदगी है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस है। ऐसे कोई मतलब पहाड़ गिरने का स्ट्रेस तो बहुत कम होता है ना। छोटी छोटी बातों से हम कोप अप नहीं कर पाते और उसको अपने दिल में बसा के रख लेते हैं, तो इससे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता, एक स्टेज तक हमारी परफॉर्मेंस सुधरती है। अगर एग्जाम का स्ट्रेस है तो हम पढ़ाई ज्यादा करते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो स्ट्रेस को पहचानना ये प्रथम स्टेप है। उसके बाद क्या होता है कि हम समझे स्ट्रेस क्यों है और हम स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको हम डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, कुछ हॉबीज रखें, थोड़ी स्पिरिचुअल साइड भी डेवलप करके रखें। जैसे हम कहते हैं डिप्रेशन लेट्स टॉक, एक नारा दिया था WHO ने, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस लेट्स टॉक। कुछ भी आपको परेशानी है, किसी से बात करके मन हल्का कर लीजिए, तो मन हल्का हो जाता है। और बहुत जरूरी है कि आज स्ट्रेस है तो जरूरी नहीं कल भी रहेगा, एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो पॉजिटिव माइंड से शुरुआत करें। अपने को हिम्मत रखें, अगर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो भी निकल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, है ना। ये परिस्थिति समय के साथ सुधर भी जाएगी अगर हम अच्छे चुनाव करें, हम अपने आप को डिस्ट्रेस करने का प्रयास करें। और अगर स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं तो जरूर मदद लें, किसी भी मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं अगर लगता है कि हम स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के साथ साथ और शारीरिक विकार भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर राहुल सर ने पहले कहा, BP बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर डायबिटीज है तो उसका जो कंट्रोल है वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेस में कर रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। तो स्ट्रेस अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मदद लीजिए, मदद संभव है। जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली के तो सभी सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा के विभाग हैं, तो ज्यादा बढ़ा के मदद लेने का क्या लाभ है ना, पहले ही मदद लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं, पॉडकास्ट हैं, नेट पे भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, इतनी विधाएं हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास जानकारी या तो नहीं होती या होती है लेकिन हम अमल नहीं करते, अमल करते हैं तो हम रोज अमल नहीं करते। तो ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, स्ट्रेस को हमें मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना सीखना ही पड़ेगा और तभी हम कामयाब होंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, सर नमस्कार, व्हाट्स एन इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड हाउ इट इज मेजर्ड एंड इंक्रीज्ड।
2: देखिए, जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, ऐसे तो नापी नहीं जा सकती, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होती है, उनके लिए हम अलग विषयों का चुनाव करते हैं, उनके लिए हम अलग करियर गोल्स बनाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चे की उम्र के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, उन टेस्ट पे अगर स्कोर कम आता है तो हम उनकी इंटेलिजेंस को कम बताते हैं, स्कोर काफी कम है तो उन्हें डिसेबिलिटी कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र मिलता है, भारत सरकार की तरफ से UDID वेबसाइट पे अप्लाई करके वो मिल जाता है। इंटेलिजेंस ऐसे बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन इंटेलिजेंस जितनी है उसको हम अच्छी तरह अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 100-110 की इंटेलिजेंस है और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और 90 की इंटेलिजेंस है और अच्छा

0: ब्रेक होगा नहीं, बट यस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसके जैसे मैडम ने बताया कि काफी ज्यादा रहते हैं। एंड अगर मैं आपको जाऊंगा कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो ब्रेन हेमरेज के रिस्क काफी हाई रहता है। इनफैक्ट हाई ब्लड प्रेशर इज अ वेरी कॉमन कॉज फॉर अ ब्रेन हेमरेज एंड स्पेशली इन ओल्डर पर्सन।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं माई सेल्फ सौरभ सिंह चौहान लखनऊ यूपी से। माई क्वेश्चन इज, क्या बार बार या कभी कभी हेडेक होना भी कोई बीमारी है ब्रेन की? प्लीज रिप्लाई।
0: देखिए हेडेक अमूमन आज की डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको नहीं होता होगा। और हेडेक, हर हेडेक, मैं फिर बोलना चाहूंगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ये अपने दिमाग में बिठाइए। हेडेक्स आर वेरी कॉमन, बहुत अलग अलग तरह के हेडेक्स होते हैं। माइग्रेन्स आर वेरी कॉमन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, बहुत तरीके के हेडेक होते हैं। तो आपको अगर बार बार हेडेक होता है, कई बार चश्मा, हमारी आंखें कमजोर होती हैं, हम चश्मा नहीं लगाते हैं, वो हेडेक के कारण होता है। ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो हेडेक के कारण होता है। तो आप हेडेक अगर बार बार होता है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, अपना जांच करवाइए और वो आपको सही इलाज देगा और वो ठीक हो जाएगा।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, खाना खाते समय भूख से ज्यादा खा जाते हैं, बार बार दिमाग को समझाने पर भी नियंत्रण नहीं हो पाता, कृपया इस बारे में जानकारी दें। अनिल कालरा, गुरुग्राम।
2: देखिए जैसे स्लीप सेंटर दिमाग में है, ऐसे एपेटाइट सेंटर भी दिमाग में है ना। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसके अनुसार भी हम लोग अपनी डाइट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतनी डाइट लेनी है या इससे ज्यादा लेनी है, इससे कम लेनी है। कई बार फूड फैट्स भी होते हैं कि कुछ चलता है कि इतना ही खाना खाना चाहिए, तो चाहे व्यक्ति का 5'2" का हो या 6' का हो, तो सब सोचते हैं हमें उतना ही खाना चाहिए। तो डाइट तो आपके शरीर की संरचना के अनुसार है। अगर लगता है कि एपेटाइट से ज़्यादा खा रहे हैं या उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा, एक मनोचिकित्सक से संपर्क करें। मनोचिकित्सक नहीं है तो एक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कोई और वजह हो, जैसे डायबिटीज़ है, शुरुआत में पॉलीडिप्सिया या पॉलीफेजिया होते हैं, पानी भी ज़्यादा पी रहे होते हैं और खाना भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, और पता भी होता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ दिमाग से ही रिलेटेड है, कई शरीर की बीमारियों में भी एपेटाइट में बदलाव नज़र आते हैं। अगर समझ रहे हैं बदलाव है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
1: एक और मैसेज हमारे पास, लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, मैम नमस्ते, मेरी वाइफ की एज 66 है, उसको ऐसा लगता है गंदा गंदा, वो बार बार हाथ धोती है, कोई सही इलाज बताएं, राजरानी रोहिणी दिल्ली।
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीज तो हमने नहीं देखा लेकिन ऐसा लगता है कि आपके मरीज को शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी हो, क्योंकि उसमें ये लक्षण ज्यादातर होते हैं। कुछ और बीमारियों में भी होते हैं लेकिन ओसीडी का ज्यादा चांस लग रहा है। तो आप किसी मनोचिकित्सक से मिलें, रोहिणी में रहते हैं तो रोहिणी में सरकारी अस्पताल में भी मनोचिकित्सक के विभाग हैं, और किसी से भी मिलके जो डॉक्टर इलाज बताएं उस पर अमल जरूर करना है। कई बार मानसिक रोगों में इलाज लंबा होता है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, 1 हफ्ता खानी है, 5 दिन खानी है, तो महीनों में इलाज होता है। तो आप सब्र रखें, जितने दिन डॉक्टर साहब इलाज दें वो इलाज लेना है। इलाज के 2 चरण हैं, एक्यूट फेज जब तक बीमारी ठीक नहीं होती, और मेंटेनेंस फेज जिसमें हम प्रयास करते हैं कि बीमारी वापस पलट के ना आए। तो थोड़ा सब्र रख के रेगुलर इलाज कराएंगे तो इलाज संभव है।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, एज इज 46 ईयर्स, ममता फ्रॉम दिल्ली। सिंस चाइल्डहुड आई हैव हैड अ हैबिट ऑफ पीलिंग द टॉप लेयर ऑफ स्किन अराउंड माय फिंगर्स, इज दिस नॉर्मल? आई हैव नोटिस्ड दैट आई समटाइम्स डू इट व्हाइल आई एम ओवरथिंकिंग, कुड देयर बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू?
2: हाँ, ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, आप भी मनोचिकित्सक से मिलें और इसका इलाज कराएं। इसका इलाज भी संभव है ना, लेकिन कई बार पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है या आदत है, ये आदत है या टेंशन में हम अपने आप ऐसे ही कर लेते हैं या नॉर्मल है।
1: नेल बाइटिंग भी,
2: नेल बाइटिंग होती है, कई बार लोग अपने बाल भी खींच खींच के निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये सब बीमारी में ही आता है। विभिन्न तरीके की मानसिक रोग हैं, तो मनोचिकित्सक से मिलें और इलाज कराएं।
1: तो लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे लगे, मतलब जब ये हैबिट्स कर रहे हैं या लगे हम सोच रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कई बार लोगों को खुद ही नहीं पता चलता,
2: बीमारी ही है, डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बताया कि ये भ्रांति है, मिथ है, लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है या हम टेंशन में कर रहे हैं, एक्चुअली बीमारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बीमारी ही होती है।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये है इंदर सिंह फ्रॉम रोहिणी, सर व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हेडेक, प्लीज एक्सप्लेन।
0: हेडेक के देखिए, जैसे मैंने बोला हेडेक के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे आपका माइग्रेन होता है, टेंशन होती है आपको, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में आपको हेडेक होता है, ब्रेन ट्यूमर्स में हेडेक होता है। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने चाहूंगा तो शायद ये प्रोग्राम पूरा यहीं समाप्त।

0: जाएगा। तो कॉजेज बताना तो बहुत अलग अलग है कि, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर हेडेक होता है, बार बार होता है, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए आप।
1: जैसे कि आजकल के टाइम में डिजिटल स्क्रीन, सोशल मीडिया और लगातार बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, बड़े भी लगे रहते हैं, तो उसका हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है?
2: हाँ, उसका हमारे ब्रेन पे बहुत खराब असर पड़ता है। और कई विदेशों में तो उन्होंने स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और सोशल मीडिया बच्चों के लिए तो प्रतिबंधित भी कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का और स्क्रीन का बुरा असर पड़ रहा है ना। भारत में अभी तक ऐसे कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन स्कूलों में, कॉलेजेस में डॉक्टर भी सभी यही राय देते हैं कि आप इसका जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें, है ना, इसका दुरुपयोग ना करें। ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखें खराब होती हैं तो सभी समझ सकते हैं, लेकिन ब्रेन पे भी असर पड़ता है, याददाश्त पे असर पड़ता है, अटेंशन स्पैन पे असर पड़ता है, मेमोरी पे असर पड़ता है ना, कोपिंग स्किल्स कम है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी विदेशों में हर पीढ़ी के साथ जो IQ है, हमने बात की थी ना इंटेलिजेंस टेस्ट,
1: जी
2: बुद्धिमत्ता के एक आकलन की, हर पीढ़ी के साथ IQ बढ़ी है। ये पहली बार है कि इस बार IQ के कुछ प्रतिशत घटी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये खुद एनालिसिस नहीं कर रहे, खुद सोच नहीं रहे, पकी पकाई खिचड़ी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो वो भी एक मतलब एक नेगेटिव दुष्प्रभाव है कि आप सोचने समझने की शक्ति भी कम किए जा रहे हैं। तो उसका असर ये नहीं कि अभी हो रहा है, उसका असर आगे तक होगा। तो ठीक है, एक नई चीज आई, लेकिन वही सेब और चाकू वाली बात है कि चाहे हाथ काट लें चाहे सेब काट लें, इसी तरह सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम है, उसके बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए करते हैं, चाहे अपने मित्रों से संपर्क में रहने के लिए करते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव भी हैं। तो अगर ज्यादा यूज है और नहीं छोड़ पा रहे, मनोचिकित्सक से संपर्क करें, हम उसमें भी मदद करते हैं।
1: तो ऐसे में बच्चों में जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, जैसे आपने कहा IQ लेवल वगैरह कम हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों की मेमोरी इंक्रीज करने के लिए उनको किस तरह की एक्टिविटीज करानी चाहिए?
2: पहले हमें मोबाइल का जो ज्यादा इस्तेमाल है वो छुड़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं IQ बड़े पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, एक व्यक्ति पे नहीं है, ये एक पीढ़ी पे बात कही थी कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बच्चे में जो विकार है उस विकार के अनुसार फिर हम गाइड करते हैं। और अभी हमने हमारे अस्पताल में ही देखा कि इंटरनेट और AI के प्रयोग से एक 13-14 साल का लड़का, उसको साइकोसिस तक हो गया, जो बहुत गंभीर बीमारी है। तो इतना सुरक्षित नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणाम हैं। तो लिमिट में अपनी सुपरविजन में बच्चों को देना चाहिए, और जो बड़े हैं उनको भी लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो सुखी रहेंगे।
1: डॉक्टर राहुल, जैसे कि आप न्यूरो सर्जन हैं, तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं कि जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है?
0: ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है आपका, बट यस, आपके सर में चोट होती है, आपको स्ट्रोक होता है, आपको ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, बहुत तरह के विकार होते हैं आपके उसमें, जिसमें ऐसा नहीं है कि हर एक में सर्जरी जरूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, बट उसके लिए फिर मैं कहूँगा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वही आपको बताएगा कि सर्जरी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। खुद से, जैसे मैडम ने बताया सोशल मीडिया, तो एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हैं कृपया उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर 70% इन्फॉर्मेशन ठीक है तो 30% गलत भी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपके शरीर में उसके दुष्प्रभाव आए, तो प्लीज पहले वेरीफाई करिए तभी फॉलो करिए।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, मैं ललित भाटिया, 67 ईयर्स, अहमदाबाद से। मैंने 2 बार कॉमा फेस किया है और पापा को भी ट्यूमर था। कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज है, ना BP है।
2: तो ललित जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप 2 बार कोमा से बाहर आए हैं। कोमा किस वजह से हुआ ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन आप कोमा से बाहर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पिताजी को ट्यूमर था, तो इस जानकारी को समझते हुए आप अपना एनुअल चेकअप जरूर कराइए। अगर आपको ब्रेन से संबंधित या कोई और भी विकार लगता है तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लीजिए। और जो हमने लाइफस्टाइल फैक्टर्स बताए हैं, एक्टिविटी का, कि अपना एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान करें, सही पौष्टिक बैलेंस डाइट खाएं, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर फिर भी कुछ आपको शंका होती है तो डॉक्टरी परामर्श से

0: बचे ना, है ना। कई बार हम सोचते हैं हम डॉक्टर परामर्श करेंगे ना, डॉक्टर कुछ बता देंगे, लेकिन कुछ होता है तभी बताते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, वो तो सबसे सुखद संदेश है ना कि कुछ नहीं है। तो शंका को अपने मन में ना रखें। एनुअल चेकअप तो हर एक ने कराना चाहिए, नहीं कराते हैं तो लक्षण के अनुसार तो जरूर कराएं।
1: यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा आपको कि जैसे मैडम ने बोला, आप इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा कि मेरे फादर को ट्यूमर था तो मुझे भी होगा। ऐसे अमूमन ट्यूमर्स बहुत ही कम होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे फादर को ट्यूमर था। प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा, इससे और दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बीपी वगैरह बढ़ सकता है आपका। तो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचना है कि फादर को ट्यूमर है तो मुझे भी हो सकता है।
0: और इस बात का भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे दो दो बार कोमा हुआ, बल्कि इस बात का आपको खुशी होनी चाहिए कि आप कोमा से दो बार बाहर आए। तो कई बार हमारा जो दृष्टिकोण है वही हमें स्ट्रेस देता है कि हमें ये हो गया, लेकिन हम उससे ठीक भी तो हुए ना। तो हम अगर पॉजिटिव देखेंगे तो सोच पॉजिटिव रहेगी तो स्ट्रेस कम रहेगा।
2: यानी नेगेटिव साइड को साइड में रख के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें।
0: हाँ, गिलास आधा भरा है ये सोचें, गिलास आधा खाली है वो ना सोचें।
2: जी, एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम शाहीन है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरा भांजा है, उसकी उम्र 15 साल है, वो स्कूल जाता है पर उसे कुछ याद नहीं रहता है, ना कुछ काम और ना ही वो स्कूल का कुछ याद कर पाता है, तो इसका कोई इलाज है या ये कोई बीमारी है, प्लीज बताएं।
0: इनको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, और शायद अगर मनोचिकित्सक जरूरी समझेंगे तो बच्चे की इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कराएंगे, तो इनको जरूर मिलना चाहिए।
2: तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्दी ब्रेन के लिए, तो हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी हैबिट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं?
1: हेल्दी हैबिट्स तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आपका ब्रेन 4 से 5 साल में डेवलप हो जाता है जब तक आप होते हैं, तो वह एक आपका आइडियल टाइम होता है जिसमें आपको बच्चे के खान पान इन सब पे ध्यान देना होता है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड्स पे आ जाते हैं, हम विटामिंस न्यूट्रिएंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे भी आजकल की डेट में जैसे बड़े होते हैं उसको फास्ट फूड्स को लेते हैं, तो वही एक पीक टाइम है जिसमें आपको बच्चे के डाइट पे ध्यान देना है। और जैसे फिर मैं दूसरी चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हेल्दी ब्रेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे मैंने पहले कहा था, तो कृपया जब भी आप गाड़ी चलाएं हेलमेट जरूर पहने आप, क्योंकि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और भगवान ने ना चाहा और आपका एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो हेल्दी ब्रेन तो नहीं रहेगा आपका।
0: इसमें मैं एक बात जोड़ूं कि अमूमन जो बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, वो शायद पहन लेते हैं हेलमेट, लेकिन जो पिलियन पे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, और ज्यादातर महिलाएं वो नहीं पहनती। और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह शायद लॉ ना हो लेकिन ब्रेन तो आपका अपना है, है ना। तो आप कानून का इंतजार ना करें, अपने ब्रेन की सुरक्षा रखें। एक और बात मैं यहाँ जोड़ती हूँ कि नशा किसी भी तरीके का दिमाग को हिट करता है, तो नशे से हम जितना दूर रहेंगे उतना सही है। और नशे का जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा असर है। हम देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, और लड़कों में नहीं लड़कियों में भी नशे के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये कोई स्मार्टनेस का द्योतक नहीं है कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं तो हम नशा करते हैं। क्या कहूँ, एडवर्टाइजिंग है कि लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं। ये नशीले पदार्थ ब्रेन को अंदर से खोखला कर देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें।
2: और योग और मेडिटेशन, वो हेल्दी ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है?
0: देखिए, इतने दशकों से नहीं, इतनी सेंचुरी से, हजारों साल से योग हमारी धरती पर, हमें सौभाग्य हमें मिला है, लेकिन हम लोग उस पर अमल कम करते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज करें, तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि कुछ आप अवधि बांध लें और फिर कंसिस्टेंटली रोज करें। एक दिन 1 घंटा कर लिया और उसके बाद 6 महीने नहीं किया, उसका कोई लाभ नहीं। जो मेडिटेशन है ये उतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन चंचल होता है ना, तो मन भटकता है। तो मेडिटेशन किसी से सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा मन स्थिर रखना और बिना किसी लक्ष्य के स्थिर रखना, सिर्फ बैठे बैठे स्थिर रखना, इसके लिए अभ्यास लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा जा सकता, सभी सीख सकते हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए समय निकालें और प्रयास करें तो सब संभव है।
2: और किस तरह की डाइट या लाइफस्टाइल हेल्दी ब्रेन के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए?
1: देखिए, डाइट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो भारतीय

0: खान पान है वो बहुत ही ज्यादा, अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो अपने आप में संपूर्ण है, जो आपको हर चीज देता है, आपको ब्रेन के जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जो आपको ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, वो सब कुछ आपके डाइट में होते हैं। बट जैसे कि हमने देखा है आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड फास्ट फूड पे जा रहे हैं, तो वो फिर आपको ब्रेन के डेवलपमेंट में सही नहीं रहता है आपको। तो अखरोट मैंने पहले भी बताया आपको, दिमाग की शेप का होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जियां जो होती हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं, तो उसको फॉलो करिए आप। अच्छा, भारतीय खान पान पर ध्यान दीजिए।
1: तो जैसे कि जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनका ब्रेन हेल्दी रहे।
2: देखिए, कहते हैं कि ब्रेन कैपिटल इज ह्यूमन कैपिटल। जो मस्तिष्क की पूंजी है वही जीवन की, इंसान की पूंजी है। तो मस्तिष्क का ख्याल रखें, आगे बढ़ें।
1: और डॉक्टर राहुल, आप क्या कहेंगे?
0: मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आप अपने ब्रेन जो है आपके शरीर रूपी गाड़ी का एक इंजन है, जैसे आप अपने इंजन में बराबर से आप ऑयल डलवाते हैं, उसको आप ठीक रखने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी गाड़ी प्रॉपरली चले, ऐसे ही आप अपने ब्रेन पे भी ध्यान दीजिए, उसका डेवलपमेंट, उसमें कोई आघात ना लगे, उसमें कुछ विकार डेवलप ना हो, तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे एंड लास्टली स्ट्रेस भी कम होगा आपको।
1: तो दोस्तों, आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि स्वस्थ मस्तिष्क केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की ताकत है। समय पर पहचान, सही जानकारी, स्वस्थ जीवन शैली और सभी तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, यही है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल का वास्तविक उद्देश्य। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर मीना चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, और साथ में है डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर

0: रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

पेशे अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच

में एक पारी और 51 रन से हराया। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाटर ने रजत पदक, तन्वी गुंदेश मखदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। तो ये तो थे अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: वाणी आकाशवाणी
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम। अभी कुछ देर में शुरू होगा हमारा एक प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, और 4:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस कार्यक्रम में आप अगर भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट करें। हमारा फ़ोन नंबर है 011। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 011 एसटीडी कोड लगाना होगा, और उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर है 2342104। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 011 जो कि एसटीडी कोड है, और उसके बाद आपको डायल करना है 2342104। तो आप डायल कर रेनबो जीनियस में भाग ले सकते हैं, और देखते हैं कि आज कौन रेनबो जीनियस बनता है। तो 4:20 पर प्रोग्राम रेनबो जीनियस में आपके साथ रहूंगा, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: ये आकाशवाणी एफएम रेनबो है 102.6 पर। कुछ देर में आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम ये लम्हे।

हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। आज हम बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। जाने कितनी जरूरी है बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर गेम से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने, लगातार स्मार्टफोन या कंप्यूटर के इस्तेमाल से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और उनका पढ़ाई में भी ठीक से मन नहीं लगता क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी और बाहर खेलने कूदने के लिए प्रेरित करना बेहद ज़रूरी है। आउटडोर गेम से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने के जगह मोबाइल में अपना ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, लेकिन ऐसा करना बच्चों के मानसिक विकास पर असर डाल सकता है। बच्चे आउटडोर गेम खेलने से उनकी पर्सनालिटी भी बेहतर बनती है। तो आज लम्हे प्रोग्राम में हम आपको बता

आते हैं कि बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज कितनी जरूरी है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और टेंशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आउटडोर गेम्स खेलने से इस प्रकार की बीमारियों की संभावना कम होती है। जब बच्चे खुले मैदान में जाकर दौड़ भाग करते हैं तो बच्चों में मोटापा भी नहीं आता। आउटडोर गेम्स जैसे खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं मेरे दोस्तों। ये गेम्स बच्चों के सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनकी मदद से वो टीम भावनाओं को भी समझ पाते हैं और उनमें टीम स्पिरिट भी बढ़ता है और शारीरिक विकास भी होता है।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। टीम स्पिरिट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो स्पोर्टिव स्पिरिट भी है दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स में हार जीत होती है और दे विल अप्लाई टू देयर लाइव्स। उनके जिंदगी के हार जीत, सक्सेस फेलियर को बहुत अच्छे से निभाते हैं और समझ भी पाते हैं। आउटडोर गेम्स के माध्यम से बच्चे हेल्थी, फिट और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, जिससे वह अपने काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते। साथ ही आउटडोर गेम से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, वो घर के अंदर रहने वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से लोगों से बातचीत करते हैं और जल्दी ही लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। बाहर खेलने वाले बच्चे नए नए दोस्त बनाते हैं, जिससे उनका सोशल और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। ये आगे चलकर बच्चों की काफी मदद करता है। आजकल के बच्चे अपना ज्यादा समय घर में मोबाइल फोन या अन्य गैजेट्स के साथ बिताना पसंद करते हैं, लेकिन टीवी पर कार्टून देखना या कई घंटे तक मोबाइल फोन का उपयोग करने से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। एक जगह लगातार बैठे रहने से बच्चों में मोटापा, पाचन तंत्र की समस्या और शरीर में दर्द की परेशानी भी हो सकती है। दूसरी ओर, स्कूल और पढ़ाई के बीच बच्चे अगर आउटडोर गेम खेले तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ टीम वर्क और कई तरह के स्किल भी सीखते हैं। आउटडोर गेम्स बच्चों के स्वास्थ्य दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे बच्चे अच्छे अनुभव करते हैं और उन्हें भूख भी समय से लगती है। आइए आउटडोर गेम्स के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में जानते हैं, ताकि पेरेंट्स बच्चों को इसके लिए उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। नई चीज सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। आउटडोर गेम्स खेलने से बच्चों में सीखने की क्षमता की विकास होता है। इससे वह गिरकर खुद उठना और गलती होने पर माफ कर देना जैसे जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। बाहर खेलने से उनकी स्किल में सुधार होता है, उनमें किसी भी परेशानी या दिक्कत को हल करने की समझ आती है। साथ ही उन्हें एक दूसरे बच्चे से नई नई जानकारियां और दिलचस्प बातें सुनने को मिलती है। अनुभव के आधार पर और चीजों को देखकर सुनकर बच्चे अधिक सीखते हैं, इसीलिए बच्चों को बाहर खेलना जरूरी है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि खेलने से बच्चों का बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आउटडोर एक्टिविटीज गेम्स खेलने से उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा सही समय पर खाने और सोने से उनमें डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और मोटापे का खतरा भी कम हो सकता है। ताजी धूप और हवा से उनके शरीर में शुद्ध हवा फेफड़ों तक पहुंचती है, इसीलिए बच्चों को गैजेट से दूर, नेचर के करीब ले जाइए। घर पर बैठे बैठे मोबाइल गेम्स खेलने से बच्चों की किस तरह की क्रिएटिविटी का विकास नहीं होता है, लेकिन बाहर जाकर खेलने से बच्चे कई चीजें खुद से बनाना सीखते हैं, जिससे उनके इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ती है।

आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे मिट्टी के बीच कभी घरोंदा बनाते हैं तो कभी मूर्तियां। ऐसे में यह उनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। किड्स बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं तो एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं, अपने दूसरे दोस्त की बातें सुनते भी हैं। वे घर के लोगों की तुलना में अपने दोस्तों से अधिक बातें करते हैं। ऐसे में उन्हें दूसरों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है और वो अपनी बात बेहतर ढंग से कहना सीख पाते हैं, जो शायद घर में उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। दोस्तों के साथ खेलने से उनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने लगती है। प्रकृति में ऐसे गुण है कि जो भी इसके पास जाता है ये उसे शांति और अपनापन का एहसास करवाती है। ऐसे में बाहर खेलने के दौरान बच्चे नेचर के करीब रहते हैं और इनसे कई चीजें भी सीखते हैं। ऐसे बच्चे छोटी-मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। डियर फ्रेंड्स, समझ गए होंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज कितना जरूरी है आपके बच्चों के लिए। सो इंस्पायर देम विद दिस लवली इंफॉर्मेशन। दिस इज चेतन सेइंग बाय टिल वी मीट अगेन। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन, और ये समय है अल्फा जेन का। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अल्फा जेन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता दें दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको डायल करना होगा हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 01123421084। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आपको एसटीडी कोड लगाना होगा 011, उसके बाद डायल करना होगा 2342104। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम अल्फा जेन।

0: चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चकरदुम चिकिचकचो
1: Shhh!

0: तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, न नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: हाँ जी नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनबो जीनियस में। हेलो हेलो, आप हमारी आवाज पहुंच रही है?
3: हाँ पहुंच रही है।
2: कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताएं।
3: अररिया बिहार से रूबी कुमारी बोल रही हूँ।
2: हाँ रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अररिया बिहार से। और बताएं वहाँ पे मौसम कैसा है?
3: बारिश हो रही है।
2: बारिश हो रही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चाय पकौड़े आप खा रहे हैं लग रहा है।
3: हाँ
2: चलिए, तो रेनबो जीनियस में आप खेलने के लिए तैयार?

0: है हमारे साथ?
1: जी, खेलने के लिए तैयार हूँ मैं।
0: आप पहली बार खेल रहे हैं हमारे साथ या पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है?
1: नहीं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं और कई बार रेनबो जीनियस भी बने हैं।
0: अच्छा, रेनबो के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: यही सुनते हैं सर, यही
0: अच्छा,
1: रविवार
0: खाली यही
1: सारे
0: सुनते हैं
1: बजे।
0: और कोई नहीं अच्छा लगता क्या आपको?
1: हाँ,
0: तो
1: लगता
0: इतने
1: है
0: बढ़िया
1: थोड़ा
0: बढ़िया
1: बहुत,
0: प्रोग्राम आते हैं रेनबो पर, और हमारे
1: अपना टाइम ना मिलते रहते हैं ना, इसीलिए तो थोड़ा बहुत यही सुनते हैं। और सुबह थोड़ा
0: अच्छा,
1: सा
0: तो चलिए, आपको रूल तो पता ही होगा, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, अगर आपने 5 का सही जवाब दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
1: जी। हाँ
0: जी, तो मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भारत का
1: जी,
0: राष्ट्रीय गान क्या है?
1: गण
0: चलिए, बहुत सही जवाब दिया। और अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था?
1: गण सिद्धार्थ।
0: बिल्कुल सही, 2 सवाल आपने, मैंने पूछे 2 सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। और मैं अब तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जो कठोर चीज है पृथ्वी पर वो क्या है?
1: हीरा हो सकता है, हीरा।
0: बिल्कुल सही, आपने मतलब ये तुक्का मारा या आपको पता था?
1: नहीं, पता था।
0: मुझे लग रहा है कि वैसे ही आपने गेस किया। और अच्छा, चलो, 3 सवाल बिल्कुल सही जवाब। तो अब मैं आपसे चौथा सवाल पूछ लूं। चौथा मैं आपसे पूछता हूं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? किसमें? चीन में।
1: जी।
0: क्या बात है, पूरी तैयारी करके आई हुई है लग रहे हैं।
1: हाँ
0: अच्छा, और मैं आपसे पूछता हूं कि शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी?
1: क्या बोले सर? नहीं
0: आपको कोई हेल्प कर रहा है मुझे लग रहा है।
1: नहीं नहीं नहीं बोलिए सर,
0: मैंने पूछा
1: बोलिए।
0: शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी?
1: भारत में, ईरान।
0: भारत
1: ईरान,
0: में। भारत कहाँ पे?
1: भारत, भारत।
0: भारत में। बहुत बहुत
1: जी
0: मुबारकबाद, आप रेनबो जीनियस बन गई हैं।
1: कंपटीशन
0: तो आप और क्या करती हैं इसके अलावा?
1: का तैयारी करते हैं सर। जी,
0: कंपटीशन की तैयारी करते हैं? फिर तो मुझे लगा मैंने बहुत इजी इजी आपसे सवाल
1: बिहार
0: पूछे।
1: पुलिस का मैरिट
0: हाँ जी,
1: आउट है सर। हाँ, और सब बिहार सब पुलिस में रिजल्ट हुआ था, मेरिट आउट हो गए
0: ओके
1: मेरा।
0: ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहें और तरक्की करते रहें। तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, और थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रेनबो जीनियस बनने के लिए।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: थैंक यू।

दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं 011-234-21084। जी हाँ, ये हमारा नंबर है और हो सकता है कि अगले रेनबो जीनियस आप हो।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। और रेनबो में प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन, और अल्फा जैन के अंतर्गत आज जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है वो है रेनबो जीनियस। रेनबो जीनियस में हम देखते हैं कि अगले जीनियस कौन बन सकता है और कौन है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, तो चलिए उनके साथ कनेक्ट करते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: जी, मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप आकाश जी?
2: जी, मैं टीचिंग करता हूँ और साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी।
1: कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पहले भी हमारे साथ इस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया?
2: पहले भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ मैं।
1: ओके, तो स्टार्ट करें। आपको पता होगा मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर आपने 5ों का सही जवाब दे दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
2: जी सर। जी,
1: तो मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
2: जी, मार्स को या मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
2: जी, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है।
1: बिल्कुल सही, 2 बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। और तीसरा जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ वो है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है?
2: आम को कहा जाता है सर।
1: बिल्कुल सही, 3 सवाल बिल्कुल सही जवाब। और अगला मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
2: भारत की राष्ट्रीय नदी,
1: हाँ।

0: बिल्कुल सही जवाब। और अगर मैं आपसे पांचवा जो सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर आपने सही आपने जवाब दे दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे। तो आपसे इजी पूछूं या थोड़ा डिफिकल्ट पूछूं?
1: डिफिकल्ट पूछ लीजिए या इजी, जो भी।
0: अच्छा डिफिकल्ट पूछ लूं, रेडी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है?
1: आइस हॉकी।
0: वाह बहुत बढ़िया, आप रेनबो जीनियस बन गए हैं, वाकई आप जीनियस हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आकाश जी, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा। आप यूं ही अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें, इससे पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है।
1: धन्यवाद।
0: और रेनबो के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: रेनबो में ज्यादा सुन नहीं पाता, एक तो यही शो सुन पाता हूँ क्योंकि संडे
0: को
1: सुबह, और सुबह समाचार सुन लेते हैं।
0: ओके, मॉर्निंग में समाचार सुनते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर हमारे साथ आज दो पार्टिसिपेंट थे और दोनों ही रेनबो जीनियस बन गए हैं। आज लगता है सारे जीनियस तैयारी करके आए हुए हैं और सारे जीनियस हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको करना इतना है कि आपको एक फोन डायल करना है, फोन नंबर आप नोट कीजिए, फोन नंबर है 01123421084। ये हमारा फोन नंबर है, अगर दिल्ली से बाहर हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाइएगा 011, और अगर दिल्ली में हैं तो आप सीधा डायल कर सकते हैं 2342104। ये हमारा नंबर है। और फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा ट्रैक, जी हाँ, बी पराग की आवाज में।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस में हमारे साथ अगले कौन से कॉलर जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर डायल कीजिए। फोन नंबर है अगर आप दिल्ली से बाहर हैं 01123421084। हेलो।
5: हेलो,
4: आपका बहुत बहुत स्वागत है, कौन सा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
5: जी नमस्कार, सबसे पहले
4: नमस्कार जी।
5: जी गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से बात कर रहा हूँ, रामधारी अवाना।
4: रामधारी जी, आपका नाम ही इतना बढ़िया है ना, रामधारी सिंह दिनकर थे जिनकी हम कविताएं और ये सब पढ़ते थे साहित्य।
5: जी बिल्कुल।
4: तो आप क्या करते हैं, पहले तो हमें आप बताएं।
5: सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हरियाणा पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल।
4: ओके, बहुत बढ़िया। तो आप जनरल नॉलेज का शौक रखते हैं?
5: जी बिल्कुल, जब भी वक्त लगता है तो ऑल इंडिया रेडियो की मार्फत और या फिर समाचार पत्र पढ़ने का मौका मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ।
4: बढ़िया, मतलब आपसे फिर अच्छे से सवाल पूछने होंगे हमें।
5: जी बिल्कुल,
4: है ना। तो चलिए मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि मैं आपसे, वैसे आपको पता ही होगा, आप पहले अगर पार्टिसिपेट कर चुके हैं कि पांच सवाल पूछूंगा, अगर पांचों का मैंने सही जवाब दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
5: जी जी।
4: तो मैं आपसे पूछता हूं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है?
5: बिहू असम का।
4: असम, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और जो भारत का मुख्य भूमि का जो लास्ट पॉइंट है, दक्षिण कोर जो है किनारा, कौन सा है?
5: ये है इंदिरा पॉइंट।
4: लास्ट जो कोर है, बिल्कुल लास्ट कोर जो उसका लास्ट, भारत का मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है?
5: साउथ पॉइंट पूछा ना।
4: साउथ पॉइंट है उसके अंदर, वो उसका नाम है, बहुत फेमस है, उसपे मूवी भी बनी है। मतलब ये
5: इंदिरा पॉइंट है सर, कन्याकुमारी में।
4: कन्याकुमारी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा मुझे।
5: मेनली तो पॉइंट का नाम तो सर इंदिरा पॉइंट है जो कि साउथर्न मोस्ट,
4: लेकिन कन्याकुमारी है मेन, उसको फेमस जो है वो कन्याकुमारी के नाम से ही सब जानते हैं।
5: ओके ओके।
4: और ये आपने बिल्कुल सही जो है, आपने सही जवाब दिया दूसरा जो आपने सही जवाब दिया। तो तीसरा मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत की तीन सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं?
5: तीन सबसे लंबी नदियां हैं, पहली है गंगा,
4: राइट,
5: दक्षिण में है जो है एक भारत की कावेरी,
4: नहीं रॉन्ग,
5: गोदावरी।
4: नहीं, आप सारे ऑप्शन दे रहे हैं, मैं आपको पूछा है कि तीन सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं, लंबी नदियां जो होंगी शुरू में होंगी और वहां से लास्ट तक जाएंगी। तो गंगा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक और बहुत फेमस है।

0: यू तो इंडियन रीजन की बतानी है यार
1: हाँ
0: सर,
1: जी,
0: मतलब
1: भारत की मैंने पूछा, भारत की तीन सबसे लंबी नदियां।
0: गोदावरी
1: नहीं
0: जो कि साउथ मोस्ट की,
1: नहीं
0: ब्रह्मपुत्र।
1: मैं आप नहीं, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा, तीसरी एक और है।
0: तीसरी सर गोदावरी,
1: नहीं बिल्कुल आप
0: यमुना।
1: नहीं, थैंक यू सो मच। तीसरी जो है वो है
0: ओके सर,
1: सिंधु नदी।
0: सिंधु का। अच्छा, एरिया तो भारत में नहीं। चलो ठीक है
1: सिंधु
0: सर,
1: है,
0: चलो
1: ब्रह्मपुत्र है और गंगा है।
0: ओके ओके, थैंक यू सर।
1: ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के
0: ओके
1: लिए,
0: ओके,
1: और आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दोस्तों, थोड़ा सा नज़दीक थे हमारे साथ जो जुड़े हुए थे आवाना जी, तो रामधारी आवाना जी जो जुड़े हुए थे हिसार से, लेकिन आप भी ट्राई कर सकते हैं। और हमारा नंबर है 01123421084। फिलहाल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का और टेंशन को एक साइड करने का, फिलहाल गाना सुनने का।

0: तो आप फिकर नॉट कीजिए, और हमारे साथ अगले फोन कॉल पर कौन से हमारे जो हैं रेनबो जीनियस बनने के लिए तैयार बैठे हैं उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी FM रेनबो पर। कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: हाँ, केशव चक्रवर्ती अगरतला।
0: चक्रवर्ती जी, आप एक बार दोबारा अपना नाम बताएं।
1: केशव चक्रवर्ती
0: केशव
1: अगरतला
0: चक्रवर्ती
1: त्रिपुरा।
0: जी, केशव जी,
1: हाँ
0: आपका
1: हाँ
0: बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं या पहले भी आप इसमें हिस्सा ले चुके हैं? पहले भी ले चुके हैं।
1: हाँ।
0: ओके, तो मैं आपसे पांच सवाल पूछूंगा। पांच का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप रेनबो जीनियस बन जाएंगे।
1: हाँ सर।
0: तो मैं आपसे पूछता हूं, पहला सवाल, आप करते क्या हैं वैसे? आपने बताया नहीं।
1: आप अगरतला से सर?
0: अच्छा, अगरतला से। वैसे क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका?
1: आप प्रोफेशन सर आए होम ट्यूटर।
0: ओके, होम ट्यूटर। तो आप फिर इसका मतलब तो
1: हाँ, होम
0: बहुत
1: ट्यूटर,
0: नॉलेज
1: होम
0: रखते होंगे।
1: ट्यूशन।
0: चलिए, मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए, इलाज के लिए होता है?
1: वही तो डायबिटीज डिजीज के लिए।
0: बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और अगला सवाल है कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है?
1: क्वेश्चन आवाज कम आ रहा है। भारत
0: मैंने
1: के
0: आपसे
1: पहले
0: पूछा कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है, सूरज जो होता है, सनराइज।
1: ये शशांक द सनराइजिंग लैंड अरुणाचल प्रदेश।
0: अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, दो सवाल और बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
1: क्या सर, आवाज तो ये बाहर से बहुत हो रहा है सर।
0: आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
1: आरएस
0: आर्य आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
1: आरएस इसका फुल फॉर्म क्या सर, हिंट थोड़ा दीजिए ना
0: नहीं,
1: सर।
0: आर्य समाज है ना, आर्य समाज जो है एक संस्था है, आर्य समाज, उसकी
1: हाँ
0: स्थापना।
1: हाँ हाँ ये स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती सर,
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
1: महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से स्वामी
0: बिल्कुल
1: दयानंद,
0: बिल्कुल।
1: गुजरात।
0: तीन बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। और मैं आपसे चौथा सवाल पूछ रहा हूं, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है?
1: ओ ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन
0: बिल्कुल
1: ऑफ इंडिया।
0: बिल्कुल। तो मैं आपसे पांचवा सवाल पूछ रहा हूं, पांचवा सवाल आपसे पूछूं, बिल्कुल टफ पूछूं या सिंपल पूछूं?
1: और सर आपका खुश सर, मैं
0: ओहो
1: जो सर प्रेफर करा इजी क्वेश्चन।
0: हो, चलो चलो चलो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
1: ओ सर 1939 फर्स्ट सितंबर।
0: 1939, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट फर्स्ट।
1: पहला सर वो 1914, 1914।
0: बिल्कुल सही जवाब। पांच सवाल, पांचों का सही जवाब, आप रेनबो जीनियस बन गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
1: हाँ, मेनी मेनी थैंक्स सर। रियली आई लाइक दिस प्रोग्राम। आई ऑल्सो एनकरेजिंग माई स्टूडेंट दे यू मस्ट पार्टिसिपेट, देयर इज ए ग्रेट प्रोग्राम रेनबो जीनियस इज हेल्ड इन दिल्ली, इज वेरी इंटरेस्टिंग, एनकरेजिंग एंड इंस्ट्रक्टिव।
0: थैंक यू
1: नॉट
0: सो
1: मिस
0: मच।
1: आउट।
0: और आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा भी सौभाग्य
1: हाँ
0: है।
1: थैंक यू,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू
0: सो
1: सर।
0: मच, अगरतला से आप जुड़े हैं। तो
1: हाँ
0: चक्रवर्ती
1: हाँ
0: जी, बहुत
1: हैव ए
0: बहुत
1: नाइस
0: मुबारक।
1: डे सर, हैव ए
0: थैंक
1: नाइस
0: यू
1: डे।
0: सर, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं रेनबो जीनियस। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर आपके साथ रहेंगी विनीता बेदी।

हेलो, हमारे साथ एक और हमारे लिसनर जुड़ गए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन साहब बोल रहे हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, आवाज नहीं पहुंच रही थी। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और दोस्तों, रेनबो जीनियस में हम सवाल पूछते हैं, पांच सवाल पूछते हैं, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप बन जाते हैं रेनबो जीनियस। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: दोस्तों हमारे साथ एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर धन्यवाद, मेरा नाम प्रिंस है और मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: तो प्रिंस आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, समय बहुत कम है, आपने अगर 500 का सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस।
1: जी सर कोशिश करते हैं।
0: चलिए शुरुआत करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
1: सर गोवा है।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और दूसरा सवाल है कि सूर्य किस गैस से बना है?
1: सूर्य हीलियम, वो सॉरी हाइड्रोजन,
0: नहीं हाइड्रोजन,
1: हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2 सवाल और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
1: सर 206 हड्डियां होती हैं।
0: बिल्कुल सही जवाब। और बिजली का आविष्कार किसने किया था?
1: I'm sorry सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा
0: हूँ। ओके चलिए मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
1: सर अगर कोल्डेस्ट रेगिस्तान की बात करें तो वो है अंटार्कटिका, और गर्म रेगिस्तान की बात करें तो वो है सहारा।
0: बिल्कुल सही जवाब। और पर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ, और ये है कि आपने सारा वैसे दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं?
1: वर्तमान में लोकसभा के सदस्य सर वो 545।
0: 545?
1: अच्छा 45
0: नहीं, आपने कितना बताया?
1: 543।
0: बिल्कुल सही जवाब। पर रेनबो जीनियस के लिए हम आपको कहते हैं थैंक यू सो मच, आप बन गए हैं रेनबो जीनियस। लेकिन आकाशवाणी एफएम रेनबो आप सुनते हैं और प्रोग्राम्स भी सुनते हैं हमारे?
1: जी सर टाइम टू टाइम जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जरूर सुनते हैं, पर okay. इस प्रोग्राम को तो अवश्य सुनते हैं।
0: थैंक यू सो मच, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद सर।
0: थैंक यू। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस। अब वीर धवन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए। अगला प्रोग्राम विनीता बेदी लेकर आपके साथ रहेंगी, प्रोग्राम सिटी लाइट्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, 30 तारीख को मैसेज मसाला मिक्स में फिर आपसे मुलाकात होगी आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, दिल से दिल तक।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने को कहा। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की बात अपील की है। जापान की राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 1 पारी और 51 रन से हराया। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने

तीन और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में तेज वर्षा का अनुमान है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। रविवार की शाम है और दिल्ली की शामों की अपनी ही कहानी होती है दोस्तों। कहीं बारिश के बाद भीगी सड़कों पर रोशनियां उतरती हैं, तो कहीं किसी सभागार में संगीत और रंगमंच की दुनिया सजती है। कहीं खेल के मैदानों में जीत की उम्मीदें धड़कती हैं और कहीं शहर की सड़कों को थोड़ा और सुगम बनाने की योजनाएं आकार लेती हैं। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, दिल्ली और आसपास की उन खबरों और गतिविधियों के साथ जो आपके अपने शहर को थोड़ा और करीब से समझने में मदद करती है, आपको भी और हमें भी।

सिटी लाइट्स में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली के आसमान में सामान्यतः बादलों की संभावना है। इनफैक्ट हल्की फुल्की बारिश तो दोपहर तक हो ही चुकी है कई जगहों पर, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 24 से 26 के आसपास बने रहने का अनुमान है इवन इन द इवनिंग। यानी कि मौसम तो पूरी तरह खुला हुआ नहीं है, बल्कि बादलों और हल्की बारिश के बीच मौसम अपना मिजाज दिखाता रहेगा। लेकिन ये खाली आज ही की बात नहीं है, आने वाले दो दिन तक आप इन्हीं संभावनाओं के बीच डूबते उतराते रहिए। कपड़े धो रहे हैं तो बाहर सूखने के लिए मत डालिएगा, कभी भी बारिश हो सकती है, स्पेशली तब अगर आप कपड़े डाल के कहीं बाहर जाने वाले हों तो। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, मौसम कभी भी आप पर मेहरबान हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, धूप की तपिश और उमस बरकरार रहेगी। तो आप अगर सोचें कि बाहर तो काफ़ी बादल छाए हुए हैं तो हल्की सी मीठी मीठी हवाओं का आनंद ले सकते हैं, बालकनी में बैठकर चाय के सिप ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, पसीनों में नहा जाएंगे तो उमस और गर्मी बरकरार रहेगी। बाकी बादलों की मेहरबानी आपसे रहेगी। और हाँ, अगर आप कहीं बाहर निकलने का प्रोग्राम बना ही रहे हैं तो छाता साथ रखना समझदारी होगी। बाकी आप देखिए, पहली बार तो आप कहीं जा नहीं रहे हैं। सैटेलाइट्स विनीता बेदी के साथ।

0: मंदिर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
10: के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
11: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
12: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
13: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों दिल्ली में यातायात को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक नई पहल पर काम हो रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 25 और प्रमुख सड़कों और कॉरिडोर्स को सिग्नल फ्री बनाने की संभावनाओं का अध्ययन करने का फैसला किया है। इनमें द्वारका, नजफगढ़ रोड, मथुरा रोड, आउटर रिंग रोड, मेहरोली गुड़गांव रोड, कालिंदी कुंज एयरपोर्ट क्षेत्र और लाल किले के आसपास के कुछ महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी जगहों से ट्रैफिक सिग्नल हटा दिए जाएंगे। पहले इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा, जहां जरूरत और परिस्थितियां अनुकूल होंगी वहीं पर यू टर्न, चैनलाइजेशन और दूसरे इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने पर विचार किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि यातायात की गति के साथ सड़क सुरक्षा भी प्राथमिकता रहेगी। आखिर शहर सिर्फ गाड़ियों के लिए तो नहीं होता ना दोस्तों, पैदल चलने वाला, साइकिल सवार, बस से सफर करने वाला और आपातकालीन वाहन, सभी को सुरक्षित रास्ता मिलना उतना ही जरूरी है। तो पहल करते हैं इस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की खूबसूरत सी पहल की और प्रशंसा भी करते हैं कि उनका अध्ययन जो है वो बहुत अच्छा रहे और कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि ट्रैफिक सुगम होगा तो ये तो हम सभी की प्रायोरिटी रहती है, ठीक है ना।

दोस्तों, 1, 2, 3, 4 सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वैसे तो हर दिन खास होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन आज यानी 23 अगस्त का दिन विज्ञान के लिए बहुत खास है। आज देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। दिल्ली के साइंस सेंटर ने भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दरअसल अंतरिक्ष की उपलब्धियां केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और रॉकेटों की कहानी नहीं है दोस्तों, वो उन बच्चों के सपनों की कहानी भी है जो रात के आसमान में चमकते हुए सितारों को देखकर कभी पूछते हैं, आखिर वहां क्या है। शायद हर बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि की शुरुआत किसी भी बच्चे के इस छोटे से सवाल से ही होती है ना

तो दोस्तों आज के सिटी लाइट्स में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में दिल्ली की किसी नई कहानी, किसी नई खबर और दिल्ली के किसी नए रंग के साथ। तब तक बारिश हो तो संभल कर चलिए, सड़कों पर धैर्य बनाए रखिए और थोड़ी सी संडे की शाम अपने नाम भी कीजिए, ठीक है ना। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे थे आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स। दिल्ली की रोशनियों में अपनी भी एक रोशनी बना के रखिए। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: अरे किसानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ, कौन मैं हूँ, ओम मैं हूँ, ओम मैं हूँ ओ पी राठौर। आप सभी को नमस्ते।

0: प्रणाम। तो चलिए आज के शो में यानी कि फार्म टू सिटी में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा यूनिक रहने वाला है, लाखों में यूनिक। आज हम कुछ अनबिलीवेबल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे मनी प्लांट के बारे में। थोड़ा आराम से सुनिए, हर कोई ना सुन ले। हाँ, मनी प्लांट जिसमें एक्चुअल मनी उगती है, रुपया डॉलर जो चाहे उगा सकते हैं उसमें आप। लेकिन वो कैसे उगाना है, कैसे करना है, ये जानना है तो बंधु चैनल नहीं बदलना और सुनते ही रहना फार्म टू सिटी विद ओपी राठौर, क्योंकि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिनका उद्देश्य है कि कृषि की पैदावार बढ़े, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, बागवानी, किचन गार्डनिंग के द्वारा भी लोग सेल्फ सफिशिएंट हो। तो भाई मनी वाली बात याद रखना है, क्योंकि इस गाने के उस तरफ मनी मनी पैसा पैसा करेंगे हम, आपको पैसा पैसा दे देंगे।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे खास एक्सपर्ट से आपको मिलवा रहे हैं इन द प्रोग्राम फार्म टू सिटी ऑन एफएम रेनबो। तो औषधीय पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी आइए प्राप्त करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मूलचंद जी से, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारत सरकार के NBPGR में। डॉक्टर मूलचंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार कितने मेडिसिनल प्लांट्स अभी उपलब्ध हैं सर?
1: अधिकांश किसान औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, मेंथा, अकरकरा, शतावरी, गिलोय और सहजन की खेती प्रमुख रूप से कर सकते हैं। और हमारे भाई जो घरों में भी औषधीय पौधे लगाना चाहते हैं, वो सब इन पौधों को लगा सकते हैं और सफलतापूर्वक उगा सकते हैं।
0: डॉक्टर मूलचंद, कौन से पौधे हैं जिनकी पैदावार करके घर में रहते हुए ही अपना इलाज, अपनी देखभाल कर सकते हैं?
1: जो व्यक्ति अपनी खुद की देखभाल के लिए अपने घर में औषधीय पौधे उगाना चाहते हैं, तो उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो अश्वगंधा, एलोवेरा, गिलोय, लेमन ग्रास, मेंथा या पुदीना, तुलसी और ब्रह्मी लगा सकते हैं, क्योंकि इन सबको जो पॉट होते हैं, जो गमले होते हैं, उसमें लगाया जा सकता है और इनमें रोग या कीट और व्याधियां बहुत कम लगती हैं। इसके लिए कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनको जब भी पानी की आवश्यकता है वो दें और ज्यादा से ज्यादा उसमें नीम की खली डाल सकते हैं, जिससे अगर कोई बीमारी या कीट आता है तो वो मर जाएगा और उससे इन सब पौधों को पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे।
0: तो कौन सी ऋतु में, कौन से मौसम में कौन सा पौधा लगाना चाहिए?
1: देखिए, अधिकतर जो औषधीय फसलें हैं उनको खरीफ या जायद में उगाया जा सकता है। तो हम अगर मेंथा की बात करें, जो हमारे भाई बहन मेंथा या पुदीना अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो वो अगस्त के महीने में उसकी नर्सरी लगा सकते हैं, या उनको कहीं से भी जड़ मिल जाए तो वो अपने घर में जो गमले हैं उसमें लगा दें, उसके बाद लगभग 4-5 सेंटीमीटर उसकी जड़ को अंदर कर दें, उसके बाद पानी दे दें तो उसके साथ उसकी बढ़वार शुरू हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने गिलोय बताया, गिलोय को तो इस समय लगाया जा सकता है और मेंथा पुदीना को तो कभी भी लगा सकते हैं, तुलसी भी कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा सर्दी होती है तो तुलसी के लिए बचाव की आवश्यकता होती है, उनको खुले में ना रखा जाए, थोड़ा शेड में रखा जाए ताकि अगर तापक्रम बहुत कम हो जाता है तो उससे तुलसी खराब हो जाती है। अश्वगंधा भी लगा सकते हैं, अश्वगंधा तो खरपतवार ही होता है, तो उसको भी जैसे बड़े गमलों में लगाकर उसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी खरीफ में ही लगाया जाता है जब बरसात शुरू होने से पहले, और जैसी बरसात होती है तो बहुत अच्छा बढ़ता है। औषधीय फसलें प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों से कम प्रभावित होती हैं। इसके अलावा औषधीय फसलों की खेती से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। इसके अलावा औषधीय फसलों को वर्ष भर किसी भी समय उगाया जा सकता है। व्यावसायिक स्तर पर अगर उगाना है तो वो जून और जुलाई के महीने में ज्यादातर फसलें लगाई जाती हैं, लेकिन घर में आप किसी भी समय इनको लगा सकते हैं। और औषधीय फसलों को किसी भी प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि जो बेकार भूमि में है उसमें भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा औषधीय फसलों की खेती से पर्यावरण को भी लाभ होता है, क्योंकि ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, ऑक्सीजन का स्तर को बढ़ाती हैं और इससे ओवरऑल जो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होता है।
0: डॉक्टर मूलचंद, इन औषधीय पौधों के विस्तार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?
1: आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार औषधीय फसलों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की योजना तय की है, जिसमें लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसलों की खेती की जाएगी और इससे हमारे किसान भाइयों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा हमारी सरकार सेंट्रल मेडिसिन प्लांट बोर्ड तथा राज्य के कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से औषधीय फसलों की खेती करने के लिए 30% का अनुदान प्रदान करती है। और इसके अलावा जो किसान भाई या FPO इनका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो एपिडा एक केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो उनके एक्सपोर्ट में हर संभव मदद करती है। इसके अलावा जो औषधीय फसलें हैं उनका ई चरक नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है, तो किसान भाई उस पोर्टल पर, किसान और खरीदार दोनों होते हैं, तो किसान भाई जिनके पास जो भी औषधीय फसल की उपज है वो उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे खरीदार होते हैं तो किसान भाइयों को उनकी उपज का अधिक लाभ प्राप्त होगा।
0: ओके, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान, थैंक यू सो मच। लेकिन श्रोताओं, आप सो मच जाना, क्योंकि अभी तो जागने का समय हुआ है। अभी तो हमारे कार्यक्रम ने ली अंगड़ाई है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम

ग्राम के हर कोने में छिपी किसान एंड गार्डनर्स की भलाई है, और दूध के ऊपर जो मोटी मोटी होती है उसे तो कहते हम मलाई है, और इसी प्रोग्राम की मलाई है ये गाने। आइए इन्हें चखें, आई मीन टू सुने।

0: आप सुन रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फार्म टू सिटी, जिसमें हम छोटे मिनी किसान यानी कि घर में, छतों पर, बालकनी में करने वाले किचन गार्डनिंग या पौधों के लवर्स को इकट्ठा करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके लिए सूचनाएं लाते हैं और एक उनकी एक छोटी सी गोष्ठी तैयार करते हैं। तो फार्म टू सिटी में अब आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कृषि विकास की दिशा को रेखांकित किया। उन्होंने केमिकल फ्री खेती, वैश्विक मानकों के अनुरूप कृषि उत्पादों को बढ़ावा तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच एवं किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर विशेष बल दिया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे।
0: जैसा कि आपको याद होगा, पिछले अंक में हमने नेशनल बी बोर्ड की चर्चा की थी, मधुमक्खी पालन की चर्चा की थी, तो उसी क्रम में एक सक्सेस स्टोरी ढूंढते हुए हमारी नजर पड़ी राकेश कुमार की प्रोफाइल पे, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है किसान गौरव सम्मान से। तो उन्हीं से मिलके बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने नेशनल बी बोर्ड से मधुमक्खी ब्रीडिंग का काम सीखा और अपनी इनकम 40,000 से 80,000 बढ़ाते बढ़ाते आज 16-17 लाख तक लेके आए हैं और किस तरह वो अन्य युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। चलिए बात करते हैं राकेश जी से। नमस्कार राकेश जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: जी सर, मेरा नाम राकेश पुरी है, मैं लालगढ़ जाटान जिला श्री गंगानगर का निवासी हूं और मैं 11 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूं।
0: आपको सरकार ने किसान गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है, तो ये सम्मान आपको आपके किस योगदान के लिए दिया गया?
2: सर, मेरे को किसान सम्मान मिला था दिल्ली पूसा में, वो मेरे को मधुमक्खी पालन में उत्कृष्ट कार्य करने व लोगों को जागरूक करने व मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। इसके लिए मैं नेशनल बी बोर्ड का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे सम्मान से नवाजा गया।
0: ओके, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आपने ट्रेनिंग ली, आखिरकार ये कैसे करते हैं, थोड़ा सा इस पूरी यात्रा के बारे में हल्का सा समझाइए।
2: मैंने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग सन 2014 में मैंने ऑनलाइन नेशनल बी बोर्ड के बारे में मुझे पता लगा, मैंने सर्च किया तो मेरी डॉक्टर बीएल सरसों जी से बात हुई जो डायरेक्टर थे उस टाइम, उनके निर्देशों से नेशनल बी बोर्ड द्वारा हमारे गाँव लालगढ़ जाटान में 25 लोगों को ट्रेनिंग दी गई वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन की। अभी हम साइंटिफिक तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं।
0: इस काम को करने के लिए कम से कम कितनी जमीन इंसान को चाहिए? क्या वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है?
2: किसान मधुमक्खी पालन को जमीन की आवश्यकता नहीं होती, भूमिहीन किसान भी मधुमक्खी पालन कर सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं भी अपनी भूमि के नजदीक 2-3 किलोमीटर क्षेत्र में फूल होना जरूरी हो। अलग अलग क्रो की बुआई होती है, तो अपने को जिस क्षेत्र में जहाँ नेटर जिस क्रोप से आ रहा है उसके लिए माइग्रेट करना पड़ता है बार बार, तो अपनी खुद की जमीन अपने हर जगह नहीं ले सकती। इसके लिए किसान या तो भूमि रेंट पे ले लेता है या फिर गवर्नमेंट कहीं सरकारी भूमि पड़ी हो उसमें, या कुछ लोगों से जैसे खाली भूमि पड़ी है नहर किनारे उस जगह रख के और मधुमक्खी पालन आराम से कर सकता है और उसका उत्पादन ले सकता है।
0: अच्छा, आप तो रोज शहद का काम करते हैं, हमारे श्रोताओं को बता ही दीजिए कि अच्छे शहद की क्या पहचान होती है।
2: जो नेचुरल पानी है वो क्रिस्टलाइज होता है, शहद जमता है, शहद का जमना उसका स्वाभाविक गुण है। ये ग्लूकोज और फैक्टोज के कारण होता है, जिस शहद के अंदर नेचुरल ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है वो शहद जमता है, और जिसमें फैक्टोज की परसेंटेज ज्यादा होती है वो नहीं जमता। आमतौर पे अपने लोगों की धारणा है कि जो शहद जमता है वो नकली है, नहीं, जो शहद जमेगा वो असली है, क्योंकि तो ग्लूकोज की वजह से जिस हनी में ग्लूकोज की मात्रा, जैसे मस्टर्ड का हनी हो गया, सरसों का हनी 100% जमता है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सरसों मस्टर्ड हनी का ही।
0: शहद निकालने के बाद जो कुछ भी बच जाता है यानी उसके डेरिवेटिव्स हैं, क्या उनका भी कोई व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकता है?
2: मधुमक्खी से सिर्फ एक शहद ही प्राप्त नहीं होता, मधुमक्खी से 6 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे मुख्य शहद हो गया, उसके बाद में बी पोलन, फिर हो गया बी वैक्स, प्रोपोलिस, बी वेनम और रॉयल जेली।

0: सभी का अलग अलग तरीके से मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, हर जगह उपयोग होता है।
1: आज की तारीख में आप कितना कुछ कमा लेते हैं?
0: हनी जो है ना वो नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे प्राकृतिक हनी अपने को लेना है तो 100 कॉलोनी से एक आदमी अगर अच्छी मेहनत करे तो 100 कॉलोनी से लगभग 7-8 लाख रुपए का उत्पादन ले सकता है, क्योंकि हनी खुद रिटेल में सेल करे, अगर अपने होलसेल में हनी बेच रहे हैं तो एक्सपोर्टर को दे रहे हैं तो उसमें अपने को मार्जिन कम आएगा। अगर नेचुरल हनी अपने कस्टमर को डायरेक्ट दे तो उससे अपने को लगभग 7-8 लाख रुपए आराम से 100 कॉलोनी से उत्पादन ले सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। हम चाहेंगे ऐसे ही आपको और सम्मान मिलते रहें, ऐसे ही आप मधुमक्खी पालन के कार्य में अपना नाम रोशन करते रहें और युवाओं के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा की मिसाल बनते रहें। थैंक यू सो मच। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने हमें ईमेल लिख के पूछा है कि हम उन्हें बताएं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। तो मुकेश जी, थैंक यू फॉर राइटिंग, लिखने के लिए शुक्रिया। तो हम आपको बता दें, ये भारत सरकार की एक बेहद सफल और किसान हितैषी योजना है। इसे स्वस्थ धरा खेत हरा के नारे के साथ शुरू किया गया था। ये योजना किसानों को उनकी जमीन की सेहत सुधारने और फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। जिस तरह डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके हेल्थ रिपोर्ट देते हैं ना, ठीक उसी तरह ये कार्ड खेतों की मिट्टी की जांच करके उस मिट्टी की हेल्थ रिपोर्ट बताता है। भाई इसमें 12 तत्वों की जांच होती है मुख्य रूप से। इसमें मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, आयरन, कॉपर और मिट्टी का पीएच लेवल। ये कार्ड किसानों को बताता है कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है और उन्हें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। बिना जांच के अंधाधुंध खाद डालने से पैसा बर्बाद होता है और मिट्टी भी खराब होती है। कार्ड की सलाह से किसान जरूरत जितनी उतनी ही खाद खरीदते हैं, जिससे खेती की लागत भी घटती है, जिससे मिट्टी में सही पोषण पैदा होता है और फसलों की पैदावार भी अच्छी और सेहतमंद होती है। ये काम कैसे करता है? भाई 3 स्टेप्स में काम करता है। कृषि विभाग के अधिकारी या प्रशिक्षित लोग किसान के खेत से अलग अलग जगहों से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करते हैं। इस मिट्टी को सरकारी या मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है, जहां वैज्ञानिक इसकी बारीकी से जांच करते हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद किसान को एक प्रिंटेड सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। ये हर 3 साल में एक बार अपडेट कराना होता है, ताकि मिट्टी में हो रहे बदलावों का पता चल सके। अब सवाल ये आता है कि किसान भाई ये कार्ड कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाई बहन अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र KVK, कृषि विभाग के कार्यालय या स्थानीय ग्राम प्रधान से संपर्क करके अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी आधिकारिक वेबसाइट soilhealth.dac.gov.in पर जाकर भी अपनी कार्ड की स्थिति देख और डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई अपने खेत की मिट्टी को भी बनाइए अपनी तरह मजबूत और ताकतवर, और अधिक से अधिक लाभ उठाइए भारत सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। दोस्तों, अगर आपको कभी कुछ जानना है हमारे किसी भी मेहमान एक्सपर्ट से, तो उनका नाम लेके आप हमें सवाल भेज सकते हैं। हम उनसे संपर्क करेंगे और आपकी किसी भी दुविधा का समाधान उनसे पूछ के आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस फिर से दोहरा दें, farm2citydelhi@gmail.com। 2 जो है ये अंक वाला 2 है, न्यूमेरिकल। आपको प्रोग्राम कैसा लगता है और इसमें अगर आप भी आना चाहते हैं एज अ गेस्ट, अपनी गार्डन की तस्वीर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो farm2citydelhi@gmail.com पे जरूर लिखें। तो भाई अब समय है आपसे कुछ लेने का, इजाजत और क्या लेंगे, आशीर्वाद भी ले सकते हैं लेकिन वो तो अगली बार ले लेंगे। फिलहाल आप इजाजत दीजिए, लेकिन एक संकल्प आप भी कीजिए हमारे साथ। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश का आह्वान किया है कि आइए अब हम विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाते हुए हर इंसान अपना अपना सकारात्मक योगदान देता रहे भारत के विकास में, इसी संकल्प के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू नहीं कहेंगे, हियर यू, क्योंकि हम दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं। फार्म टू सिटी का आज का अंक नमस्ते कह रहा है आपसे। बाय बाय।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

और अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने को कहा। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDS और क्लस्टर्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सीरीज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। बैठक के दौरान मेक इन इंडिया पहल के तहत वैश्विक निवेश आकर्षित करने की भारत की योजना का भी उल्लेख किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को लेकर ले जा रही एक नाव पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। जापान में राजधानी टोक्यो में उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 1 पारी और 51 रन से हटाया। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

चलिए आपकी वाणी आकाशवाणी पे हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी सीमा और प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स और बहुत सारे मैसेजेस के साथ आप भी आ जाइए और मैं तो आ ही चुकी हूँ। चलिए प्रोग्राम शुरू करिए और क्या बात करेंगे, क्या मैं लेकर आई हूँ जिसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको बहुत कुछ आइडिया भी लग जाएगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं।

चलिए अब हमारे जो प्रोग्राम में ना लूटने की बिल्कुल बात नहीं होती है, हमारे प्रोग्राम में तो सिर्फ देने की बात होती है, मोहब्बत देने की बात होती है, प्यार देने की बात होती है और इतने खूबसूरत से गीतों का जो कहते हैं ना माहौल बनाने की बात होती है, यहाँ पे तो बस देने की बात होती है और आपके मैसेजेस लेकर जो खुशी होती है ना उसकी भी बात होती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोग समझ गए हैं कि आज बात किस वजह से होने वाली है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहले ही गाना मैंने इतना अच्छा सा बरसात का गाना बजा दिया है, ऑलमोस्ट सावन ख़त्म सा होने वाला है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम कभी भी दस्तक दे देती है बारिश, है ना, जैसे कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए, है ना, अचानक एक हल्का सा झोंका बनकर, हल्की सी बारिश की फुहार बनकर, लेकिन आपकी लाइफ को तूफान जैसा कर दे, तो कुछ ऐसा कैसा होता है ना। तो आज कुछ बात होने वाली है ऐसी, बात करेंगे बरसात के दिन आए, है ना, बरसात के दिन आ रहे हैं, चल रहे हैं और बरसात के दिन जब भी होते हैं तो हमें अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं या फिर नई कुछ ऐसी बात होती है जो आपको याद आ जाती है या कुछ ऐसा कि जिसे आप कभी भुला ही नहीं पाते, है ना। तो कुछ बात करने वाले हैं आज हम ऐसी ही कि बारिश आती है तो आपको ऐसी कोई बात खास है जो याद आ जाती है, या कोई ऐसे व्यक्ति है या कोई ऐसा पर्सन है या आपके बहुत करीब है जो आपको जैसे ही बारिश आती है वो याद आ जाती है, या कोई अपनी पुरानी कोई बातें हों, अपने दोस्तों के साथ की बातें हों। तो आज बरसात के दिन है और बरसात के दिनों में हम खूबसूरत से गीतों के साथ, वैसे तो बारिश सॉन्ग आज बहुत सारे लेकर आई हूँ मैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए मेरे जाने तक बारिश हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि जब मैं घर जाऊँ तो बारिश हो जाए झमाझम और मैं भीगते भीगते जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ मैं अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे प्रोग्राम के साथ आ गए हैं ना, तो मुझे तो काफ़ी सुकून है ना, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ हो, प्रोग्राम में मेरे साथ हो। और इसी तरीके से बने रहिए, सुनते रहिए और अपने मैसेजेस भेजते रहिए 9868107070 पर। इंतज़ार कर रहे हो बरसात के दिन, जी हाँ बरसात के दिन, और वो बहुत बहुत बहुत पुरानी बातें भी हो सकती हैं, है ना, जो जैसी बारिश आती है ना एकदम से याद आ जाता है, और वो खूबसूरत सी जो ठंडी ठंडी फुहारे चेहरे पे पड़ती है उसके साथ कुछ याद आया, आ गया याद, आ गया है ना। तो जल्दी से 9868107070 पर इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपकी। अब

चलिए अब हम ले लेते हैं हमारे मैसेजेस, क्योंकि हमारी जो दोस्त है ना वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और वो वैसे तो जान ही गए हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं अगर सुना है तो मैं बता देती हूँ। अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया है तो आपको बता देते हैं बरसात के दिन और वो बातें जो आज भी आपको बारिश के साथ याद आ जाती हैं, या फिर वो इंसान जो, या तो कई बार ऐसा भी होता है ना, ड्रीम भी तो होता है ना किसी का कि बारिश हो और ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ कुछ हमने सोचा हुआ भी तो होता है ना। तो चलिए कुछ तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, और अब लेना होगा मुझे मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अब तो आज मैं नीचे से नहीं ऊपर जा नीचे से ऊपर नहीं जा रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ, तो जो नीचे वाले हैं ना वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ज़रूर आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, मैसेज ले लेंगे हम आपका। और नमस्कार, कैसा है, कैसा है, कैसे हैं आप लोग, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गीत बढ़िया लग रहे हैं, जो बरसात के ऊपर बहुत जो अच्छे गीत आपने लगाए हैं ना। हम दिल्ली के मोरी गेट से कन्हैया लाल नेता, देवी शिल्पा रानी, आकाश कुमार ये बोल रहे हैं, और बरसात के ऊपर ही मैं बहुत सारे गाने लेकर आई हूँ, और बस मैं ये प्रे कर रही हूँ कि मेरे जाने पे बारिश नहीं होनी चाहिए, है ना, फिर बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक करके आई हूँ। और अगला मैसेज मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, नया पारा भिरई ज़िला बालौद, बसंत कुमार ठाकुर जी हमारे साथ हैं, इसके साथ गुन्नौर से हमारे साथ फारूक अली खान जी, फैजी फराज, फरीन फरान, फारिया ताहिरा, ये सभी कह रहे हैं कि जब ये बरसात सावन का महीना आता है ना तो बचपन की बेशुमार यादें जो होती हैं हमें अपने आगोश में समेट लेती हैं। दोस्तों के साथ बागों में जाना, चाय पकौड़े खाना, झूला झूलना, और वो दिन और सभी दोस्त बहुत याद आते हैं। जी हाँ, सभी दोस्त बहुत याद आते हैं, और कुछ दोस्त तो बहुत ख़ास होते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत खास बन जाते हैं, ऐसे भी होते हैं ना। और अगला मैसेज आ गया हमारे पास, ये किसका मैसेज है, नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, विजेंद्र गहलोत जी का ये मैसेज है, और इन्जॉय कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम को बहुत ही, और अंकोला महाराष्ट्र से ये मैसेज आ गया है, इधर तो दीदी बारिश ही नहीं है और बारिश की बहुत राह देख रहे हैं हम सब। अच्छा, बारिश की राह देख रहे हैं सभी लोग, चलिए हम ना प्रे करेंगे कि जल्दी से आप जहाँ चाहते हैं वहाँ बारिश आ जाए। इसके अलावा दिस इज़ मीना फ्रॉम द खारगांव मध्य प्रदेश से, आज का टॉपिक तो दिल को छू लेने वाला है, और जब भी तेज़ बारिश होती है ना तो मुझे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, जब मैं अपनी 3 बेस्ट फ्रेंड के साथ बारिश में भीगते हुए घर आती थी, और उस वक्त बारिश में भीगने का मज़ा ही अलग था, एंड नाउ आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स वेरी मच। सीरियसली वो जो

था ना, और कॉलेज में तुम जान पूछ के भी भीग के आते थे। अब क्या होता है कि अभी हम ना बचते हैं, है ना, अभी हम बचते हैं कि अरे बारिश में भीग ना जाएं कहीं हम, या ये ना हो जाए, तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस टाइम हम बचते हैं। उस टाइम हम जान जान के भीगते थे, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा होता है, ऐसी आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर हुआ होगा, और आपको आज ऐसे ही कुछ बताना है। अच्छा, बचपन की बात करी है, पुरानी बात करी है, तो ये वाला गाना तो बारिश का है, तो ये तो बजाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बारिश में ये वाला गाना नहीं सुना तो क्या सुना।

वैसे पता है जब भी ये वाला गाना सुनते हैं ना अपने आप ही बहुत अच्छा सा मूड हो जाता है, हाँ अपने आप ही पता नहीं क्यों बड़ा खुशी सी हो जाती है, पता नहीं कैसे हो जाती है। कई बार होता है कि हम ना बड़े अजीब से मूड में होते हैं, लेकिन तभी कहते हैं कि ऐसे में जो संगीत होता है ना, म्यूज़िक जो होता है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना कि आप थोड़े से अलोन हो रहे हो, कुछ डिप्रेस हो रहे हो या फिर कुछ टेंशन है, तो ऐसे में ना एक अच्छा सा अपना फेवरेट गाना लगा लो और फिर देखो थोड़ी देर के बाद आप कितना रिलैक्स फील करते हो, आपको खुद ही लगने लगेगा ठीक है जो भी प्रॉब्लम है ना हो जाएगी सॉल्व। तो ये म्यूज़िक में होता है ना, इसमें जादू होता है, जैसे कि आपके मैसेजेस में है खूबसूरत सा जादू। और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त सौरभ आ गए हैं, सौरभ अनिजा बहुत स्वागत है आपका। और अगला मैसेज भी ले लेते हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रेमचंद प्रेमी धामपुर जी से, धामपुर से। और ये लग रहा है कि आपका स्वागत है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और बारिश अश्क दर्द का सैलाब लेके आई, जिसमें छुपे थे जख्म वो किताब लेकर आई, और मुमकिन नहीं है दोस्त उनसे हमारा मिलना, मेरे प्यार की हवा अब ये जवाब लेकर आई। हाय कितना अच्छा लिखते हैं आप, कितना अच्छा लिखते हैं। रंजीत कुमार मंडल सीकरी अररिया बिहार से भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक और दोस्त है, वो भी हमारे साथ है, सत्तू जी हाँ। और कुछ लोग तो ना हमारे प्रोग्राम में ऐसे हैं जिनके बगैर तो प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता है, मुझे लगता है कि जब तक ये इनकी प्रेजेंट नहीं होगी ना तो प्रोग्राम ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा। और ये मैसेज आया है शुक्लाल बाला वेस्ट बंगाल से फलाकाटा, और गुड इवनिंग लिख रहे हैं ये हमें। और इसके अलावा नरेंद्र सोनी जी का भी आ गया है और ये लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा सा मैसेज लिखा है इन्होंने, और लिख रहे हैं कि आपकी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद गीत सुनाने के लिए। और ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से गुड इवनिंग शुभ संध्या। और सीमा मुझे याद है कि चांदनी मूवी हुई जिसका उसका एक गाना था ना पर्वत से काली घटना टकराकर, सच में बहुत खूबसूरत सा गाना था। और हाथ में रेडियो पकड़े हुए आज, और मैं जब पहली मुलाकात हुई थी मेरी और मेरी मैडम की आरती से, वो रेडियो में गाना चल रहा था, तो मेरे साथ रेडियो के साथ वो भी गाने लगी, तब हमारी निगाहें टकराई और बस। तो ये बात जब बारिश की आती है तो याद आ जाती है, बहुत सुंदर। यानी कि जो गीत होते हैं ना, ये जो हमारे खूबसूरत से गीत होते हैं, ये एक दूसरे को पास लाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। ये अभी अभी मैंने पढ़ा, अभी अभी आपको बताया नरेंद्र की कहानी, और सच में ये पास लेने का बड़ा, कई बार होते हैं ना बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, ऐसा ही उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेट करता हुआ कोई गाना आप लगा दो, बस काफ़ी कुछ बहुत आपका काम ना आसान हो जाएगा। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे आया है अनिल शर्मा जी का सरिता विहार से, और ये लिख रहे ऊपर से नीचे वाला नंबर लगा दिया तुमने आज, और नियम से पुराने नियम को बदल दिया, जिसका नंबर पहले आया उसका नंबर बाद में। और अभी पता है अनिल जी क्या चल रहा है, अभी तो मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी तो पहले आओ पहले पाओ वाला ही चल रहा है मुझे तो लग रहा है। कोई बात नहीं, अब आपका नंबर आ गया है ना, तो चलिए आप क्या मैसेज हम ले लेते हैं। मेरी खुशी की बरसात मेरा

छोटा सा नाती है, नाम रुद्र, और रोहिणी खुशी की बारिश कर देता है, रहता है रोहिणी में, खुशी की बारिश कर देता है। 70 वर्षों में कई बारिश भीगने की बातें याद आई हैं, उस वक्त भरे सड़क पानी पैरों से दूसरों पर उछालने में। हाँ सच्ची, ये वाला भी बड़ा मज़ा आता था। बुढ़ापे में खुशी की बरसात, मेरे शौक गाने सुनना, काव्य लेखन में व्यस्त रहने से देखता रहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब सड़क पे पानी भरा होता था और बच्चे एक दूसरे को पानी में चीटे करते थे, एक दूसरे पे उछालते थे, और सच में ये दिन कितने अच्छे हुआ करते थे ना। और आजकल के बच्चों को तो ये सब कुछ पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। इसके अलावा अगला मैसेज आ गया है पंकज का, अमरावती महाराष्ट्र से, और ये लिख रहे हैं कि मेरे बचपन के दोस्त के साथ एक ही छाते में स्कूल जाता था, तब मेरे पास छाता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त मुझे अपने साथ बारिश के मौसम स्कूल जाते समय हमेशा मदद करते थे, और मुझे देरी हुई तो मेरा इंतज़ार करते थे। उसे मालूम था कि मेरे पास छतरी नहीं है, मैं बारिश में भीग जाऊँगा, और मेरी बारिश जुड़ी दोस्त के साथ याद आज ताज़ा हो गई है। यही तो बात होती है ना कि हम बात करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। किसी एक बात के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं, उन बातों को याद करना ही तो हमारा काम है मैसेज मसाला मिक्स में। और इस मैसेज के बाद मैं एक ट्रैक लूँगी, ये मैसेज ले लेती हूँ। ये मैसेज किसका है, हीरामणि वर्मा का, भाटापाड़ा से आया है। बरसात के दिन आते ही मुझे बचपन का एक गाना याद आ जाता है, मैं मस्त नया कपड़ा पहनकर छाता पकड़ कर स्कूल जा रहा था, थाप गंडियों के रास्ते पर पैर स्लिप हो गया और छतरी भी हवा के झोंकों में पलट गया और मैं कीचड़ में गिर गया। मेरे दोस्त हंसे और उठाए भी, मैं रो रहा था, वहीं से वापस घर आ रहा था। ये जहन में बिल्कुल भी ताज़ा हो जाता है। अब पूरा बदल गया है, पगडंडियों वाला रास्ता पक्की सड़क बन गई है, और गांव में आते ही 12वीं तक के स्कूल भी हो गया है। वह तो बहुत ही अच्छी बात है कि सड़क बन गई है, 12वीं तक स्कूल भी आ गया है, लेकिन जो वो मज़ा था ना गिरने का, और ये वाला तो सच में जरूर सबके साथ हुआ होगा, जब बारिश भी आती थी, तेज़ हवा आती थी और छतरी उल्टी हो जाती थी। चलिए अब मैं गाना चला रही हूँ और उसके बाद फिर एक हम लेंगे ब्रेक, फिर हाजिर हो जाएंगे बहुत जल्दी से। प्रोग्राम आपका मैसेज मसाला मिक्स 9868107070 पर इंतजार कर रही हूँ आपका, आपकी दोस्त

0: जी हाँ, और अभी हाजिर होती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
8: मन की बात है, जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए अब मैं बात ही नहीं करूँगी ज़्यादा, अब मैं मैसेज लूँगी क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और फिर आप नाराज़ हो जाते हो कि मैसेज क्यों नहीं ले रही हूँ मैडम। चलिए, आपकी जो मैडम है ना अब आ गई है फॉर्म में। और ये मैसेज आ गया है हमारे पास अंशी का। अंशी लिख रही हैं हस्तिनापुर मेरठ से। आए हाय, मेरठ से मैसेज आया, भाई खास बात है। और ये मैसेज किसका, आज का टॉपिक पर ये कहना चाहेंगी कि

कु कुमार है गांव खाकुंदा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। पहले पहले पहला पहला प्यार हुआ था और पहली पहली बार मिले थे, घूमने निकल गए थे दोनों साइकिल लेकर। मेरे पास साइकिल थी और वह पैदल थी और बारिश आ गई। खुली सड़क पर हम चल रहे थे और उसी रास्ते पर कोई छुपने के लिए जगह नहीं थी और साथ में चलते रहे। जब कभी बारिश होती है ना तो ये बात याद आ जाती है और बहुत याद आ जाती है। सबके साथ कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं ना बारिश वाले। हम वो पता नहीं नालियों में ही खेलते रहे, पता नहीं क्या पानी में ही खेलते रहे, सब लोग कहाँ कहाँ चले गए। और ये मीना मीना का भी मैसेज मैंने शायद पढ़ लिया है, दोबारा से ले लूँ क्या। बारिश आती है तो इनको भी कॉलेज की फ्रेंड्स की याद आ जाती है। और अगला मैसेज किसका आया है, हम ये ले लेते हैं। अब मैं फिर से ऊपर से नीचे को आना पड़ेगा मुझको। और थैंक यू, अंशी का मैसेज आ गया है। थैंक यू की कोई बात नहीं अंशी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे सबके मैसेज लेने हैं। और गुड्डू धाकड़ जी का अगर मैसेज जी मैंने नहीं लिया तो भाई कैसे होगा। और ये लिख रहे हैं कि उज्जैन से हैं ये, और उज्जैन की बेड़ावन गाँव से पापा बारिश में उनके हाथों से खेत पर सेक कर भुट्टे खिलाते थे। और पापा तो अब नहीं है लेकिन बारिश में हमेशा उनकी याद आती है। हाय, ये तो सच में वो सब बातें हो रही है ना, कि कहाँ अब हम वो कहाँ भुट्टे खा पाते हैं, भुने हुए है ना, नहीं खा पाते। और हाय मुझे सच में इमोशनल हो रही हूँ मैं इतनी सारी बातें सुनकर। ऐसा लग रहा है कि पिछले समय पे चली गई हूँ। और अगला मैसेज आ गया है हमारे पास, खुश करने के लिए फूलों का कातिल। ये क्या है मैसेज गया, नाम नहीं आया है आपका तो नाम लिख के मुझे दोबारा से भेज दीजिएगा। इसके अलावा शमसूल कमर राही जी का मैसेज आ गया है, आधुनिकता के इस दौर में मनोरंजन के तमाम साधन हैं लेकिन जो बात रेडियो में है वो कहीं नहीं है। जीवन के रंग, प्रकृति का सौंदर्य, समाज का सच और इंसान की दिल को सुकून देने वाले गीत, रूह तक उतर जाने वाली आवाज़, मन को मोह लेने वाले आरजीस के मीठे मीठे बोल, जिसे सुनकर लगता है कि इनके मुंह से शब्द नहीं फूल निकल रहे हैं। और ये रेडियो मेरी ज़िंदगी के आसमान पर छाया वो बादल है जो मुझे आए दिन संगीत की बूंदों से भिगो देता है। भाई साहब क्या मैसेज लिखा है आपने। और जब भिगोने की बारिश बात कर रहे हो आप तो बारिश की बात कर लेते हैं हम भी। इतने खूबसूरत से मैसेज आप लिखते हो पता है, और सभी एक से बढ़कर एक हैं और हमारा प्रोग्राम तो उससे भी लाजवाब है ना। तो चलिए मैसेज करिए 9868107070 पर, इंतजार करिए आपकी ये दोस्त सीमा।

कहने को तो बहुत कुछ है, पर कैसे गए? वक्त भी तो देखना होता है ना। जी हाँ, वक्त भी तो देखना है। 6:44 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 45 होने ही वाले हैं, तो जो कुछ भी है तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ काम की बातें ज़रूर कहेंगे। हाँ पता है, एक बात मुझे भी याद आ रही थी, अभी मैं लिख रही थी ना तो पेन का इंक ख़त्म हो गया था, तो मुझे याद आ रहा है जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हम वो इंक पेन का इस्तेमाल करते थे, है ना, याद होगा आपको, हम उसमें इंक भी डाला करते थे, हाथ भी नीले नीले हो जाते थे, कॉपी भी नीली हो जाती थी, बैग में भी कई बार पेन लीक हो जाता था, तो कई बार होता था कि काम काम नहीं करा होता था स्कूल का, बारिश वारी तो हमारी कॉपी भीग जाती थी, फिर अगले दिन हमारा बहाना होता था काम नहीं करें हम, क्योंकि कॉपी भीग गई थी या काम जो था ना उड़ गया क्योंकि इंक पेन था। तो बड़े अच्छे अच्छे से हमारे जो मज़े हमने करे हैं ना, तो वो तो है ही भी। तो चलिए अब यहाँ पे मैसेज ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, जी हाँ प्रेमतन जी का मैसेज के लिए तारीफ लिखी है, जी हाँ, और ये किसने लिखा है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपको, अलग अलग जगह से इतने लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम इतना उम्दा हो रहा है, गीत इतने खूबसूरत हैं, और किसी भी गीत में प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। नाम तो आपका कितनी बार ले चुकी हूँ मैं जी, और इसके अलावा मौसम का क्या है, मेरा भाई यहाँ तो आते जाते रहेंगे, ज़िंदगी का जो मज़ा दोबारा इस संसार में नहीं होंगे, जैसे कि तुम नहीं हो और तुम्हारी बहुत याद आती है, इनको किसी की बहुत याद आती है, उन्होंने नाम लिखा है पर मैं वो यहाँ पे नहीं ले रही हूँ ना। और अगला मैसेज प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और इरशाद अहमद शाह बेगम, शाह जहाँ बेगम और मरियम जैनब ये मैसेज लिख रहे हैं, और मैसेज ज़रूर शामिल कर लेना, बहुत मेहरबानी होगी, और मुझे लगता है कि अब आपको भी खुशी हो गई होगी कि आपका मैसेज ले लिया है। इसके अलावा नरेंद्र का भी मैसेज आ गया है, थैंक यू के लिए कि आपने इतना बड़ा मैसेज मेरा पढ़ दिया, इतना लंबा मैसेज था, क्या करूं कह रहे, दिल के उद्गार निकल गए। और इसके अलावा अगला मैसेज आ गया है हमें, बारिश में स्कूल से भीगते हुए आना याद आता है, बारिश में भीगना मुझे बहुत प्यारा लगता है, डॉली का ये इशू है, शो बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी। इसके अलावा मेरे पास ये मैसेज किसका आ गया है, गुड इवनिंग वेलकम टू द शो, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, बरसात के गीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं हमें, तो बारिश का मौसम में बचपन के वो ज़माना याद आता है जब हम बैठे हुए पानी में कागज़ की कश्ती बनाकर चलाया करते थे, नाइस प्रेजेंटेशन। ये मैसेज है हमारे पास किशन वंजनी नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी से। और अगला मैसेज भी हमारे पास है, ये तो कुछ इन्होंने क्या भेजा है, और ये लिख रहे हैं कि सत श्री अकाल जी, मेरे बचपन की बात, जब हम हमेशा रमेश नगर रहते थे तब ये बरसात के दिन थे, अरे बरसात के दिन तो अभी भी है, आप कहीं भी रहो तब रोड और नाले का लेवल बराबर हो जाता था, तब मुझे पता ही नहीं लगा कि वो रोड नहीं है नाली है, मैं उस पानी में पानी में बह रहे थे, और तभी मेरे पड़ोसी ने मुझे देख लिया और मैं बच गया, प्रदीप सलूजा जनकपुरी से, और ये कह रहे हैं कि मेरा मैसेज भी कहीं बारिश के पानी में बह तो नहीं गया, नहीं बहा जी पानी में नहीं बहा है आपका, हमने मैसेज रोक लिया आपका, और बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतनी बारिश कब हुई कि आप बह गए थे पानी में, ये वाला नहीं समझ में आ रहा मुझे लेकिन चले ये वाला गाना तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, जब पुरानी बातें हो रही है, बचपन की बातें हो रही हैं और ये वाला गाना नहीं चलेगा तो फिर कैसा मज़ा आएगा, चलना चाहिए ना। चलिए प्रोग्राम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।

लेकिन मुझे मैसेज तो उठाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और ये लिख रहे हैं बचपन में बारिश और स्कूल, इन सब के आपस में बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है, और आपकी संध्या और जीवन बहुत मंगलमय हो। थैंक यू सो मच अनीता एंड सिमरन और सुदर्शन मुखी।

और बिल्कुल आपके साथ हैं, रपटेंगे फिसलेंगे हम तो उठाएंगे भी, हमारे दोस्त हैं आप और आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, अब तो पीछे पड़ गए हैं आपके। पुरुषोत्तम कुमार आ गए हैं, आज मनोरंजन के सारे साधन हैं लेकिन जो मज़ा रेडियो सुनने में है ना वो कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला मैसेज हमारे पास है तो कंचन सोनिया बिहार से, मेरा मैसेज भी शामिल कर लो ना मैडम। कर लिया। और कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ कंचन, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बरसात हमारे हिसाब से सभी को पसंद आई है और बरसात का मौसम बहुत अच्छे से झूम के बारिश में मन की शांति मिलती है। ये थोड़ा सा लंबा मैसेज है कंचन, सॉरी अभी पूरा नहीं लेती हूँ, ठीक है। और अगला मैसेज हम ले लेते हैं, जौनपुर से आया है उत्तर प्रदेश से कुमारी चंदा चांदनी आकाश कुमार, इनके मम्मी पापा प्रोग्राम में हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इसका आनंद ले रहे हैं, हमारे गांव में बारिश हो रही है, हम भी एक गीत सुनना चाहते हैं, छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे। फिल्म का नाम भी इन्होंने बताया है, लेकिन छतरी ना खोल भीग जाने दे, ये तो मुझे लगता है फीलिंग्स आ गई हैं हमारी, लेकिन मेरे पास तो दूसरा ट्रैक है। कोई बात नहीं, अगली बार आपके लिए हम आपकी पसंद का चला देंगे, ठीक है। और अगला मैसेज हमारे पास किसका आ गया है, मिसेज धर्म भाटिया का रोहतक से, और ये लिख रहे हैं, ये जब मैं छोटी थी ना मुझे याद है कि हमारी रूफ से एक यानी कि मिट्टी हुआ करती थी और बारिश के दिनों में धूप निकलने के बाद खूब इन्हें आज के मशरूम कहते हैं। अरे क्या बात याद दिला दी है, सच्ची वो जो मशरूम के छोटे छोटे से आ जाते थे ना, हम उसे मशरूम कहते थे, वो छतरी से आ जाती थी। हाय कितनी अच्छी बात याद दिला दी आपने। और कविता चौहान चौरास टिहरी गढ़वाल देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ हैं, लगभग 23-24 साल पहले जनवरी फरवरी में कड़कड़ाती धंध, ऊपर से लगातार होती हुई बारिश, हाँ मज़ा आ जाता था, और घास लेने खेतों में जाते थे, और अभी दिल्ली में हूँ, यहाँ तो बरसात का मौसम है। कह रही हैं बरसात का मौसम बहुत बेकार होता है, ऐसे नहीं बोलते दिल्ली। ऐसे नहीं बोलते, बरसात का मौसम हर जगह बहुत बढ़िया होता है। चलिए अब मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगी मुझे लगता है, जल्दी से यहाँ पे किसी का नाम हम ले सकते हैं। 90s की बारिश की बात में हमारी सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं शैलजा फ्रॉम नीमराना से, ये मैसेज है शैलजा, राजेश शर्मा, बहुत सारे सारे मैसेजेस हमारे पास हैं लेकिन समय हमारे पास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 8 बजे मिलते हैं ना म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में, करेंगे धमाल कमाल, और तब तक अपना ध्यान रखिए, सुनते रहिए आपके सभी फेवरेट प्रोग्राम्स। सीमा लेती इजाजत, नमस्कार, बाय बाय।

0: Well, that's the lovely voice of Gabriella Kilmeade from 2008, the track Sweet About Me from the album Lessons to Be Learned. And before that, you heard Martin Garrix and Babe Rexha with In the Name of Love. And of course, you heard Linkin Park with the track Runaway and I Love a Rainy Night by Eddie Rabbit. Well, it's time for a short little break. We'll be right back.
1: FM Rainbow. FM Rainbow 102.6.
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
5: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
4: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
7: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
9: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
10: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: FM Rainbow 102.6.

और आइए सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सीरीज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डूरंड कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते और FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपकी दोस्त सीमा और प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का। और म्यूजिक मस्ती अब करनी है ना, मस्ती धमाल कमाल, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वैसे भी संडे की शाम होती है और मस्ती ना हो धमाल ना हो तो भाई कैसे चलेगा, है ना। तो बात तो करनी पड़ेगी और धमाल तो करना ही पड़ेगा। चले हमारा जो जादू है सरचा का बोले लगा है, है ना, अब तो ये यकीन हो चुका है। चलिए अब सुनते हैं, आपको सुनवाते हैं एक से बढ़कर एक नॉन स्टॉप म्यूजिक, और आपको क्या करना है इस जादू में खो जाना है।

और मेरे तो जो भी हो ना, चलना है वल्ला है, सब आप ही हैं हमारे। और प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और आपकी भी तो मैं ही हूँ, है ना। तो चलिए हाई हील्स के साथ एक बार मस्त झुमके लगाते हैं आपके अपने प्रोग्राम में।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हाय
1: हाय, कितने खूबसूरत से गीतों के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है और हल्के जमाने के बाद अब गल मीठी मीठी हो जाए। चलिए गल मीठी मीठी करते हैं और तुलसी राणा के साथ। ये बहुत ही प्यारा गाना।

0: मेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह 7

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का, और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, जी हाँ, म्यूजिक मस्ती का। और अब एक और बहुत ही प्यारी सी गीत के साथ।

और कहते हैं ना कि वक्त का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, कब 9 बजने को आ गए हैं। और इसी के साथ मैं सीमा लूँगी इजाज़त, बहुत जल्द मुलाकात करूँगी आपके साथ, बात करूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, ताहिर आपके साथ रहेंगे। तब तक यूँ ही सुनते रहिए आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, आपके अपने मनपसंद चैनल पर, जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो। सीमा लेती है इजाज़त, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
1: बल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।

0: और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, द आकाशवाणी पॉडकास्ट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं और आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम तो आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो जैसे ही आया ना स्टूडियो में, तो इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, पूरी ऑडियंस में भी उत्साह है। एंड इंडियन आइडल सीजन 16 के सेकंड रनर अप मनराज वीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं पाजी आप?
1: आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया, चंगा एकदम। आप आ गए ना, मतलब बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है और बातचीत करने के लिए जब आप आ गए हो। कहते हैं कि सपना एक देखो ना, मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो बचपन के सपने जब आप साकार करने के लिए निकलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत दिल्ली से हुई, लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद म्यूजिक कैसे आया लाइफ में?
1: शुरुआत मेरी एक्चुअली मेरी फैमिली में म्यूजिक वाला कोई नहीं था स्टार्टिंग में, सिवाय मेरे चाचा के। अच्छा। तो जैसे कि मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि मेरे चाचा की वजह से मैं म्यूजिक लाइन में आया हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो लाइक वो भी जागरण होते हैं, माता की चौकी, इन सब में ना पहले ढोलक बजाते थे वो।
0: अच्छा।
1: और तो वो ढोलक घर में पड़ी रहती थी, ठीक है, ढोलक तबला ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी घर में होते थे, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको देख के ये थोड़ी सी अंदर रहता था कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे बजाते हैं, कैसे बजता है। और जागरण में जाता था तो बहुत सारे सिंगर्स आके गाते हैं।
0: किस एज की बात कर रहे हैं आप? वैसे ये, तो अभी भी बहुत यंग है आप।
1: दिस इज ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सात आठ साल के आसपास की बात है।
0: क्या बात है,
1: मतलब उस टाइम पे ये था कि देखना सिंगर्स को गाते हुए, देखना माइक पकड़ के गा रहे हैं, कैसा माता की बेटे गा रहे हैं और भी मतलब इतना सुरीला गा रहे हैं, मगर ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा, और इतना अच्छा कैसे लग रहा है सुनने में, इतने सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वहीं से थोड़ा सा बस ये कीड़ा म्यूजिक का धीरे धीरे जागा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते गए, जैसे स्कूल में हाउसेज होते हैं ना, जैसे सैटरडे संडे को हाउसेज
0: एक्टिविटी होती है,
1: एक्टिविटीज होती है, हाँ, किसी का रेड हाउस होता है, किसी का येलो ग्रीन, तो ऐसे हाउसेज में कंपटीशन होते थे, तो वहीं पे सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, स्कूल मतलब स्कूल में होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी, तो वहाँ पे कंपटीशन से पार्ट लेना, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर मैं प्राइजेस जीत रहा हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा है आवाज़ में। तो वहीं से बस थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया और म्यूज़िक सीखता गया और अच्छे अच्छे गाने गाता गया, तो धीरे धीरे घर में भी पता लगा कि यार ये तो गाता है, इसकी तो आवाज़ में कुछ तो है। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो बेसिक होते हैं, जो लेसन्स होते हैं ना सिंगिंग के, वो देना उन्होंने मुझे स्टार्ट किया वहाँ से। तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट आता गया। फिर वहाँ से कॉलेज,
0: ओके,
1: मतलब जब मैंने 12th पास आउट की, उसके बाद मैं गया DU में, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मतलब उससे पहले मेरे पास दो तीन ऑप्शन और थे, जैसे NDA के एग्ज़ाम दिए मैंने, एंड मतलब बहुत सारे, मतलब कि कभी मैं ऑफिसर बन जाऊं, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊं, कभी मेरा एडमिशन हो रहा था वहाँ पे चंडीगढ़ एस्ट्रोनॉटिकल्स कॉलेज में, बीच में सोच लिया मैं पायलट बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सोचा। फिर उसके बाद बेसिकली अंदर से समझ में आया कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक ही पसंद है और अगर मुझे कुछ करना है तो म्यूज़िक में ही करना है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं यार पापा, मैं जा रहा हूँ DU में। तो DU में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती है, आपको पता ही है, जो मतलब काफ़ी सारे मतलब एक्टिंग सोसाइटी होती है, म्यूजिक सोसाइटी होती है। तो एडमिशन लेते के नेक्स्ट, मतलब एडमिशन आज फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन लिया, कल ही मुझे पता लगा कल ऑडिशन चल रहे हैं रिवर्ब सोसाइटी के, जो हमारी म्यूजिक सोसाइटी है कॉलेज में। तो मैं खुश, मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया, वहाँ जाके ऑडिशन दिया, मतलब उन सब के अंदर के ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया और मैं खुश, मैं कहा मेरा तो एडमिशन आज हो गया, मैं म्यूजिक सोसाइटी में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया। तो वहीं से फिर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट हुए। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको भी बहुत नॉलेज होती है म्यूजिक की, तो फिर वहाँ से उनसे भी सीखना मैंने चालू कर दिया। तो मतलब ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जिससे मैंने कभी सीखा लाइफ में, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे चाचा हो गए या जितने भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हो गए, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो गुरु, मतलब मैं जिनसे भी आज तक मतलब मैं मिला हूँ म्यूजिकली, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मतलब उनको पता भी नहीं हो, मतलब उनको आइडिया भी नहीं होगा कि मैंने उनसे सीख लिया, बट मुझे पता है। फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: कुछ चीज़ें मुझे अगर आपकी अच्छी लगेंगी तो मैं आपसे ग्रैब कर लूँगा, आपको पता भी नहीं लगेगा।
0: नहीं देखो, मैंने कोशिश की है कि मैं आज थोड़ा सज धज के आऊं, लेकिन स्टाइलिस्ट जो है अगर बात करें या फिर स्टाइलिश किंग की बात करें तो आपको ज्यादा टाइटल सूट करता है।

0: अभी
1: इंडियन
0: तो
1: आइडल में
0: अभी
1: मिला
0: तो
1: है आपको ये
0: नॉर्मल
1: खिताब, है ना,
0: जी
1: रोमांटिक किंग भी कहा जाता है। एंड हम प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, हम कंपोजिशन की भी बात करते हैं, हम सिंगिंग की भी बात करते हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे लेकर आते हैं आप? और ये टर्न जो था, ये आई थिंक ये कोविड के टाइम में आया था।
0: ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते,
1: हाँ हाँ
0: मतलब हाँ होता है, क्योंकि देखो अंदर एक स्टार्टिंग से कीड़ा रहा है अंदर कि मुझे अपना म्यूजिक बनाना है, मेरे को इंडिपेंडेंटली म्यूजिक बनाना है, अपने गाने बनाने हैं, लाइक अपनी जो क्रिएशन है वो लोगों को सुनानी है। अब जो गाने ऑलरेडी जिन्होंने बनाए हैं वो तो बने ही हैं, वो तो हम गाते ही हैं, लोगों को मतलब ऑलरेडी पसंद है, बट जो एज ए म्यूजिक कंपोजर एक ना विजन होती है कि मैं चाहता हूँ कि यार इस टॉपिक पे ये गाना बनाऊँ क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है, अभी मेरा मन कर रहा तो मैं लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने गाने के फॉर्म में, ये मोटिवेट करना है, या मुझे इस तरीके का प्यार फील हो रहा है, क्या यही लोगों को होता है, चलो यार इसके ऊपर भी गाना बना के देखते हैं। मतलब ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी है क्रिएशन है, वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो मतलब म्यूज़िक मेरे लिए खाली गाना ही नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोग फील करते हैं, लाइक म्यूज़िक में हर इमोशन होता है, सैड होता है, रोमांटिक होता है, एनर्जी हो गई, डांस हो गया, एवरीथिंग, तो हर चीज़ फील होनी लोगों को ज़रूरी है, म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग, मतलब कहते हैं ना कि म्यूज़िक हील करता है, तो वो हील तभी करेगा जब जब वो आपकी फील पकड़ेगा अंदर की, है ना। तो मेरा बस यही रहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे अच्छे अच्छे और उनकी जो लाइफ में हुआ है वो सारे सिनेरियोज देख के मुझे डांस पे भी गाने बनाने हैं, मुझे सैड भी बनाने हैं, मतलब लोग फील कर पाए।
1: चलिए, आपने हीलिंग की बात कही है, एक बात कही जाती है कि मुश्किल रास्तों पर भी आसान यह सफर लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है। माता जी की
0: बिल्कुल
1: तबीयत अब कैसी है और उनका योगदान कितना रहा है? जब भी आपके लाइव शो में आती थी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी।
0: मॉम का मेरा थोड़ा ऐसा ही है, वो बहुत इमोशनल है, उनको बहुत दिक्कत भी है, जैसे उनको सांस की दिक्कत है, उनके लंग की जो लंग्स एक होता है ना, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की लंग कैपेसिटी होती है वो अगर 100% है तो उनकी वो 35-40% है, तो और ऊपर से पोल्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें, और कुछ भी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूल जाती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनके माइंड में ना बहुत कुछ चलता है, आप मतलब बिफोर आइडल उनके माइंड में ये चलता रहता था कि यार ये क्या सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली में से मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि लोग थोड़े थोड़े मतलब स्टेप बैक करते हैं कि नहीं यार तू ये काम मत कर, नहीं तू ऐसा ही कर, नहीं होगा इसमें कुछ तेरा, तो मतलब मुझे ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला नहीं मेरी फैमिली से कि यार बोले कि नहीं यार तू मतलब सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और सबसे बड़ा सपोर्टिव इंसान मेरी लाइफ में रहा है वो है मेरी माँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक ना बैक एंड पे चीज़ चल रही होती है ना मेरे, जो जो मेरी बैक के पीछे जो मुझे सपोर्ट हर टाइम जो मुझे दे रहा होता है वो मेरी मम्मी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ मेरे पापा को डाउट है तो वो मेरे से पूछेंगे नहीं, वो पहले ही डाउट उनका मम्मी ने क्लियर कर दिया कि नहीं ये करेगा उसमें ऐसे ऐसे करना, हो गया खत्म,
1: वो साथ है हमेशा।
0: मतलब मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। अगर मेरे दादा ने कुछ पूछा है कि यार मनराज के साथ ये, तो मेरे से पहले मम्मी आके बोल देंगी लो ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे कर ले खत्म,
1: वैसे
0: मतलब
1: माँ और
0: एक
1: फैमिली का जब जिक्र आता है तो हर कोई जो है काफी इमोशनल हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब माँ का जिक्र आए या माँ की तस्वीर सामने आए तो कोई गाना आपके जहन में आता है यार, माँ को लेकर जो डेडिकेट करना चाहे? आई एम श्योर के स्टूडियो में जितने लोग हैं या शो भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुनना चाहेंगे, कोई भी एक भाव।
0: ओके आते तो वैसे बहुत सारे हैं,
1: हाँ,
0: बट अभी कौन सा भाव सुना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
1: जो भी, मतलब प्यार से रोमांटिक किंग तो आपको कहा ही जाता है, लेकिन हाँ मतलब जो आपके बहुत करीब है।
0: अगर ऐसा अगर कुछ वो करना है, रिलेट करना है, तो एक गाना है मेरे पास, मेरा फेवरेट भी है,
1: जी
0: तो वैसे तो वो गाना मतलब अपने लवर के लिए गाते हैं, बट उस गाने का मीनिंग मेरे लिए आप ये कह सकते हो कि मेरी माँ है, तो मैं सुनाता हूँ।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, क्या कमाल की आवाज है आपकी. एंड
1: थैंक यू.
0: कमाल तो आप करके भी आए इंडियन आइडल में, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या होता है, क्या मस्ती होती है, क्या मजाक होते हैं, एंड प्रेशर होता है?
1: बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. वो टीवी पे देखने में लगता नहीं हो, मतलब लगता नहीं है लोगों को, बट बैक स्टेज की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो बहुत प्रेशर होता है भाई. देखो, मतलब मुझे पता लगा है कि अभी 1 घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस है, तो वो एंग्जाइटी और वो जो नर्वसनेस ना, वो 1 घंटे पहले आनी स्टार्ट हो जाती है. उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ क्यों. क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस टाइमिंग होती है 4 से 5 मिनट, हमें 5 मिनट में अपना बेस्ट देना है वहाँ पर स्टेज पर. अब आपके पीछे इतने सारे लाइट्स वाले सब कुछ सेटअप हो रहा है, 1 घंटे तक साउंड चेक चल रहा है. अब साउंड चेक होने के बाद आपके पास 5 मिनट है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा. ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि अच्छा ही हो, बुरा हो गया तो फिर जजेस के स्कोर नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो यही रहता था कि यार गलती ना हो जाए, यार मैं क्या, मुझे लिरिक्स याद हैं, मैं मतलब रट के देखना. कभी कभार तो हाथ पे लिख लेते थे कुछ, एक आधा वर्ड होता था ना जो हमेशा अटकता था गाने.
0: आजकल वो कैमरे में पता लग जाता, पर
1: नहीं पता लगता. मतलब ये, मतलब ये ना सिंगर ही समझ सकता है. जैसे गानों में 4-4 अंतरे हम गा रहे हैं. अब मैं यहाँ पे अगर कोई, यहाँ बैठ के कोई गाना गा रहा हूँ, कुछ एक आधा वर्ड ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, अभी कोई जज नहीं कर रहा है बैठ के. लेकिन अभी वहां पे क्या होता है कि पहला अंतर सही गा दिया, दूसरा सही गा दिया, तीसरा सही गा दिया, जब चौथे की बारी आती है तो भूल जाते हैं कि लिरिक्स है क्या. तो उसके लिए कुछ ना एक, मतलब कुछ एक मार्क लगा के मैंने 1-2 बार किया ऐसा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा कोई वर्ड मुझे याद नहीं रहता, या अंतरे का पहला वर्ड कभी कभार क्या होता है ना, याद आता है तो पूरा अंतरा याद आ जाता है. तो जो जो अंतरा मुझे याद नहीं रहता था ना, उसका पहला वर्ड मैंने लिखा, हाँ अभी ये अगला ये है, ठीक है, याद आ गया वर्ड देखते पूरा अंतरा. तो ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि देख के तो नहीं गा सकते आपको ना, आपको टेलीप्रॉम्प्टर मिलेगा ना कुछ मिलेगा.
0: चलो, हाथ पे लिखा है कि आपने बात कही, आपका टैटू भी काफी अच्छा लग रहा है.
1: थैंक यू.
0: ये आपने लेटेस्ट करवाया अभी?
1: ये हाँ, मैंने अभी टैटू लेटेस्ट करवाया, कल ही करवा के आया हूँ.
0: अच्छा, क्या लिखा हुआ है इस पर?
1: इस पर मैंने लिखा है वन लव, दिस इज वन लव.
0: और कुछ नीचे डेट ऑफ बर्थ भी है आई गेस कुछ.
1: या वन लव, और उसके नीचे मेरी मम्मी का सन ऑफ बर्थ है रोमन नंबर्स में. एक मेरे टैटू यहाँ पे शोल्डर पे है जिसमें मेरे फादर का है सन ऑफ बर्थ, और ये इसमें मेरी मम्मी का.
0: क्या बात है, तो उनको दिखा है? माता जी का क्या कहना था?
1: देखो, पहले तो उनको टैटू से बहुत प्रॉब्लम थी.
0: हर पेरेंट्स को होती है कहीं ना कहीं.
1: होती है. तो जब उन्हें पता लगा, अच्छा मेरी सन ऑफ बर्थ लिखा ये, फिर ठीक है, बढ़िया है. तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र है.
0: क्या बात है. कहते हैं ना, इशक होता है हीरे अदेवर्दा, रब तो छुपाई दावे साजना. द ग्रेट लेजेंड सतेंद्र सरताज
1: जी,
0: उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला आपको
1: जी,
0: कैसी फीलिंग थी? आपने कैसे, मतलब क्या भाव थे? नर्वसनेस उस दौरान थी एक लेजेंड के साथ परफॉर्म करना?
1: नर्वसनेस तो नहीं बोलूंगा मैं, बट उस टाइम मैं बहुत ब्लेस था. एक्चुअली एक हमारा एपिसोड था रीयूनियन, जिसकी आप बात कर रहे हो
0: जी,
1: रीयूनियन एपिसोड था, उसमें आए थे वो. और क्या होता ना कि जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सिख कम्युनिटी, एंड मतलब पंजाबियों के लिए, नॉट ओनली सिख, पूरे पंजाब के लिए, मतलब देश भर में और जितने, मतलब पूरी दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं सबके लिए सतेंद्र सरताज बहुत बड़ा नाम है, है ना. क्योंकि उनकी जो गायकी है वो खाली गायकी नहीं है, उनकी उनकी उनकी गायकी में भी लेसन्स हैं. वो जो लिखते हैं, वो जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी गायकी में लेसन्स हैं. तो बहुत पहले से, लाइक जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक 17-18 साल का था, तब से उनका जो, मतलब गाने उडारियाँ हो गया, सज्जन राधी जिसके आप बापी, जो अभी आप गाना गा रहे थे, तो सबके गाने के लिरिक्स आप देखोगे ना, अगर आप सोचने समझने जाओगे कि इन्होंने बोला क्या है, मतलब गाने से ज़्यादा लिरिक्स आपके दिल में बैठ जाएंगे, फिर आप और प्यार करोगे उनसे. तो वही ब्लेसिंग थी, वही एक ऐसा बोल सकते हो कि हाथ था सर पे ऊपर वाले का, कि उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला. और बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी.
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: बैक ऑफ द स्टेज भी काफ़ी बातें हुई होगी उनसे.
1: बैक ऑफ द स्टेज यही बातें होती हैं कि, मतलब बैक ऑफ द स्टेज मोस्टली क्या होता है कि टीवी पे नहीं दिखाते कि जजेस हमें आके बता रहे हैं या आपको कुछ सिखा रहे हैं. तो बैक स्टेज में यही होता है कि मेरी परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल खत्म हुई, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं जा सकता हूँ जजेस के पास भी, यार मैंने ये चीज़ ऐसे करी,
0: फीडबैक के लिए.
1: जैसे गाने के बीच में कोई भी, जैसे इम्प्रॉम्प्टू पार्ट डाला, जैसे वो भी कह रहे थे कि तबले का आप डालते हो बीच में, अच्छा लगता है ये सब.
0: तो फ्यूजन और वेरिएशन,
1: तो मुझे भी कहीं ना कहीं, मतलब वो डर रहता था. मतलब जो हमारे मेंटर हैं आनंद सर, जो इंडियन आइडल जो सबकी तैयारी करवाते हैं बैक स्टेज, तो मतलब उनसे सबसे पहले तो उनसे पूछना कि सर इसमें कुछ ऐसा करते हैं, तो वो भी आइडियाज लगा के हम कुछ आपस में वो उसको बनाते थे. तो मेरी फिर

0: ये सब करने के बाद टेंशन ये कि क्या ये जजेस को पसंद आएगा। देखो ऑडियंस का तो बाद में है, लेकिन पहले जो बैठे हैं उनको पसंद आना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस एक दो बार ख़त्म होने के बाद मैं जाता था कि मैं सर ये पार्ट कैसा लगा, सर ये मैम ये मतलब श्रेया मैम, विशाल सर, बादशाह बाजी, तो उनसे पूछते थे कि ये आपको पार्ट कैसा लगा। कि हाँ यार मज़ा आ गया। कभी कभार तो परफॉर्मेंस के दौरान ही खड़े होते कि भाई यार क्या कर दिया, मज़ा आ गया। बैक स्टेज यही सारी चीज़ें चलती है, और सतेंद्र पाजी के साथ भी सेम यही चीज़। उन्होंने मुझे उस एपिसोड में ब्रॉच, जो पगड़ी ब्रॉच वो डालते हैं,
1: जी,
0: वो भी उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे।
1: वो हर परफॉर्मेंस में लेके आते हैं
0: हाँ
1: वो।
0: वो डालते ही हैं,
1: ओ
0: उनका जो भी गेटअप रहता है शोज़ का वो डालते हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई इंडस्ट्री के बारे में। एक तो उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा ऐसा है कि हर कोई पिघल जाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई। तो उनसे ये भी बहुत सीखने को मिला कि सबके साथ नरमी से पेश आओ,
1: डाउन टू अर्थ
0: डाउन
1: बिहेवियर
0: टू अर्थ
1: काफी
0: रहो।
1: उनका।
0: यस, तो ये सब चीज़ बैक स्टेज ये सब चलता है।
1: क्या बात है। कोई ऐसे लम्हे, कोई फनी किस्सा जो मतलब किसी के साथ आपने शेयर ना किया हो, यहां पर करना चाहे, चलते लाइव शो में हुआ हो या फिर जजेस के साथ।
0: फनी किस्सा ये है कि एक मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान के का। आई थिंक वो एलिमिनेशन एपिसोड था, टॉप 10 का एलिमिनेशन एपिसोड था वो। उसमें मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान। तो क्या हुआ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया स्टेज पे, और वो ना स्टेज पे पीछे से जो आइस होती है ना, ड्राई आइस, जो आप देखते हो कि धुआं धुआं आता है, वो होती है ड्राई आइस, तो वो आ रही थी स्टेज पे पीछे से। तो मैं वहाँ पे कूद कूद के गाना गा रहा हूँ मस्त, बिल्कुल रॉक स्टार बन के। साथ में गिटार पे शांतनु भाई खड़े हैं, वो अपना गिटार बजा रहे हैं। तो क्या हो गया, अंतरा खत्म हुआ। अंतरे के बाद ना एक पोर्शन आता है जहाँ पे बहुत हाई कुछ गाना होता है, तो उसको गाने के लिए मैं एकदम ऐसे पीछे हुआ तो स्टेज पर गिर गया। वो टी फिंग
1: चलते
0: दिखा।
1: शो में।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: तो वो बड़ा फनी था। और फटाफट गिर के मैं उठ के दोबारा गाने लग गया, ना था समझे ना ये दिल मेरा। तो फिर सब देख रहे हैं। हाँ यार, तो मतलब ये सब चीज़ें फनी होती रहती है बीच बीच में, ये टीवी पे आया नहीं।
1: वेल, उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते हैं, लेकिन मौसम कितना मतलब मिजाज चेंज करता है। दिल्ली की बात कर लो आप, दिल्ली से शुरुआत आपकी हुई है एंड शुरुआती दौर में आप यूट्यूबर भी रहे हैं आई गेस। यूट्यूब से आपने शुरुआत की थी।
0: यूट्यूब नहीं, मैं मतलब वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ, बट हमारा हम जैसे मार्विक बैठा, देखो आप, मतलब हम दोनों सेम ही क्लास में थे, और लोगों को पता है। अभी फॉर एग्जांपल आइडल में भी मैंने एक गाना किया था, बरसात। बरसात गाना आपने देखा होगा, जिस मतलब
1: जी
0: आइडल
1: जी
0: में पहली बार हुआ था कि किसने अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
1: ऐसा बहुत कम
0: थैंकफुल,
1: होता है वैसे।
0: ऐसा ऐसा बहुत कम, ऐसा होता ही नहीं है कि आइडल में कोई भी कंटेस्टेंट अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म कर रहा है। तो वो मौका मुझे मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल था उस टाइम पे। और तो फिर वो गाना मार्विक ने ही लिखा था, मैंने गाया। तो हम दोनों स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं साथ में, और तो गाने बनाते हैं हम, गाने बना के सेल करते हैं। हमें ऑलरेडी, हम कॉलेज में मिले थे तो कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था हमने। तो वहीं से फिर हमने सोचा कि अपने गाने बना के यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो हमारा चैनल भी है द ट्विस्टी ट्यून्स नाम से, तो वहीं पर हमारे गाने भी आते हैं। तो हम मतलब शुरुआत सब, मतलब हर किसी म्यूजिशियन की शुरुआत ऐसे ही होती है, कहीं तो इंस्टा पे डालेगा, साउंड क्लाउड पे या यूट्यूब पे। तो कुछ हमने भी ऐसी करी शुरुआत अपनी।
1: कॉमेडी किंग भी आपसे मिले थे, द कपिल शर्मा,
0: हाँ,
1: एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आपको कही
0: बहुत
1: थी
0: ही
1: कि
0: अच्छा एपिसोड
1: पाजी,
0: था वो।
1: हाँ कि पाजी इतनी सारी चीजें आप कैसे करते हो, कंपोजिशन भी खुद कर लेते हो, गायकी तो कर ही रहे हो एंड प्रोडक्शन में भी हो, ये मल्टीटास्किंग कैसे हो पाती है।
0: मल्टीटास्किंग ऐसे हो पाते हैं क्योंकि दिल बोलता है करने को। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि कोई चार्ट मुझे फॉलो करना है, ये करना है, बस वो दिल से आता है। मतलब मेरे अंदर एक ये है, मतलब जो एक आग रहती है ना अंदर की, मुझे ये काम करना है तो करना है। अब मैंने सोचा है कि अगर मुझे म्यूजिक बनाना है तो वो मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। अगर मैं उस चीज़ में नहीं हाथ बढ़ाऊँगा तो फिर मतलब उसका फ़ायदा ही नहीं है वो। मैं उस चीज़ को कैसे पूरा करूँगा, कैसे गाने बनाऊँगा? तो गाने बनाना है, म्यूज़िक प्रोडक्शन करना। अब गाने बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है, म्यूज़िक कंपोजिशन क्या होती है, म्यूज़िक अरेंजमेंट्स क्या होती है, गाने को किस तरीके से गाना है, कितने स्टाइल में गाना है। तो जब मुझे ये पता है कि गाना बनाना है, तो फिर मेरे अंदर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई कि गाने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी है, और अगर मुझे कोई चीज़ उनमें से नहीं आती तो वो मुझे सीखना है,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: फिर
1: है।
0: वो ऑटोमेटिकली आ जाता अंदर से।
1: हाँ कपिल शर्मा एपिसोड के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। हाँ
0: वो मैं एपिसोड की बात कर रहा था, एपिसोड बहुत अच्छा था वो, बहुत ही एनर्जेटिक एपिसोड था। उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी आप सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है उनकी एनर्जी कैसी है। तो जब मतलब उससे जब वो आए, उससे हाफ डे शूटिंग का काफ़ी शांत, मैं बोलूँ तो बोरिंग चल रहा था। और जैसे ही वो आए, जो हाफ एपिसोड में वो आए, तो मतलब एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया, फिर हमारा गाने का एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया, फिर अपने आप को प्रेजेंट करने का। एक होता है ना पंजाबी जब आ जाता है तो फिर सबको पता ही एनर्जी का क्या होता है।
1: लाइव में तो उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, लेकिन

0: लाइव के बगैर अगर हम बात करें तो उनसे बात हुई?
1: नहीं, उनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, मतलब ऑन स्टेज ही बात होती है। जैसे उनके साथ मैंने छल्ला गाना गाया था, तो जब साउंड चेक हो रहा होता है तो हमारे पास आधा पौना घंटा होता है साउंड चेक करने के लिए, तो वही दोनों खड़े हुए थे स्टेज पे, हम लोग बात कर रहे थे बस उतना।
0: बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे फेवरेट मेरा पता है कौन सा था, जब आप गा रहे थे, आपने सिंगिंग शुरू की थी, हेमा मालिनी एकदम खड़ी हो गई थी, वो एकदम उनके लिए शॉकिंग था, और मतलब एक अलग ही गूज़बम्प ऑडियंस को भी आ गए थे। वो क्या था, वो शेयर करना चाहेंगे, वो कैसी फीलिंग थी?
1: बहुत नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार तो मैं अपनी परफॉर्मेंसेस, मैं जब भी गा रहा होता हूँ ना, आप मेरी मोस्टली वीडियोस देखोगे, मेरी आंख बंद रहती है, मेरा ध्यान सिर्फ गायकी पे होता है कि मेरे सुर ठीक लग जाएं, मैं लिरिक सही गा दूं, मेरा ध्यान ऐसे ही होता है। तो बाद में लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो ना ऐसे ही, वो यार मैम तो खड़े हो गए थे, या मैम बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, श्रेया मैम खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं आधे गाने में, का अच्छा, क्योंकि मेरी तो आंख बंद रहती है, मैं गाने पे ध्यान रहता है मेरा बस, बाद में फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया था, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अच्छे से गाऊं, और वो तो बाद में टेलीकास्ट में देखता हूँ, अच्छा ये रिएक्शन था क्या, ओ नाइस, मुझे पता होता तो मैं स्टेज पे थोड़ा ओवर रिएक्ट
0: ये तो होता है ना, मतलब
1: करता।
0: कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसने लाइफ एकदम बदल दी हो, जजेस ने आप पर्सनली आके आपसे बात की हो और आपको लगा ये वाली जो राय है ना, ये मेरे साथ रहेगी हमेशा।
1: तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जजेस स्पेशली जब खड़े होते हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। आई थिंक मतलब श्रेया मैम से, विशाल डडलानी सर से, बादशाह बाजी, ये तीनों खड़े हो गए, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपके म्यूज़िक को जब कोई पहचान लेता है, तो लास्ट फिनाले एपिसोड में बादशाह बाजी ने बोला कि यार ये बंदा, जैसे हम लोग मतलब वो अपने आप को भी और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, करण औजला, दिलजीत दोसांझ, इन सबको पॉइंट आउट मतलब बोल रहे थे कि जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े अरेनाज फिल करे हैं, शोज होते हैं हमारे सोल्ड आउट, तो तुम भी करोगे, उन्होंने मुझे बोला। तो क्या होता है जब इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको ये चीज़ बोल देता है ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस, मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार शायद, मतलब जैसे इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना लिया ना, तो इसका मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि यार आज दिलजीत दोसांझ पाजी ने या करण औजला पाजी ने ये सब फिल किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो। मतलब आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि वैलिडेशन चाहिए होती थी कि यार कोई भी हमें देखे, कोई बड़ा जो स्टार आया है उस, मतलब उसकी नज़रों में आ जाए, है ना, मतलब यही सपना रहता था कि यार क्या इन्हें पता भी है हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्या बादशाह बाजी को पता होगा, क्या दिलजीत को पता है कि भाई मैं मतलब मनराज कौन है, हमें तो पता है दिलजीत दोसांझ कौन है, ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: पर क्या उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अब जब ऐसा फील होता है ना कि नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मनराज वीर कौन है, तो एक वो सेटिस्फेक्शन और एक वो कॉन्फिडेंस ना वो अंदर आ जाता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली हैं मुझे, विशाल सर ने भी बोला कि यार यू आर अ रॉक स्टार, ठीक है, आपकी बहुत यूनिक आवाज़ है, ठीक है। श्रेया मैम ने बोला कि यार इंडियन आइडल में कि आप इस सीजन के इंडियन आइडल की खोज हो। तो इतनी इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो बस एक ये है कि अंदर और काम करने की इच्छा आ जाती है,
0: वो जब कॉम्प्लीमेंट
1: कभी
0: मिला आपको बादशाह पाजी से, वो वाला गाना एक बार हो जाए, कम ऑन, हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए, लिसनर्स के लिए हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो गाने से पहले मिला था, बट मैं गाना गा देता हूँ। एक्चुअली वो वही गाना था जो मैंने ऑडिशन में गाया, फिर तारा हूँ दर बदर। तो क्या था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था इंडियन आइडल पे। लास्ट में क्या होता है कि जो टॉप 3 थे हम सबको अपने अपने जर्नी के पहले पहले सॉन्ग परफॉर्म करने थे, तो मैंने भी यही परफॉर्म किया था, तो उन्होंने इससे पहले ये बात बोली थी, और तो मैं ये गाना गाता हूँ अभी फिर।

0: क्या बात है निशांत, तो
1: थैंक
0: आप
1: यू
0: छोड़ ही
1: सो
0: रहे
1: मच।
0: हैं हर किसी के दिल में। आप तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? क्या कोई इंटरनेशनल सिंगर जिसने बहुत इंस्पायर किया हो आपको लाइफ में?
1: इंटरनेशनल, पहले तो मैं इंडियन इंडियन की बात करता हूँ।
0: जी
1: इंडियन में जो सबसे पहली मेरी जो इंस्पिरेशन है वो तो वही है, दिलजीत दोसांझ। सबसे पहली इंस्पिरेशन की मतलब

0: मतलब एक होता है ना कि देखो मैं भी सीखूं, मतलब सीख छोड़ो, मैं भी पंजाबी हूँ, वो भी पंजाबी हैं, और पूरे पंजाब को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, सर पे पगड़ी है, मेरी भी सर पे पगड़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ कि यार, और जो वो भी जिस टाइप का म्यूज़िक कर रहे हैं, सेम टाइप का म्यूज़िक मैं ही कर रहा हूँ, तो मतलब एक होता है कि यार हाँ, अगर ये इंसान यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है तो सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं, तो मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए अभी तक वही है। और अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो दो वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो ब्रूनो
1: ओके
0: मार्स और एक है वीकेंड। इन दोनों का
1: ये
0: म्यूजिक
1: तो
0: मैं
1: एकदम
0: बहुत
1: दोनों ही
0: सुनता हूँ।
1: वाइब अलग हो गई है ना, मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल ब्रूनो।
1: फ्यूजन और पार्टीज वाली वाइब आपको
0: हाँ
1: ज्यादा
0: हाँ
1: पसंद है।
0: हाँ यस यस
1: दिलजीत पाजी की आपने बात की है, गबरू तो बहरे ने भी मीठा बोल दा, नीतू तो फिर जट दा प्यार वली, एक गाना, एक
0: क्या
1: दो, कुछ हो जाए उनके
0: बात
1: लिए भी कुछ हो जाए ना।
0: उनके लिए।
1: हाँ
0: डायमंडा दे नाल तोड़ दा जिन्ना तेरा पार गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरी है, गल विच पाया 40 लाख बोलदा, डॉलर च 80 क 1000 गोरी है, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, एकदम पार्टी वाली
0: नहीं
1: वाइब जो है बन गई है स्टूडियो में भी, बहुत ही कमाल। वैसे कहते हैं कि मतलब अगर आप पंजाबियों से बात कर रहे हैं ना खासकर, तो फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसी तरह दुखायो
0: सही
1: ना,
0: बात है।
1: तो खाने
0: एग्जैक्टली
1: पीने के शौकीन है, मतलब आपको दिल्ली का फूड पसंद है?
0: दिल्ली का बहुत
1: हाँ,
0: ज्यादा पसंद है। मैं
1: परहेज नहीं
0: एक
1: करते हम लोग
0: नहीं
1: गले के लिए।
0: मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता, हालांकि बोलते हैं लोग परहेज करो बट मैं बिल्कुल नहीं करता। उसका रीजन ये है कि यार एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है, अच्छा खाओगे तो अच्छा गाओगे बस। और ये फिलॉसफी मैंने सीखी है मेरे मेंटर, इंडियन आइडल के जो मेंटर है आनंद सर, उनसे।
1: वैसे कहते हैं ना, आवाज
0: अच्छा
1: की
0: खाओ।
1: दुनिया में अगर आप हैं तो ना चाहिए
0: हाँ
1: या
0: मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो चीज़ अच्छी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम भी नहीं खाते, कुछ सिंगर से बोलते हैं आइसक्रीम नहीं खाएंगे, मैं खा लेता हूँ। मुझे
1: अच्छा,
0: हाँ मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं
1: परफॉर्मेंस
0: पड़ता।
1: से पहले या एक रात पहले
0: नहीं, परफॉर्मेंस से पहले तो ऑब्वियसली नहीं यार, मतलब आधे घंटे
1: सेलिब्रेशन के लिए?
0: परफॉर्मेंस से आधे घंटे पहले से थोड़ा सा परहेज करो। मतलब ये है कि नॉर्मली आइसक्रीम भी खा लेता हूँ मैं, मतलब ऐसा ज़्यादा बहुत तेल वाला खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत तेल वाला जो बनाता है खाना, तो फिर तो वो तो सब मतलब सबके लिए ही बेकार है, वो आपके लिए भी बेकार है, मेरे लिए तो है ही है, गले के लिए। तो हाँ चिकन रोल हो गया, नॉन वेज तो कुछ भी दे दो, वेज भी दे दो,
1: आने दो,
0: सब
1: है ना।
0: कुछ आने दो।
1: वो किसी ने पूछा ना पंजाबियों से कि सवेरे की करोगे, सवेरे रोटी खावांगे, शाम नू रोटी खावांगे, पाजी रात नू, रात नू पाजी सोवांगे, सारे दिन रोटी थोड़ी ना खाई जानी। तो खाने पीने के शौकीन तो हैं ही, लेकिन एक बात और कर लेते हैं हम। आपने बोला कि पंजाबी म्यूजिक की हमने बात की है, आपको लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड पंजाबी म्यूजिक जो है वो कहर बरपा रहा?
0: आने आने वाले समय तो अभी भी कर रहा है, देखो
1: राइट। हाँ,
0: अभी भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि बहुत, मतलब नॉट ओनली पंजाबी, जो इंडी जो जो इंडिया का पॉप म्यूजिक है, मतलब देखो पंजाबी तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है,
1: राइट।
0: बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। और तो एक चीज़ तो श्योर है कि आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बहुत टॉप पे होने वाला है। लाइक पहले होता था ना कि चलो आज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आज जैसे बॉलीवुड में कोई गाना गाना होता है तो कोई देखता नहीं है कि यार कोई मुझे वो, मतलब ये कोई एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्टर है मुझे चांस दे दे, या मुझे ये चांस दे दे वो चांस दे दे, आज कोई देखता नहीं है। आज तो ये होता है कि सीधा अपने गाने बनाओ, अगर आप ले रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हमारे पास चैनल है हम रिलीज कर देते हैं।
1: आप क्या एंजॉय करते हैं, प्लेबैक
0: मैं ये
1: सिंगिंग के भी ऑफर बहुत मिल गए होंगे आपको, या आपको
0: ऑफर्स,
1: लगता है
0: हाँ
1: लाइव शोज ये ज्यादा चार्मिंग होते हैं?
0: नहीं, देखो सिंगर के लिए लाइव शोज भी इम्पोर्टेंट है, और सिंगर के लिए अपने गाने बनाना और अपने गाने रिलीज करना, अपना जो आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो शोज भी इम्पोर्टेंट है और अपने गाने बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको प्लेबैक करनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा सीन ये है कि अगर प्लेबैक मैं करूं, अगर कोई सामने से आके मुझे बोल रहा है कि यार मनराज ये करना है, मैं श्योर सर बिल्कुल करेंगे, और मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागूंगा कि लाइक मुझे प्लेबैक में मेरे को गाना चाहिए। मेरे सिर्फ दो ही डायरेक्टर बहुत फेवरेट हैं, मैंने बोला है पहले भी, एक है प्रीतम सर और एक है AR रहमान सर।
1: वाह,
0: तो अगर मैं दिल से फॉर एग्जांपल मुझे होगा ना कि यार मुझे प्लेबैक करना है इनके साथ, मतलब तो अगर थोड़ा सा वो आएगा ना कि यार प्लीज़ दे दो, तो वो इन दोनों के साथ ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज मेरा ये है कि अपने गाने मुझे करने हैं, कोई चांस देगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस, मतलब
1: लाइव
0: क्या है कि
1: शोज।
0: मेरे म्यूजिक को रिलीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरा आर्ट है वो मैं गाने बनाऊंगा, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं ही करता हूँ, ठीक है, म्यूजिक कंपोजिशन कर लेता हूँ, हमारी अपनी जो है कंपनी है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, किसी की चांस
1: जो
0: की थोड़ी
1: आए
0: है।
1: जो हो जाए वही बढ़िया। दिलजीत पाजी की हम बात कर रहे थे, अब वो मूवीज में भी आ गए हैं, आपको अगर मूवी का ऑफर आया तो यू विल गो फॉर इट?
0: मूवी का ऑफर, मूवी का नहीं पता, नहीं मूवी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है।
1: ओके
0: हालांकि मूवी के लिए गाने देने हैं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार।
1: चलिए, दो बड़े नाम आपने लिए, प्रीतम एंड श्री ए आर रहमान, उनका कोई फेवरेट गाना हो जाए।
0: ओ जरा से दिल में दे जगा तू, जरा सा अपना ले बना,

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे
0: ही
1: गाने हैं प्रीतम
0: खूबसूरत।
1: सर के यार, मतलब बता नहीं सकता मैं, सारे ही फेवरेट है मेरे तो।
0: ये ऑल टाइम है ना, और मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रखा है। दिल्ली का वेदर कभी भी आपके बॉस या गर्लफ्रेंड के मूड की
1: हाँ
0: तरह बदल सकता है, लेकिन करवट
1: सही बात है।
0: जरूरली है। मौसम इतना शानदार है, इस मौसम को देखते हुए कोई गाना, बरसात के मौसम को देखते हुए, सावन को देखते
1: अच्छा,
0: हुए कोई गाना।
1: बरसात को देखते हुए देखो, मेरा अपना ओरिजिनल गाना है तो मैं दूसरा क्यों कहूँ, है ना? ठीक
0: इसे कहते
1: है, या
0: प्रमोशन।
1: प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।

0: क्या बात है, क्या बात हो जाए, बात तो बन ही
1: तो
0: गई
1: इसमें
0: है।
1: कवि कह रहे हैं कि तू और मैं साथ चलें जब जाना बरसात हो जाए, और भीगे साथ अगर तो
0: लगता है
1: क्या
0: कवि
1: ही
0: ने
1: बर्बाद
0: मान,
1: हो
0: हाँ क्या बात है,
1: जाए।
0: कवि ने सुन ली है हमारे मन की बात भी। वेल, मन की बात अगर हम करें, आपके दिल में बहुत कुछ होगा, आई एम श्योर। आपने जब शुरुआत की थी तो आपको लग रहा था कि मतलब मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट बनूं, लेकिन उसके बाद इंडियन आइडल, इंडियन आइडल ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया? इंडियन आइडल क्या, किस स्तर पर आपको लेकर गया, और उसके बाद क्या चेंजेस आपने देखे लाइफ में?
1: इंडियन आइडल से देखो बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, मेरे म्यूज़िक जो मैं करियर की बात करूँ उसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए एक किक की ज़रूरत होती है, एक जो पुश मिलता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट आप उस स्पेस में आ जाओ कि आप काम कर सको आगे, नॉट कि आपको फेम मिल जाए या आप पैसा कमा लो, नहीं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कंपटीशन भी है इसमें, इंडस्ट्री में, ठीक है, म्यूज़िक लाइन में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से उठ के एक इंडस्ट्री के अंदर आना और इतना फेम मिल जाना, इंडस्ट्री के लोगों तक पहुँचना, वो जो काम है ना, वो काम इंडियन आइडल ने किया है मेरे लिए। बिकॉज आइडल से पहले लाइक हम यही देखते थे कि मतलब किसी को इंस्टा पे DM करना कि यार एक गाना रिलीज़ करना है, ये लेबल का कांटेक्ट चाहिए, फिर मतलब नंबर निकाल निकाल के कॉल करते थे कि ये लेबल चाहिए, ये चाहिए। अब क्या हो गया कि अब वो काम बहुत इजी है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि अब आप हाई भी भेजोगे ना तो सामने से अच्छा रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, बताओ, अवेलेबल। तो मतलब ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज आया है, तो ये इंडियन आइडल की वजह से ही है,
0: क्या बात है।
1: क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ना ये चीज़ जो फ्री फ्लोइंग जो चीज़ होती है, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, अब मुझे जहाँ रिलीज़ करना है, कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें एक मैं वो अकेला काम नहीं कर सकता। एक गाने को चलाने के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सिंगर तो हो गया, लिरिक्स राइटर हो गया, म्यूज़िक कंपोजर हो गया, फिर कंपनी हो गई, फिर उसकी प्रमोशनल कंपनीज हो गई, कहाँ प्रमोट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है एक। तो वो टीम वर्क, साथ में बंदे अपने साथ जोड़ना, ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल पे आके

0: अच्छा सर्कल बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तो ये जो काम किया है मेरे लिए ये इंडियन आइडल ने किया है। हालांकि अभी कहानी, मेरा मानना ये है कि अब यहाँ से स्टार्ट है। आइडल ने तो पुश दे दिया कि करो, मतलब आपको मैदान में छोड़ दिया है ना, आइडल ने आपको लाके मैदान में छोड़ दिया, अब तुम जितना कर सकते हो करो। ये है, अब मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना म्यूज़िक बना के, मतलब सब मेरे ऊपर है। अब यहाँ से आप यहाँ से कितने बड़े बनते हो, अपने आप को संभालना है।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है,
0: यस,
1: तभी
0: तो
1: एकदम चिल मोड ऑन है।
0: अब नहीं, क्या कह रहे हो, आराम आराम
1: हाँ,
0: तो बिल्कुल नहीं करना।
1: क्या दिनचर्या रहती है अभी?
0: अभी के लिए थोड़ा ये है कि हम ना एक साल से, जैसे क्या है कि एक साल से हम, हमारा रोज़ का रूटीन था, सुबह उठना है, पूरा दिन गाना है, पूरा दिन रिहर्सल्स हो रही हैं, फिर शूट पे जा रहे हो, मंडे टेक्निकल, ट्यूसडे को शूट हो रहा है, 2 दिन का शूट हो रहा है लगातार। शूट होने के बाद ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, चलो जी अगले शूट की तैयारी करनी है। तो एक साल से ये चल रहा था, गा गा के बॉडी भी मतलब हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, गला भी पूरा एग्जॉस्टेड है अभी भी। और एक मतलब उस स्पेस से निकल के यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल अपने होम टाउन आके, घर आके, मतलब जब आप बैठे होते हो ना, तो फिर सोचने का मौका मिलता है कि अब मुझे एज एन आर्टिस्ट क्या करना है। क्योंकि अभी एक साल तक बस वही था कि फिल्मों के गाने गा रहे हैं हम, ओल्ड सॉन्ग्स गा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जा कर के सोचने का मौका मिल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे गाने बनाने हैं, तो ये थोड़ा माइंड भी
1: क्या
0: रिलैक्स्ड
1: चल
0: है,
1: रहा है माइंड में?
0: थोड़ा
1: व्हाट्स
0: वोकल।
1: नेक्स्ट?
0: हाँ, नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मैं अभी EP प्लान कर रहा हूँ।
1: ओके,
0: हाँ, EP में 5 गाने होंगे, एंड वो मैं रिलीज़ करूँगा सितंबर में। उसमें देखो कि आई एम ट्राइंग कि अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, सबके साथ कोलैबोरेट हो। मतलब उस EP में नहीं, EP के आगे भी एल्बम करनी है, बट अभी सितंबर में एक मेरा प्लान है कि EP रिलीज़ करूँ मैं, 4 से 5 गाने की। मतलब बेसिकली आपको बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल म्यूज़िक लोग सुने, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ही काम करना है। और जितना जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि आइडल से अभी भी निकला हूँ, तो लोग थोड़ा जानते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं नहीं अगर एक्टिव रहूँगा तो फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है आर्टिस्ट। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही है कि बहुत सारे गाने निकालने हैं। सितंबर में EP करूँगा, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर एल्बम कर दूंगा, फिर मतलब बीच बीच में सिंगल्स आते रहेंगे, शोज़ भी होते रहेंगे
1: लाइव
0: और
1: शोज,
0: लाइव शोज़ होते रहेंगे।
1: आई एम श्योर अभी ऑफर आ रहे होंगे काफी सारे।
0: हाँ जी, ऑफर तो आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं टूर पे भी जा रहा हूँ बाहर, अक्टूबर में।
1: ओ, आउट ऑफ इंडिया?
0: यस, आउट ऑफ इंडिया अक्टूबर में, उस पर USA, कनाडा, वेस्ट इंडीज, इन सब जगह पे टूर है। ये 1 महीने का टूर है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर कुछ प्राइवेट इवेंट्स भी हैं, कॉलेज फेस्ट भी है, चलता रहेगा ये सब। तो आर्टिस्ट की लाइफ में यही तो है, गाने बनाने, शो करने हैं।
1: कहते हैं ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां, हर किसी को अपना
0: हाँ,
1: किरदार निभाना है,
0: लोगों को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ना है बस, जैसे हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो फेस्ट हो, चाहे गाने बनाने के थ्रू हो, बस लोगों को एंटरटेन करना है, क्योंकि लोग आपको इसीलिए प्यार करते हैं।
1: आजकल वैसे देखे ना तो यंगस्टर्स काफी जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं। हर कोई सिंगिंग करना तो चाहता है, लेकिन वो एफर्ट, वो कितना कुछ समय लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने आपको तैयारियां करनी पड़ती है उसके लिए, ये बहुत कम हो गया है लोगों में। यंगस्टर्स से कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: मैं यही बोलूँगा, देखो पहले तो मैं बोलने से पहले अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, शायद वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाए काम करने के लिए उनके। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऑडिशन दिया आइडल का और मैं पहुँच गया। नहीं, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार, मैंने इससे पहले 3 बार तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। उसके पहले भी मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है जिसमें वीडियोज़ भेजते हैं। तो ये है कि कभी भी रुको मत, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप देखो कि आप क्यों, आप अगर आज ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए तो आप क्यों रिजेक्ट हुए हो, किस बेसिस पे आप रिजेक्ट हुए हो। अगर कुछ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। आप अपने ऊपर काम करो कि हो सकता है ये कमी हो, शायद मैं इसको मुझे सुधारना चाहिए। अगर मेरे अभी सुर कच्चे हैं तो मैं 1 साल और रियाज करूँगा, सुर पक्के कर लूँगा, दोबारा ऑडिशन में आऊँगा। बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं। तो मैं जितनी बार भी रिजेक्ट हुआ हूँ, मुझे उतनी बार अलग अलग चीज़ें समझ में आई हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सुर पक्के करने हैं तो हाँ, मेरा रियाज़ चालू, और रियाज़ मतलब अगर मैं 2 घंटे रियाज़ करता हूँ तो 4 घंटे का चालू, ठीक है। अगर मुझे गाने नहीं याद या मेरी प्रेजेंटेशन वीक है तो उसके ऊपर काम करना। क्योंकि ये सब जब सारी चीज़ें आप करते रहते हो, उसके बाद ही आप अपने अंदर मास्टरी लेके आओगे ना। तो जितनी बार आप फेल हो रहे हो, आप उससे डरो मत, और कभी भी ट्राई करने से मत डरो। और बस मेरी यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं, उनको मेरी यही सलाह है

0: आपको वो खुद समझना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने ऊपर बार बार, एक होता है ना ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी अगर इंसान सही जगह करे ना तो वो काम, मतलब वो फिर अच्छी होती है।
1: वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जब आप
0: हाँ
1: ओवर थिंक करते थे आपके दिमाग में कौन सा गाना चलता था जब मनराज निराश हो जाते थे? तो
0: मैं ओवर
1: सुनना
0: थिंक
1: चाहेंगे
0: हमेशा,
1: हम। हाँ
0: मैं ओवर थिंक हमेशा इसी में करता था कि यार मुझे अब क्या करना है, क्या मैं ये कॉम्पोजिशन ऐसे कैसे गाऊं, इसमें कौन सी फील से गाऊं, मतलब मैं ये सोच रहा था। मतलब लोग ओवर थिंक करते होंगे, हाय इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, अरे वो नाराज़ हो गया, या ये वो हो गया। मैं ये सब सोचता नहीं, मगर नहीं, मैं गाने में मुझे ये परफॉर्म करना है, मैं इसको ऐसे करूँ या वैसे करूँ, बस ये चलता रहता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, ये चीज़ करो। और गाना,
1: वो गाना ऐसा रहता है ना हमारी लाइफ में जो हम गुनगुनाते हैं लूप में, और हमें
0: लूप
1: लगता है
0: में,
1: कि हाँ मतलब कि अब हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन तो आएगा जब जीत जाएंगे, समथिंग लाइक दिस।
0: हाँ मैं एक बताता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए। मैं कभी ऐसा कोई मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं है किसको कि अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं ये वाला गाना गाऊँ, पर्टिकुलर नहीं। मैं जब भी लो फील कर रहा होता हूँ ना तो मैं सिर्फ म्यूजिक ही सुनता हूँ। म्यूजिक मतलब कि मैं गाने चला के साथ में गाने गाता रहता हूँ, 1-1.5 घंटा मैं खुल के गाने गाऊंगा। तो क्या होता है फिर, वो जो 1-1.5 घंटे के अंदर ना वो लो वाले एंगल से बाहर आ जाता हूँ मैं।
1: अच्छा, आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कौन सा गाना रहता है सबसे ऊपर, टॉप पे?
0: सबसे ऊपर टॉप पे, हाँ टॉप पे सबसे पहले जो मैं गाना वो मैं सुनता हूँ, मतलब वो काफ़ी मेरे से जुड़ा भी हुआ है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस गाने के। एक तो मैं वो गाना है कि बनू दुनिया दा बाय गुरदास मान साहब एंड दिलजीत दोसांझ
1: हो जाए कुछ
0: साहब।
1: लाइनें हो जाए।
0: तो कुछ भी होता ना, फॉर एग्जांपल शो भी कर रहा हूँ मैं, तो शो की भी स्टार्टिंग में यार फोक गाना तो इससे बेटर कोई गाना है ही नहीं, और इतना इतना अच्छा इस गाने में बोला गया कि यार की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहेगुरु जाने। मतलब कि एक बेसिक सिनेरियो होता है ना कि यार किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ उसको पता है। तो उस पर छोड़ो, अच्छा काम करते रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो, जस्ट वन लव एवरी वन,
1: वन लव, और हम
0: एक
1: भी
0: प्यार है,
1: हाँ
0: प्यार
1: ढेर
0: करो,
1: सारा प्यार आपसे
0: सब ऊपर
1: करते हैं,
0: छोड़ दो।
1: लेकिन लाइनें
0: हाँ
1: हो जाएं
0: लाइनें
1: कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अजरां जे

0: अरे
1: क्या बात है, जो तेरे नसीब का है वो तेरे कोल ही आएगा। ओनू हर रोज पौंड दी फरमाइश नगर।
0: क्या बात है।
1: ऑल इंडिया रेडियो पे पहले भी आया या फर्स्ट टाइम परफॉर्म
0: नहीं,
1: कर रहे हैं यहाँ पर?
0: दिस इज माय फर्स्ट टाइम।
1: ओके, कैसा लग
0: यस,
1: रहा है, कैसा फील
0: बहुत
1: हो
0: अच्छा
1: रहा
0: लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप
1: है?
0: लोगों ने इनवाइट किया। एंड मतलब ये भी आर्टिस्ट के सपनों में होता है कि यार मैं पॉडकास्ट में जाके बैठूं। हाँ, मस्त है, होता है ना? अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब क्या होता है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं और इतना, मतलब नो वर्ड्स, दिस इज
1: लोग
0: बियॉन्ड वर्ड्स।
1: आपको आई एम श्योर के मतलब अनफिल्टर देखना चाहते हैं ना, कि मनराज को हमने स्टेज पे तो देखा है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन स्टेज के पीछे मनराज क्या है, मनराज क्या क्या पसंद करता है। खाने में तो आपने बता दिया, सिंगिंग में भी आपने बता दिया, किन
0: मेरे
1: हाँ
0: को, मैं बताऊं तो मुझे मजा आता है जा सबसे ज्यादा फन करने में भाई। बस अपने में रहो, मजे करो। मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे शो चल रहा है, शो चल रहा है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ऐसे ही बैठना है, ये कैमरा लगा हुआ है, ऐसे पीठ सीधी करके बैठो, ऐसे मतलब फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, अंदर से डायरेक्टर है, भाई यार ऐसे फिर से बैठो। तो मतलब जब ये होता ना, कट हो गया, फिर हाँ फिर अपने मस्ती हूँ बैठे हुए। तो वो वाली चीज है, मतलब अपने में रहना बिल्कुल पसंद है। बैक स्टेज वही करने में मजा आता है। खाओ, सबको प्यार बांटो, खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूजिक।
1: वो पार्टी वाली वाइब भी होती है कभी कभी।

0: हाँ वो
1: दिल्ली से वो
0: गाने,
1: लड़का और पार्टी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता
0: देखो पार्टी हम कर
1: मतलब
0: नहीं पाए क्योंकि हमें अलाउड नहीं थी।
1: नहीं
0: बस पार्टी करना किसको नहीं पसंद। बट
1: मतलब पार्टी कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है, थोड़ा सा नाच गाना हो गया।
0: मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जहाँ पे स्टे कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट्स,
1: हाँ
0: तो रूम में क्या करते थे ना हम, रोज़ रात को जैसे सुबह प्रैक्टिस, सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात तक प्रैक्टिस चली, प्रैक्टिस ख़त्म, प्रैक्टिस होते के बाद ही हम सारे अपने आप को रिफ़्रेश करने एक रूम में इकट्ठे होते थे, और वहीं गाने वाने चला के ऊनो खेल रहे हैं, ठीक है, डाइट कोक पी रहे हैं, मंगा रहे हैं मस्त, अपना मतलब खाना पीना चल रहा है उधर, सब मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा के डांस कर रहे हैं, जिसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है वो डांस कर रहा है, कोई नींद से उठ के आ गया मस्त, कह नहीं यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मतलब ये है कि
1: चिल मोड आ
0: सारी
1: गया।
0: रिहर्सल के बाद सब जब एक साथ बैठते थे ना तो चिल मोड हो जाता, तो मतलब वो सारे पूरे दिन की थकान निकल जाती
1: ये
0: थी।
1: कितना टाइम पीरियड रहता है, मतलब एक शो से पहले कितना समय आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए?
0: एक शो से पहले जैसे जिस दिन शूट होता है उसके एक दिन पहले टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल पे पूरा दिन हमारा शूट होता है, टेक्निकल शूट हो गया 24 घंटे, मतलब नॉट 24 घंटे, जैसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ रात को 11 बजे तक टेक्निकल शूट चल रहा है, फिर उसके अगले दिन दोबारा 9 बजे स्टार्ट हुआ 11 बजे शूट चल रहा है, और मंडे ट्यूसडे शूट होता है, सैटरडे संडे वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो जैसे ही हमारी एक शूटिंग ख़त्म हुई, एक शूटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमने गाना होता है वो शूटिंग ख़त्म होने के बाद ही हमें गाने मिल जाते हैं कि आपको अगले वीक ये गाने गाने हैं और कल से तुम्हारी दोबारा बैंड रिहर्सल। मतलब शूट अगर रात को 12 बजे ख़त्म हुआ तो हमें 11-12 घंटे का सब में रेस्ट ले लिया, और आई थिंक इनफ होता है इतना रेस्ट, 11-12 घंटे का रेस्ट लेके सो के आराम से, उसके बाद फिर अगले वीकेंड पे हमने क्या क्या करना है उसकी मीटिंग चालू, फिर सेम प्रोसीजर वही लूप में चलता रहता है, थीम्स चेंज होती रहती हैं, नेक्स्ट वीक ये आर्टिस्ट आ रहे हैं तो इनके गाने हम गाएंगे, नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा जैसे आशा भोसले जी को हमने करना है सेलिब्रेट करना है तो वो हम गाएंगे, फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी का वो आगे से, मतलब कि शूट ख़त्म होते कि 1 घंटे बाद ही हमें नई लिस्ट मिल जाती थी कि ये अब उन्हें अगले वीक गाना है।
1: मस्ती चलती जा रही है बस।
0: हाँ
1: और जब मस्त मौला हो जाते हैं आपके दिमाग में कौन सा ऐसा गाना आता है, इसलिए मैंने वो भाई पूछा था आपसे।
0: मस्त मस्त मौला, मस्त मौला होके तो
1: मतलब
0: यार
1: एकदम कि अब कोई फिक्र ही नहीं।
0: मैंने बोला मेरे को तो दोनों ही सिचुएशन में मैं गाने ही गाता हूँ,
1: हाँ, कौन सा है वो
0: और
1: गाना?
0: ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि मैं एक यही मतलब पर्टिकुलर एक यही सॉन्ग गाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब ये होता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या मैं सबसे ज्यादा गाना सुन रहा हूँ तो वही गा देता
1: हाँ, तो एक हो जाए ना कुछ लाइन
0: हूँ।
1: एनी पार्टी सॉन्ग।
0: गाना तो गाना पड़ेगा है। पान पुदीना देखा नक्का नगीना देखा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देखा चांदने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली।

0: जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना।
1: क्या बात है, हम भी नहीं मान रहे हैं बैक टू बैक। चलिए, इंडियन आइडल में आपने ढेर सारी परफॉर्मेंसेस दी, आपका फेवरेट कौन सा था, सबसे फेवरेट, जो सबसे, आज भी सबसे टॉप पे रखेंगे आप, कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता?
0: मतलब बेस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने जो अपना गाया है बिल्कुल 100% देके गाया है। बट कुछ गाने, मतलब नॉट एक, कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा सबसे पहला ऑडिशन, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, वो हो गया। उसके बाद गाना कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तो वो। और एक एपिसोड में दिलेर मेहंदी पाजी भी आए थे, उन्होंने गाया था हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई। तब तो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जब थीम चल रही होती है ना, उसके बीच में जब ऐसे गाने गाने को मिलते हैं तो फिर उसकी एनर्जी अलग ही होती है। मैंने आपको बताया थीम चल रही थी 60s 70s 90s, सेलिब्रेटिंग आशा भोसले जी, सेलिब्रेटिंग लता मंगेशकर जी, सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार जी, सेलिब्रेटिंग रफ़ी साहब। तो उस जोन से निकल के जब ये अपने जोन में आने का मौका मिलता है ना, तो फिर वो अलग एनर्जी। इसलिए ये सब मेरे फेवरेट हैं, हो जाएगी बल्ले बल्ले, बदतमीज दिल, और जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ये सब जब गाने का

0: मौका मिलता तो फिर वो सीए मेरे सारे ही फेवरेट हैं।
1: ठीक है, टाइम फॉर द रैपिड फायर। सारे सवालों के सही जवाब आपने दिए हैं और क्या कहूँ, कॉन्वर्जेशन बहुत कमाल का रहा है। चलिए, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कीजिए, वन वर्ड।
0: फियरलेस।
1: फियरलेस। नेक्स्ट इज लता मंगेशकर या आशा भोसले?
0: आई पिक आशा भोसले जी।
1: ओके, अरिजीत सिंह या सोनू निगम? अच्छा। जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है सर।
0: अरे यार, अरिजीत सिंह।
1: ओके चलिए, वेरी गुड। स्टेज शो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग।
1: सबसे पसंदीदा राग कौन सा आपका?
0: राग राग राग राग राग दरबारी।
1: ओके, पसंदीदा खाना?
0: नॉनवेज।
1: ओके, एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना जो आप कभी भी गा सकते हैं, कभी भी गुनगुना सकते हैं, 24/7, सोते सोते भी उठा दे तो आप कहेंगे ये गा सकता हूं मैं।
0: की बनू दुनिया था।
1: ओके, एक लाइन के साथ, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम।
0: ओके, ओ की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह गुरु जाने की बनू दुनिया दा, है अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साई बोदा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी हो।
1: क्या बात है, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा?
0: मेरी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल होगा
1: दमन राज, मन पे राज करने वाला है, कुछ और, एनीथिंग, जो भी माइंड में आ रहा हो।
0: हार्ट थ्रोब।
1: है?
0: हार्ट थ्रोब।
1: ओके, अगर आपको आज अपने बचपन वाले वर्जन से मिलने का मौका मिले मनराज, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे कि हमने कर लिया या कुछ और बाकी अभी?
0: मैं उससे यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच ये सब सपने देखने के लिए, बिकॉज नहीं देखता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
1: क्या बात है, एक मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए जो आकाशवाणी ऑडियंस है उनके लिए कुछ?
0: मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो आप सबके प्यार की वजह से ही हुआ है ये सब। हार्ट थ्रॉब, ड्रीम बॉय, ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी एल्बम्स आएंगे, जितने भी EPs आएंगे और जितने भी शोज होंगे, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को एंटरटेन करने में, और आप लोग भी अपना प्यार देने में कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट YouTube चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

निजी पेश हैं एफएम पर अब तक के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण के लिए के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पर सर्वसम्मति में स्वीकार करने के साथ ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें से 9 थाई, 3 बांग्लादेशी और 4 नाइजीरियन, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की ज्ञापन अवधि को सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूर में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डोरेंट कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कप चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक पहुंचती हैं और कुछ सीधा दिल में उतर जाती हैं। गजल की खूबसूरती भी शायद इसी में है। मानते हैं ना आप कि अल्फाज किसी एक शख्स के होते हैं, लेकिन एहसास सुनने वाले हर दिल का हिस्सा हो जाते हैं। आज की इस महफिल में भी कुछ ऐसे ही अल्फाज होंगे, कुछ ऐसी ही कुछ सुर होंगे, कुछ ऐसी गजलें भी होंगी, कुछ ऐसे एहसास जिन्हें शायद हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया होगा। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल प्रोग्राम और आकाशवाणी एफएम रेनबो, जो कि है हर दिल से दिल तक 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए आज को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, गजलों के साथ दिल की बात सुनते हैं।

0: कभी किसी से किया हुआ वादा सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, फिर वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, हालात बदलते हैं, फासले भी आ जाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो बात अपनी जगह बनाए रखती है। मोहब्बत का ये सफर भी बड़ा अजीब है, जहां मुश्किल भी हैं खुशी मिलती है, इंसान शुक्र करता है, और जब दर्द मिलता है तो उसी दर्द में भी अपने आप कोई वजह ढूंढ लेता है। शायद इसीलिए मोहब्बत की कहानियां कभी सीधी नहीं होती, कभी वादा होता है, कभी इंतजार होता है, कभी वो दर्द जहां अंदर से और गहरा देता है हर चीज। इसी साथ को आगे बढ़ाते हैं, और जो अब आप गजल सुनेंगे वो भी मोहब्बत के इसी दर्द की खूबसूरत दास्तां है।
1: आशा जी यानी आशा भोसले,

एक वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा, एक अलग रंग।

मोहब्बत में क्या हुआ एक वादा, कभी पूरी जिंदगी के साथ बन जाता है, लेकिन हर वादा अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो ये जरूरी नहीं भाई। कुछ रिश्ते पूरे होकर भी सुकून देते हैं और कुछ अधूरे रहकर भी दिल में एक गहरा सा एहसास छोड़ जाते हैं। फिर इंसान चाहे जितना खुद को समझाए, दिल अपनी ही जुबान बोलता है, और जब दिल में किसी और की बात जगह ना बचे तो फिर मोहब्बत का दर्द सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। इसी एहसास के साथ अब सुनिए ये खूबसूरत गजल।

किसी के करीब होने की ख्वाहिश भी कितनी अजीब होती है। कभी दिल चाहता है कि वो सामने हो और बस इतना ही काफी लगता है कि उसकी मौजूदगी का एहसास पास रहे। कुछ लोगों को देखने का ही नहीं, महसूस करने की भी जरूरत होती है। उनकी एक झलक, एक आवाज या सिर्फ ख्याल ही दिल की पूरी दुनिया बदल देता है। और मोहब्बत शायद इसी का नाम है कि इंसान कुछ पल के लिए दुनिया से नहीं, सिर्फ एक शख्स से मिलना चाहता है। इसी खूबसूरत तमन्ना के नाम ये गजल जो आप सुनेंगे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कुछ लोगों का अंदाज ही अलग होता है। दुनिया अपनी जगह चलती रहती है और वो अपनी धुन में न हर बात का जवाब देते हैं, न हर फैसले को दुनिया की से नजर से देखते हैं। दिल ने कहा कि चलो तो चल गए, मन हुआ तो मुस्कुरा दिए, और जो बात अच्छी लगे तो उसे बिना किसी वजह के अपना दिए। शायद जिंदगी को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इतनी सी आदत जरूरी है। हर चीज को समझना, हर एहसास को नाम देना और हर रास्ते का हिसाब रखना भी जरूरी है। लेकिन वो मानते हैं कि वो चीज उनके लिए जरूरी नहीं। कभी कभी बस अपनी धुन में रहना जिंदगी का ऐसा एक खूबसूरत अंदाज है। इसी अंदाज को आवाज देते हुए ये गजल आपकी नजर है।

0: पार्टी शुरू हो रही है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: महफिल सजी तो दिल को सुकून मिलता रहा, हर गजल अपना एक फसाना कहती रही। अब रुक रही है आज की ये गुफ्तगू, मगर दिल चाहता है कि सिलसिला हमेशा चलता रहे।
1: मुकेश जी जो प्लेबैक सिंगिंग में काफी मकबूल हो चुके थे, वो भी इस गैर फिल्मी म्यूजिक के दौर से बच ना सके और जुमाने को सुनाने के लिए कुछ अशार चुन ही लिए।

रंग महफिल का ये सफर अब अपनी आखिरी गजल तक पहुंच कर चुका है। सच कहूं तो ये दिल चाहता है कि ये सिलसिला थोड़ा और चले, कुछ और गजलें हों, कुछ और बातें हों और ये रात यूं धीरे धीरे गुजरती रहे, लेकिन हर खूबसूरत महफिल को एक वक्त पर रुकना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी इसी महफिल में और किसी और मोड़ पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खासतौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि HN के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है और जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाज़ों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। उनका कहना है कि हाल की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट द्वारा बहाल की गई परिवार से साप्ताहिक मुलाकात को तत्काल बहाल करने की मांग की है। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डोरंड कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों

आपकी वाणी आकाशवाणी 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रात्रि का 1 बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि HN के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और न घबराने की कोई आवश्यकता। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है और जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। उनका कहना है कि हाल की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट द्वारा बहाल की गई परिवार से साप्ताहिक मुलाकात को तत्काल बहाल करने की मांग की है। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डोरंड कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। एक बजकर 3:27 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजेरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि HN के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। तेल और गैस सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन तथा इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड और मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जल मरु मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाज़ों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम अब गुरुवार को 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ मैच खेलेगी। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डोरंड कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:04 हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: गोला चतुर एक पेरा या गोला बोला या चतुर बोला
1: एक चतुर ना।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर।

0: उसने कसाया, पढ़ने न पाए उसने कसाया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए अभी सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि H1N1 ने किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूर में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में शामिल होंगे। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाज़ों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। बाईस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम अब गुरुवार को 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ मैच खेलेगी। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डूरंड कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया गया है।

शुरुआती जांच से पता चला है कि ये विदेश में रहने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैंडलर सतनाम उर्फ सत्ता नौशेरा के कहने पर काम कर रहे थे और उनका चंडीगढ़ में आईटी धमाका करने की योजना थी। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। भारत आज कोलंबो में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी के 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम अब गुरुवार को 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ मैच खेलेगी। और अंत में मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। अब समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे गामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। सुबह के 5 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। चंडीगढ़ पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया गया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये विदेश में रहने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैंडलर सतनाम उर्फ सत्ता नौशेरा के कहने पर काम कर रहे थे और उनका चंडीगढ़ में आईडी धमाका करने की योजना थी। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरियाई, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। 22 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज के लिए अपनी अपील दोहराई है। आज भारत कोलंबो में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और

और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी के 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। महिला हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज़्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय टीम अब गुरुवार को 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ मैच खेलेगी। और अंत में मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। प्रातः के 5:03 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: now and watch for free.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।